वंदे मातरम। मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज एवं न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आज शक संवत 1948 के अषाढ़ मास की छठवीं तिथि, तदनुसार दिन शनिवार, 27 जून 2026 है। प्रातः के 5:58 हुए हैं। हमारे आज के प्रसारण की प्रथम सभा अब प्रारंभ होती है, इसमें आपका स्वागत है।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से सोमवार तक सेशल्स की यात्रा पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा बल की टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्बिनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे। वो वहां भारतवंशियों से भी मिलेंगे। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक मैत्री और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता और मजबूत होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी दृष्टि पत्र जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपए है। श्री शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है।
1: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के

0: हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ गुजरात में करेंगे। कार्यक्रम में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारी, विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि और भारत टैक्सी से जुड़े 4000 से अधिक सारथी शामिल होंगे। भारत टैक्सी सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित डिजिटल मोबिलिटी मंच है और सारथी ही मालिक की अवधारणा को साकार करता है। इस मॉडल के अंतर्गत टैक्सी चालक केवल सेवा प्रदाता नहीं बल्कि भागीदार और मालिक भी होंगे। इससे चालकों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देशभर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमरीकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए और उसके तटवर्ती राडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं को संकेत दिया था कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को कहा था कि ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाया गया। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा घोषित की है। इस प्रस्तावित समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्ला को हमले रोकने और दक्षिण लेबनान से हटने के निर्देश शामिल हैं। आयरलैंड के बेलफास्ट में T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए, जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। FIH पुरुष प्रो लीग हॉकी में कल रात भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। फीफा विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से पराजित किया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, प्रातः के 6:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है आज का विचार। आज का विचार महात्मा गांधी के उद्गार हैं, जहां पर वो कहते हैं कि पुस्तकों का मूल्य रत्नों से भी अधिक होता है, क्योंकि रत्न बाहरी चमक दमक दिखाते हैं, जबकि पुस्तकें अंतःकरण को उज्ज्वलित करती हैं। श्रोताओं, ये था आज का विचार मंथन। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। इसमें सबसे पहले सुनिए रमेश यादव का यह गीत।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सुबह के 6:30 हुए हैं। लीजिए, अब प्रस्तुत है चिंतन। आज चिंतन का शीर्षक है अनुकूल प्रतिकूल, जिसका आलेख तैयार किया है श्रीमती कमल शर्मा ने और वाचक स्वर है दिनेश नामदेव के।
1: मनुष्य को अपने जीवन में अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। इस संसार की रचना ऐसी नहीं है कि व्यक्ति जो चाहे वो उसे मिल जाए। योग्यता, श्रम और परिस्थितियों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अक्सर देखा गया है कि अधिक साधन संपन्न व्यक्ति भी अविवेक के कारण पतन की ओर उन्मुख हो जाता है और अपना जीवन चिंता, द्वेष तथा क्षोभ की ज्वाला में ही व्यतीत करता है। इसके विपरीत प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जिन लोगों ने अपने आप को सुसंस्कृत बना लिया, अभाव से दुखी रहने की अपेक्षा जो प्राप्त हुआ उसी का सदुपयोग करके उन्होंने अपने जीवन को आनंदमय बना लिया। राजा हरिश्चंद्र, महाराणा प्रताप, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, छत्रपति शिवाजी और प्रभु ईसा मसीह जैसे कितने ही उदाहरण हमारे सामने हैं, जिन्होंने अपने कर्तव्य और धर्म का पालन करने के लिए अनेक कष्ट तथा कठिनाइयां सही और अमर हो गए। कठिनाइयों से भागना कायरता है, इससे कठिनाइयां कम नहीं होती बल्कि बढ़ती ही हैं, क्योंकि कायर व्यक्ति की आंतरिक शक्ति भी कुंठित हो जाती है और असफलता ही उसके हाथ लगती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि कठिनाइयों का डटकर मुकाबला करे, उन्हें अपने जीवन में स्वीकार करे और धैर्य रखे। इसी से उसकी आत्मिक शक्तियां जागृत होंगी और उसका विकास होगा। इस विश्वास के साथ संघर्ष करना चाहिए कि रात के बाद दिन का आगमन निश्चित है। अधिकांश महापुरुष संघर्षमय जीवन जीकर ही महान बने हैं। जीवन की परिस्थितियों से समझौता करना ही बुद्धिमानी है। जो परेशानियां दुखद हैं वे समझौता करने पर सरल हो जाती हैं, परंतु समझौते का अर्थ ये नहीं है कि अपने कर्तव्य, सिद्धांत, आदर्श और लक्ष्य को छोड़

0: कठिनाइयों से घबराए नहीं, वरन उन्हें भी जीवन यात्रा का एक साथी मानकर अपनी यात्रा जारी रखें। संघर्ष के समय घबराहट दूर करने का एक सरल उपाय ये है कि जीवन में आने वाली सभी अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में सहज भाव से रहा जाए। इससे मानसिक दृढ़ता भी बढ़ती है। संघर्षमय जीवन का सामना करने का एक और सरल उपाय है कि हम अपने से निम्न परिस्थितियों में रहने वालों से अपनी तुलना करें। 1,000 रुपये पाने वाला व्यक्ति 500 रुपये पाने वाले व्यक्ति से यदि अपनी तुलना करता है तो बहुत से कष्टों का निवारण हो जाता है, बेचैनी दूर हो जाती है। दूरदर्शिता अपनाने से भी बहुत सी कठिनाइयां अपने आप दूर हो जाती हैं। यदि एक तरीका अपनाने से समस्याएं नहीं सुलझती तो अन्य तरीके अपनाए जा सकते हैं। यदि व्यक्ति का सामाजिक जीवन उच्च कोटि का आदर्शमय जीवन है, वो अहंकारी नहीं है, प्रेमी, सहिष्णु और पर दुख कातर है, तो वो कई कष्ट सहता चला जाता है क्योंकि उसके साथ कई सहयोगी और शुभचिंतक हो जाते हैं जो समय पड़ने पर उसकी सहायता करके कष्टों का निवारण करने में सहयोग देते हैं। हम अपने अहंकार को कम करके भी कई कष्टों से बच सकते हैं, जैसे नरम वृक्ष आंधी तूफान में झंझावात में भी झूमता हुआ मस्ती से खड़ा रहता है, परंतु बड़े बड़े पेड़ जो कठोर होते हैं जल्दी धराशायी हो जाते हैं। अतः दूसरों की कठिनाइयों में शामिल होकर, सेवाभावी होकर, सुसंस्कृत होकर हम निश्चिंत जीवन बिता सकते हैं, इस आशा में कि विपत्ति के समय हमें भी कहीं ना कहीं से सहयोग अवश्य मिलेगा।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन। लीजिए, अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान। इसके गायक स्वर हैं सुरेश वाडकर के।

निषाद राज के साथ भरत प्रयाग के मार्ग पर अग्रसर हैं। उन स्थानों को देखकर उनका मन परिताप से भर उठता है जहां कभी श्रीराम ने रात्रि विश्राम किया था। कुशों की साथरी और सोने के उन कणों को देख जो सीता जी के वस्त्राभूषणों से गिर पड़े होंगे, भरत विचलित हो जाते हैं। जिन सुकुमारी के श्वसुर महाराज दशरथ थे, जिनके पिता योग तथा भोग दोनों के स्वामी राजा जनक हैं, उन पतिव्रता शिरोमणि सीता जी का ऐसा बिछावन देख किसका हृदय नहीं फट जाएगा। कोमल स्वभाव तथा स्वामी भक्ति की प्रतिमूर्ति लक्ष्मण सरीखे छोटे भाई वन में न जाने किन विपत्तियों का सामना कर रहे होंगे। स्वयं श्रीराम जो शील सुख और समस्त गुणों के सागर हैं, कुशा बिछाकर पृथ्वी पर सोते हैं। भरत का परिताप इस सोच से और भी गहरा हो जाता है कि अपनी आंखों से ये सब कुछ देखकर भी उनकी छाती क्यों नहीं फट जाती। हे शंकर, क्या उनका हृदय वज्र से भी अधिक कठोर हो गया है?

0: अभी श्रोताओं आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान का पाठ। लीजिए प्रस्तुत है कृषि सामयिकी में धनिया की उन्नत खेती पर हमारे ये सुझाव।
1: किसान भैया हरो, आज हम आपोरण के लाने धनिया की उन्नत खेती करवे के लाने सलाह देवो चाहत हैं। तो धनिया मसालों की फसल में बहुत उम्दा स्थान रखत है और इके बीज और पत्तियां भोजन हो उम्दा सुगंधित और स्वादिष्ट मान कहो चे के खुशबूदार और स्वाद वारो बनावे में काम आती हैं। ई के बीज को सुखाखें सूखे मसालों में प्रयोग करवे में सोई काम आउत है और पाला पर्वे वाले क्षेत्रों में धनिया की खेती बहुत ज़्यादा नुकसान को सामना सोई करत रहते है। और धनिया की खेती के लाने अब बात आउत है जलवायु की, तो ई की खेती के लाने शुष्क और ठंडी जलवायु वाले जो क्षेत्र हैं वे उम्दा माने जाते हैं और ई के लाने खुले धूप की सोई जरूरत पड़त है। धनिया के लाने अच्छी पैदावार लेवे को उम्दा जमीन सोई भाव चाहिए, जी में धनिया के लाने दोमट मिट्टी अच्छी मानी जात है, जबकि भारी मटियार और कछारी जो भूमि होत है उसमें धनिया की फसल सोई अपन ले सकते हैं। और ई के लाने अच्छी जल निकास बारी और जीवांश बारी जो जमीन है वह और ज़्यादा उम्दा मानी जात है। धनिया की खेती करवे के लाने भूमि की तैयारी की जहाँ लो बात आउत है, तो खेत को भली प्रकार से 2 से 3 गहरी जुताई करवे के बाद खेत की माटी को भुरभुरी बना लो चाहिए और आखिरी जुताई के टेम पे 15 से 20 टन गोबर या कंपोस्ट की खाद उम्दा तरीका से खेत में मिला दो चाहिए। और जो कहूँ खेत में नमी की कमी होवे तो बुवाई करवे के पहलों पलेवा दे दो चाहिए तो फसल अच्छी होते है। इके पौधा 130 से 140 दिन में पक्खों तैयार हो जाते हैं और ई की औसत उपज 9 से 9.5 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अपन ले सकते हैं। बीज की मात्रा के लाने जब अपन धनिया की खेती करें तो पंक्ति से पंक्ति माने कतार से कतार में बोनी करें और 10 से 15 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुआई करें। और अगर अपन छिटकमा की विधि से बुआई करते हैं तो इमें कम से कम तो 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जरूरत पड़त है। अब बीज की बुआई कैसे करने हैं बासुई बता दें, दोनों मौसम में इकी बुआई करी जात है। साल में एक बार माने मई से अगस्त और दूसरी बार अक्टूबर से जनवरी तक जाकी बुआई अपन कर सकते हैं। अब बीज बोबे की विधि के बारे में सोई हम आपोरण के बताबो चाहत हैं कि आम तौर पर सभी किसान भैया हने धनिया की छिटकुआ विधि से बुआई करत हैं, मनो ई विधि में ज़्यादा से ज़्यादा बीज की जरूरत पड़त है। ई विधि से बुआई करबे पे कृषि कार्यों को करवे में कठिनाई तो होत है, जिसे कम उपज सोई अपन हो प्राप्त हो पाउत है। ई के लाने धनिया की बुआई कतारों में करो चाहिए और ई में कतारों की जो आपसी दूरी है वह 25 से 35 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी 10 से 12 सेंटीमीटर रखो चाहिए। बीज की जो गहराई है वह 3.5 सेंटीमीटर तक की रखो चाहिए और इससे अधिक गहराई पे बीज बोबे से बीज में जो अंकुरण क्षमता है वह कम प्रतिशत के रूप में होते है। और बीज बो समय पे बीजों को रगड़ खें माने के धनिया के दाने को फोल लो चाहिए, 2 भागों में फोर खें और ई की बुआई करो चाहिए, इससे अंकुरण ज़्यादा मात्रा में होते है। ऐसी बताई विधि के अनुसार आप और धनिया की खेती करें तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकत हो।
0: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे कृषि सामयिकी में धनिया की उन्नत खेती पर हमारे ये सुझाव। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला प्रसारण बस कुछ ही देर में, कीजिए बस थोड़ा सा इंतज़ार।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। सुबह के 6:51 होने को है। लीजिए, प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

श्रोताओं, प्रातः 7:20 पर सुनिए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग जबलपुर। सुबह 8 बजे होगा समय समाचार प्रभात का और प्रातः 9 बजे समय होगा लोक संगीत के कार्यक्रम लोक रसधार का।

सुबह 9:30 बजे से। सुबह 10:20 बजे पर आप सुन सकेंगे आपके भेजे गए पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सारंगा।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की रूपरेखा। सुबह के 6:54 हुए हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।

0: आग्रहीतवान्। श्रीशाहः नवदिल्ल्यां मादकद्रव्यविषयकसंयोजनकेन्द्रस्य दशमशीर्षस्तरीयसभां सम्बोधयन् एवम् अभ्यभाषत।
1: मादक पदार्थों की समस्या केवल कानून व्यवस्था और सार्वजनिक स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं है, नार्को टेररिज्म इकोसिस्टम भी बन चुकी है। तो हमारी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए, हमारे देश के अर्थतंत्र की सुरक्षा के लिए और हमारे देश की युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इस पर संपूर्ण विजय प्राप्त करें।
0: उत्तर प्रदेश आरक्षिबलेन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यासस्य दानराशि वंचना प्रकरणे प्रथम सूचना प्रतिवेदनाधारेण अष्टौ जनाः निगडिताः। इदं तावत् प्राथमिकं प्रतिवेदनं मुख्यमन्त्रिणः योगिनः आदित्यनाथस्य निर्देशेन विशेष निरीक्षण दलस्य अनुशंसानन्तरं पञ्जीकृतम् आसीत्। इदं प्रकरणं श्रीरामजन्मभूमितीर्थक्षेत्रन्यासेन प्राप्तानाम् उपहाराणां दानानां च वञ्चनासम्बद्धारोपाणां प्रकाशनानन्तरं सम्मुखम् आगतम्। न्यासस्य अनुरोधेन मुख्यमन्त्रिणा योगिना आदित्यनाथेन एकस्य विशिष्टनिरीक्षणदलस्य सङ्घटनाय आदेशः प्रदत्तः। भारतीयर्तुविज्ञानविभागेन अनुमितं यत् सोमवासरं यावत् दिल्ली पंजाब हरियाणा चण्डीगढ़ पूर्वीयोत्तरप्रदेश राजस्थान मध्यप्रदेश महाराष्ट्रोत्तराखण्डेषु लक्षद्वीपस्य कतिपयक्षेत्रेषु च तडित्पातस्य संभावना अस्ति। कोलकाता दुर्घटनायां आहतानां संख्या एधित्वा षोडश संजाता अस्ति। तत्र व्रणितानां उपचारः SSKM चिकित्सालये प्रवर्तते इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में दो नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी बद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत टैक्सी सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित डिजिटल मोबिलिटी मंच है और सारथी ही मालिक की अवधारणा साकार करता है। इस मॉडल के अंतर्गत टैक्सी चालक केवल सेवा प्रदाता नहीं बल्कि भागीदार और मालिक भी होंगे। इससे चालकों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 920 हो गई है। लगभग 3000 लोग घायल हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से जारी है। अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपातकाल घोषित कर दिया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्तार शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसके अंतर्गत कल भारतीय वायुसेना के 2 विमानों से राहत सामग्री और 41 सदस्यों का बचाव दल भेजा गया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में वेनेजुएला की सरकार और लोगों के साथ है। अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने बताया कि उसकी ईरान पर उसके तटवर्ती रडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को कहा था कि ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाया गया। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा घोषित की है। इस प्रस्तावित संघर्ष समझौते में हिजबुल्ला को हमले रोकने और दक्षिणी लेबनान से हटने का निर्देश शामिल है। FIH पुरुष प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हराकर करारी शिकस्त दी। मैच के पहले क्वार्टर में लंदन में अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़त दिलाई। दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह के गोल ने मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, जुगराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल ने 4 और गोल किए। 7वां गोल चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने किया। कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। आयरलैंड के बेलफास्ट में T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू होलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर। गृह मंत्री अमित शाह आज देश की पहली सहकारिता आधारित सेवा भारत टैक्सी का गुजरात में करेंगे शुभारंभ। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर आज मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के आतिथ्य में होगा विशेष कार्यक्रम। और आज भोपाल इंदौर समेत 43 जिलों में तेज बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से सोमवार तक सेशल्स की यात्रा पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा दल की टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हार्मनी के साथ बातचीत करेंगे और दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। परस्पर हित के क्षेत्रीय और राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे। वे वहां भारत वंशियों से भी मिलेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। साथ ही एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल्स पर इसका सीधा प्रसारण होगा। गृह मंत्री अमित शाह आज देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ गुजरात में करेंगे। कार्यक्रम में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारी, विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि और भारत टैक्सी से जुड़े 4000 से अधिक सारथी शामिल होंगे। भारत टैक्सी सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित डिजिटल मोबिलिटी मंच है और सारथी ही मालिक की अवधारणा को साकार करता है। अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ दुरुपयोग और अवैध तस्करी विरोधी दिवस पर कल केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में नारकोटिक्स कंट्रोल की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने देश को नशे के खतरे से बचाने के लिए तैयार किए गए विजन डॉक्यूमेंट ऑन नारकोटिक्स कंट्रोल का भी शुभारंभ किया। संबोधन में अमित शाह ने कहा कि देश नशे के खिलाफ लड़ाई के बेहद निर्णायक मोड़ पर खड़ा है।
1: मादक पदार्थों की समस्या केवल कानून व्यवस्था और सार्वजनिक स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं है, नार्को टेररिज्म इकोसिस्टम भी बन चुकी है। तो हमारी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए, हमारे देश के अर्थतंत्र की सुरक्षा के लिए और हमारे देश की युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इस पर संपूर्ण विजय प्राप्त करें।
0: समान नागरिक संहिता यूजीसी विधेयक का प्रारूप तैयार करने के लिए अध्ययन और परीक्षण संबंधी उच्च स्तरीय समिति की बैठक कल नई दिल्ली स्थित मध्य प्रदेश भवन में हुई। समिति की अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में विधेयक के प्रारूप के साथ ही विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, संपत्ति समेत अन्य विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। समिति सदस्य सचिव अजय कटेसरिया ने बताया कि समिति की रिपोर्ट की ड्राफ्टिंग अंतिम चरण में है। समिति की रिपोर्ट के 2 भाग होंगे, जिसमें पहला भाग समिति की अनुशंसाओं का और दूसरा भाग समिति द्वारा किए गए जन परामर्शों से संबंधित होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज से 2 दिवसीय दौरे पर बैतूल जिले के हिल स्टेशन कुकरू जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव आज शाम को सनसेट पॉइंट को देखेंगे। इसके बाद ग्राम पंचायत कुकरू में रात्रि चौपाल में शामिल होंगे। वे गांव वालों से बातचीत भी करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। अगले दिन सुबह 6:30 पर सनराइज और बुज पॉइंट पर मेडिटेशन करेंगे। फिर स्वसहायता समूह की महिलाओं द्वारा संचालित गतिविधियों का अवलोकन भी करेंगे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर आज प्रदेश के कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में राजधानी भोपाल के रविन्द्र भवन परिसर में होने वाले मुख्य कार्यक्रम में प्रदेश के औद्योगिक विकास की दिशा में कई निर्णय लिए जाएंगे। प्रदेश के एमएसएमई मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप ने अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस की प्रदेशवासियों सहित उद्यमियों को शुभकामनाएं और बधाई दी है। श्री कश्यप ने कहा है कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम भारत की अर्थव्यवस्था की सशक्त आधारशिला है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जैसे अभिनव आयोजनों ने प्रदेश में एमएसएमई स्टार्टअप्स और निवेशकों के लिए नए अवसरों के द्वार खोले हैं। इससे प्रदेश में निवेश बढ़ा है, रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं और स्थानीय उद्यमों को राष्ट्रीय और वैश्विक पहचान मिल रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल लोकतंत्र सेनानी स्मृति दिवस के अवसर पर रविन्द्र भवन में आयोजित लोकतंत्र सेनानियों के प्रादेशिक सम्मेलन में कई घोषणाएं की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों को सरकार स्पेशल ट्रेन से तीर्थ दर्शन कराएगी, साथ ही लोकतंत्र सेनानियों के इलाज का सारा खर्च सरकार उठाएगी।
3: लोकतंत्र सेनानियों के योगदान के शिलालेख उनके निवास क्षेत्र के आसपास लगाने के भवन, पार्क या मार्ग का नाम रखने के लिए मैं सहमत हूँ। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, लोकतंत्र सेनानियों के इलाज के लिए जो खर्चा लगेगा सरकार देने के लिए तैयार रहेगी। हमारे लोकतंत्र सेनानी अपने राज्य के अंदर कई जगह छोटे छोटे स्थान पर भी रहते और ऐसे में कभी कोई गंभीर बीमारी पड़ी और वहाँ राज्य के उस अस्पताल में इलाज नहीं है तो हमारी एयर एम्बुलेंस निःशुल्क लेकर के आएगी और उनका इलाज कराएगी।
0: प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्से के 15 जिलों में एंट्री करने के बाद मॉनसून ठहर गया। मौसम केंद्र भोपाल के मुताबिक मॉनसून आगे बढ़ा तो पहले ये भोपाल उज्जैन संभाग में पहुंचेगा, आखिर में ग्वालियर चंबल में दस्तक देगा। प्रदेश में मॉनसून 24 जून को पहुंचा था। मौसम केंद्र के अनुसार अगले 2-3 दिन में मध्य प्रदेश के कुछ और हिस्सों में मॉनसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां बन रही है। इसके असर से आज भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, इंदौर समेत 43 जिलों में तेज बारिश हो सकती है। FIH पुरुष प्रो लीग हॉकी में कल रात भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारे शिकस्त दी। लंदन के ली वैली हॉकी सेंटर में खेले गए मैच के पहले क्वार्टर में अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़त दिलाई। दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह के गोल ने मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, चुकराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल ने 4 और गोल किए। सातवां गोल चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने किया। कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। रेलवे ने यात्रियों की भीड़ को देखते हुए जोधपुर और चेन्नई के बीच 27 जून से साप्ताहिक समय स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेन पश्चिम मध्य रेलवे की भोपाल मंडल के रुठियाई, गुना, पीना, भोपाल और इटारसी स्टेशन से गुजरेगी। खंडवा में साइबर अपराधों से बचाव के लिए पुलिस का सेफ क्लिक 2.2 अभियान लगातार जारी है। अभियान के तीसरे दिन विशेष साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। वर्षा काल को देखते हुए आगरमालवा कलेक्टर के आदेश पर 24 घंटे संचालित होने वाला जिला स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। सतना जिले में जिला प्रशासन और राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वाधान में कई जगह नशा मुक्ति जागरूकता अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक सहित अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। निंडौरी में कल से राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत जिले के 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। इंदौर में मध्य प्रदेश गृह निर्माण और अधोसंरचना विकास मंडल वृत्त इंदौर ने कॉलोनियों के निवासियों के लिए समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया। गुना में कल राजस्व और नगर परिषद के संयुक्त अमले द्वारा संचालित कोचिंग संस्थानों का सघन निरीक्षण अभियान चलाया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

गुड मॉर्निंग जबलपुर, ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। श्रोताओं, शनिवार का ये दिन है, सुहानी सी सुबह है और आपके साथ मैं हूँ आपका साथी, रेडियो साथी प्रखर, आपके लिए लेकर आया हूँ इस सुहानी सी सुबह में ढेर सारे सुहाने सुहाने गाने। और श्रोताओं, एक बात आपको मैं ज़रूर बता दूँ कि आपका जो मौसम है, आपके आसपास का जो वातावरण है, वो कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन आपके शरीर का वातावरण, आपके मन का वातावरण का एकदम सुगम, एकदम खूबसूरत होना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए ज़रूरी है योग। जी हाँ, अगर हम नियमित योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो यह हमारे स्वास्थ्य को और हमारे जीवन को संवार देता है। जिस तरह से ये प्यारे प्यारे गीत जो हैं वो आपकी सुबह को संवारने के लिए, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कार्यक्रम गुड मॉर्निंग जबलपुर में। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म पापा कहते हैं कि इस गीत के साथ, जिसे जावेद अख्तर ने लिखा है, इस गीत को गाया है उदित नारायण ने और संगीत है राजेश रोशन का। और ये गीत मुझे उस बात की याद दिलाता है कि जब हम घर से निकलते हैं, थोड़ी सी दूर चलते हैं, तो क्या होता है, बहुत सुहाना जो ये मौसम है जबलपुर का, वो हमारा इंतज़ार करता है।

0: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रा के दौरान अगर टीसी टिकट मांगे तो दिखा दीजिए, लेकिन कोई भी ओटीपी पिन या पासवर्ड मांगे तो उसे तुरंत भगा दीजिए।
1: RBI कहता है ओटीपी या पिन के लिए कॉल या मैसेज आए तो थोड़ा ध्यान से।

ढेर सारी बातें। और जैसा कि हम सब जानते हैं, बहुत बेसब्री से मानसून का वेट हो रहा है। अगर आप बरगी बांध की तरफ जाएं तो आपको बहुत दूर दूर तक बिना पानी वाला एक खाली मैदान दिखेगा, जहां पर बरगी डैम का पानी हुआ करता था। थोड़ा सा

ऐसी समस्याओं से हमें रूबरू होना पड़ सकता है। तो आपसे एक दरख्वास्त रहेगी कि जब भी इस मौसम में पानी का इस्तेमाल करें तो बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करें, ये समझ के इस्तेमाल करें कि कुछ ही दिनों में जो है मानसून जब तर बतर हमारे शहर को कर देगा, तब हमारे जो जलाशय हैं वो फिर से छलक उठेंगे। लेकिन जब तक थोड़ा सा हम संभल के पानी का इस्तेमाल करेंगे, यही उम्मीद है। और इसी उम्मीद के साथ गुड मॉर्निंग जबलपुर कार्यक्रम में आपके लिए मैं लेकर आया हूँ अगला ये गीत, जिसका जो फिल्म पहेली से हमने लिया है, सोनू निगम, श्रेया घोषाल, मधुश्री, बेला शेंडे, इन सभी की आवाज़ें हैं, गुलजार के बोल हैं और MM क्रीम का संगीत है।

आकाशवाणी जबलपुर से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग जबलपुर। और जबलपुर आपसे आपके साथ मधुर मधुर गीत जब मैं भी सुन रहा हूँ तो आपको ये बात बताना नहीं भूलता कि जिस तरह से ये मौसम बदल रहा है। देखिए, सुबह सुबह जब मैं घर से निकला था तो ढेर सारे बादल थे, लेकिन मुझे ये बात पक्का पता है कि दोपहर तक थोड़ा सा धूप तो निकल ही आती है, थोड़ी सी उमस हो जाती है और शाम तक दोबारा से ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, थोड़ी बहुत बारिश भी हो जाती है। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि मौसम बदल रहा है, गर्मी से दोबारा बारिश हो जाती है, बारिश से दोबारा उमस गर्मी हो जाती है। और ऐसे में अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अक्सर मौसम के इस बदलाव में सर्दी, खांसी, ज़ुकाम और अन्य बीमारियाँ जो हैं, जैसे मच्छर से होने वाली बहुत सारी जो बीमारियाँ हैं, उससे हमें अपना बचाव करना है। और ये ध्यान रखना है कि अगर हमारे घर के आसपास कहीं भी पानी भर जाता है, या हमारे कूलर हैं जो अब हमने चलाना बंद कर दिए हैं शायद, लेकिन उसमें अभी भी पानी भरा हुआ है, तो जल्दी से उसे खाली कर दीजिए। और अगर अभी भी कूलर चला रहे हैं तो कुछ दिन में जब उसे बंद कर दें तो उसका पानी ज़रूर खाली करना मत भूलिएगा, नहीं तो मच्छर जो हैं वो आपके घर में ही अपना बसेरा बना लेंगे, फैमिली प्लानिंग कर लेंगे और ढेर सारे आपकी परेशानियों को वो आपको जन्म दे देंगे। तो यही बताते हुए गुड मॉर्निंग जबलपुर में कि अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि प्राणायाम, योगा, कसरतें हर दिन आप ज़रूर करें। इसी संदेश के साथ बढ़ते हैं गीत को, आपको अगला गीत आपको सुनाते हैं परिणीता फिल्म से। गीत को गाया है सोनू निगम और श्रेया घोषाल ने, शांतनु मोइत्रा का संगीत।

कार्यक्रम गुड मॉर्निंग जबलपुर आप सुन रहे हैं और श्रोताओं, कार्यक्रम में अगला गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं सोनू निगम की आवाज, हेमा सरदेसाई और शंकर महादेवन का इसमें साथ। नदीम श्रवण के इस गीत पर बोल दिए हैं समीर ने, तो लीजिए सुनिए।

दिल को खुश कर देने वाले गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसी सिलसिले में अगला गीत अब आप सुनिए। ये जो गीत है हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म प्यार किया तो डरना क्या से, टाइटल ट्रैक है और हिमेश रेशमिया साजिद वाजिद का इसमें संगीत है, साथ में जतिन ललित भी हैं। तो लीजिए सुनिए इस गीत को।

कुमार सानू और अलका याग्निक की खूबसूरत आवाज़ में आपने एक गीत सुना, फिल्म प्यार किया तो डरना क्या से, आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से हम बोल रहे हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग जबलपुर अब समाप्त होता है, इसी संदेश के साथ कि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए इस बदलते मौसम में, जल यानी कि पानी का संरक्षण कीजिए और योग करते रहिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने के लिए 3 दिन की राजकीय यात्रा पर आज रवाना होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में भारत की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया। भूकंप ग्रस्त वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद, राहत सामग्री और चिकित्सा सहायता भेजी गई। FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हराया। पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय मैचों में लगातार 17 मैच में बढ़त का सिलसिला जारी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन से 1-0 से हार कर 2 बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे प्रतियोगिता से बाहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि स्वर्ण जयंती समारोहों में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी बद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ संवाद उत्साहजनक रहा।
2: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, ना ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
0: श्री गोयल ने इस समझौते के माध्यम से नए अवसर खुलने के साथ ही दोनों देशों के व्यवसायियों को सहयोग बढ़ाने

0: नवाचार को बढ़ावा देने और साझा समृद्धि के लिए निवेश करने को आमंत्रित किया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी, सहकारी क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 4,000 से अधिक वाहन चालक यानी सारथी भाग लेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चालकों को प्लेटफॉर्म शेयर सर्टिफिकेट भी प्रदान किए जाएंगे।
1: अमूल, इफको और नाबार्ड जैसी 8 प्रमुख सहकारी संस्थाओं के सहयोग से सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा विकसित भारत टैक्सी 0 कमीशन मॉडल पर काम करती है, ताकि कमाई का अधिकतम हिस्सा सीधे चालकों को मिल सके। पिछले साल दिसंबर में इसकी प्रारंभिक शुरुआत के बाद से अकेले गुजरात में 1.5 लाख से अधिक चालक और 7 लाख से अधिक ग्राहक इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं, जहाँ हर दिन 3,500 से अधिक सफर पूरे किए जा रहे हैं। यह सेवा गुजरात के अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा सहित 14 प्रमुख शहरों में आज से शुरू की जाएगी। अगले 1 महीने में पूरे राज्य में इसका विस्तार करने का लक्ष्य रखा गया है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया। ये संयंत्र फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर से प्राप्त परमाणु ऊष्मा से कॉपर क्लोरीन ताप रासायनिक प्रक्रिया से संचालित है। डॉक्टर मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा कार्बन मुक्त और विश्वसनीय विद्युत उपलब्ध कराने में सक्षम है। ये बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन के लिए उपयुक्त है। ये हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3,000 लोग घायल हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से जारी है। एक रिपोर्ट।
2: अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेस ने आपातकाल घोषित किया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसके अंतर्गत कल भारतीय वायुसेना के 2 विमानों से राहत सामग्री और 41 सदस्यों का बचाव दल भेजा गया है। राहत सामग्री में चिकित्सा कर्मी, भारतीय सेना की फील्ड हॉस्पिटल यूनिट, चिकित्सा उपकरण, दवाइयां और अन्य जरूरी सामान भेजे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में वेनेजुएला की सरकार और लोगों के साथ है। राष्ट्रपति रोड्रिगेस ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान ने उसके तटवर्ती रडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। इस बीच ईरानी सेना के प्रवक्ता इब्राहिम अल फिकार ने कहा कि इस बार अमेरिकी हमले पर ईरान की प्रतिक्रिया तेज और निर्णायक होगी। उन्होंने कहा कि ईरान माकूल जवाब के लिए सही समय और स्थान का चुनाव करेगा। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाए जाने की बात कही थी। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा जारी की है। इस समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्ला की हमले रोकने और दक्षिणी लेबनान से हटने का निर्देश शामिल है। अमरीकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमरीकी मध्यस्थता में समझौते की रूपरेखा इसराइल सरकार और लेबनान के बीच तय हुई है। श्री रूबियो ने इसे शांति और स्थिरता बहाल करने की दिशा में पहला कदम बताया।
3: Today is the first step in that journey. And the first step is sometimes the hardest step, but it's the one we're taking together today. Obviously, the people of Israel deserve to live in peace and security.
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करें।

0: दो दिन के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसमें समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श होगा। सम्मेलन के माध्यम से केंद्र और राज्य गांवों के विकास और साझा रणनीति तैयार करेंगे। चर्चा में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और ग्राम पंचायत स्तर पर योजना प्रक्रिया को मजबूत बनाने तथा संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के अंतर्गत आज छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे पर बातचीत प्रस्तुत की जाएगी। अंबिकापुर नगर निगम का ये कैफे प्लास्टिक कचरे के बदले भोजन उपलब्ध कराता है। कार्यक्रम में गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी से बातचीत प्रसारित की जाएगी।
1: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया जी, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा?
2: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए।
3: हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया।
4: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये कार्यक्रम आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर सुना जा सकता है। ये न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा। इसका पुनः प्रसारण कल सवेरे 9:10 पर होगा। और अब खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
5: FIH प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। लंदन में मैच के पहले क्वार्टर में अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़त दिलाई, लेकिन दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह ने गोल कर मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, जुगराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल ने 4 और गोल किए। चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने टीम के लिए 7वां गोल किया। प्रतियोगिता में कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। उधर आयरलैंड के बेलफास्ट में पहले T20 क्रिकेट मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू होलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस बीच फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया। नॉर्वे नॉकआउट में पहुंच गया है, जबकि सेनेगल अगले राउंड में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। इसके अलावा उरुग्वे भी स्पेन से हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गया है और तथा सऊदी अरब का मैच बिना गोल के ड्रॉ रहा। ग्रुप जी में न्यूजीलैंड और बेल्जियम तथा मिस्र और ईरान कुछ देर बाद आमने सामने होंगे।
0: जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉक आई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरलम, माहे और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
6: धन्यवाद मुकेश। गृहमंत्री अमित शाह के मादक पदार्थ नियंत्रण पर दृष्टि पत्र जारी करने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने गृहमंत्री के हवाले से लिखा है, देश से नशे का कारोबार 3 वर्षों में खत्म कर देंगे। पत्र के अनुसार 100 बड़े गिरोहों को समाप्त करने के लिए केंद्र ने रणनीति तैयार की। पंजाब केसरी के अनुसार 3 सूत्री रणनीति पेश, पता लगाओ, बाधित करो और नष्ट करो। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य देते हुए लिखा है, AI को जिम्मेदारी के साथ अपनाना विकसित भारत के लिए जरूरी, इससे AI आधारित उपकरणों का उपयोग करके बढ़ाई जा सकती है कार्यकुशलता। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला की मदद को भारत ने शुरू किया ऑपरेशन अमिस्ताद, सेना की विशेष राहत टीम भेजी गई। पत्र के अनुसार भूकंप में मृतक बढ़कर 920 हुए, 3000 घायल और 50,000 लापता। अमर उजाला के अनुसार त्रासदी के बीच गूंजी किलकारी, मलबे में बच्चे का जन्म। लोकसत्य ने भूकंप के खतरे और हम शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, वेनेजुएला में कुछ ही सेकेंड में 2 बड़े भूकंप में हजारों लोगों के मारे जाने की आशंका है। पूरे विश्व में भूकंप की स्थिति भयावह होती जा रही है और अपना भारत भी खतरे की जद में है। दैनिक जागरण के अनुसार बंगाल में लैंड जिहाद, लव जिहाद और जबरन मतांतरण के विरुद्ध बनेगा कानून। मुख्यमंत्री शुभेंदु बोले, बंगाल की धरती पर राष्ट्र विरोधी ताकतों के लिए

0: कोई जगह नहीं। अमर उजाला की सुर्खी है, श्रीराम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा तय, आरोपियों से मिले 80 लाख रुपए। हिंदुस्तान ने मंदिर और दान की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, चढ़ावा चोरी करने वालों को दंड मिलना ही चाहिए, राम के मंदिर में हर व्यवहार राम भाव से ओतप्रोत होना चाहिए, राम जी की सेना या सेवा में चोरों का क्या काम। राजस्थान पत्रिका ने मिट्टी की पुकार शीर्षक से लिखा है, 94 वर्ष की उम्र में आंध्र प्रदेश की महिला ने छोड़ी अमरीकी नागरिकता, कहा मुझे अमरीकी नहीं भारतीय नागरिक बनकर मरना है। देशबंधु ने आर्थिक पृष्ठ पर जताया है, भारत के इंजीनियरिंग निर्यात ने बनाया रिकॉर्ड, मई में पहली बार छुआ 12 अरब डॉलर का आंकड़ा।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने के लिए आज सेशल्स की 3 दिन की राजकीय यात्रा पर रवाना होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया। भूकंप ग्रस्त वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद। FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन से 1-0 से हारकर दो बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे प्रतियोगिता से बाहर। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to embark on 3-day state visit to Seychelles this morning to attend Seychelles' 50th National Day. Union Home and Corporation Minister Amit Shah to launch Bharat Taxi service in 14 cities of Gujarat today. India develops world's first hydrogen production facility that uses heat from nuclear reactor. New Delhi launches Operation Amistad to aid quake-hit Venezuela, sends relief material and medical assistance as death toll rises to 920. In the FIH Men's Pro League Hockey, India thrashes Pakistan 7-1 in London last night. And in football, 2-time champion Uruguay crash out of FIFA World Cup after losing to Spain 1-0. Prime Minister Narendra Modi will embark on a 3-day state visit to Seychelles this morning to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as a guest of honour. Prime Minister last visited Seychelles in 2015. External Affairs Ministry said in a statement that a contingent of the Indian Defence Forces, along with 2 Indian Navy ships, will participate in the celebrations. During the visit, Prime Minister will hold talks with President of Seychelles, Dr. Patrick Harmini, and review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international issues of mutual interest. Our correspondent has filed this report.
3: Prime Minister Modi will address the National Assembly of Seychelles and interact with members of the Indian diaspora during his visit. Today, he is scheduled to visit the botanical gardens for a tree plantation ceremony and visit the Seychelles Coast Guard base. India and Seychelles share a long-standing partnership rooted in shared historical, cultural and people-to-people ties. As a key maritime neighbour in the Indian Ocean region, Seychelles holds a special place in India's Vision Mahasagar and its commitment to the Global South. The visit will reaffirm the strong and enduring friendship between India and Seychelles and reinforce the shared commitment of both countries to enhance the bilateral relationship across all sectors. Suparna Saikia, Akashwani News, Delhi.
2: Union Home and Corporation Minister Amit Shah will launch cooperative-based taxi service Bharat Taxi in 14 major cities in Gujarat at the Mahatma Mandir in Gandhinagar today. Mr. Shah, who is on a 3-day visit to Gujarat, is also scheduled to launch several key initiatives and chair review meetings. Our correspondent reports that along with Chief Minister Bhupendra Patel, Deputy Chief Minister Harsh Sanghvi, representatives from cooperative sector and more than 4,000 drivers will participate in the program.
4: Developed by Sahakar Taxi Cooperative Limited with the support of 8 major cooperative institutions including Amul, IFFCO and NABARD, Bharat Taxi operates on a zero commission model to pass the maximum financial benefits directly to drivers. Since its soft launch in December last year, this platform has registered over 1.5 lakh drivers

खुद ही बनाते हैं हम पेचीदा जिंदगी को, वरना तो जीने के नुस्खे बहुत आसान हैं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग श्रोताओ, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुरमई सवेरा में। और आज के सफर में मैं हूं आपके साथ नेहा सूनी। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज कार्यक्रम में ढेर सारी हम बातें करेंगे और साथ ही सुनवाएंगे आपको प्यारे प्यारे गीत। चलिए कार्यक्रम का आगाज करते हैं इस खूबसूरत से नगमे के साथ।

श्रोताओं, कहते हैं कि शब्द इसलिए भी ठहर कर कहना चाहिए ताकि भविष्य में उसी शब्दों के लिए पछतावा महसूस ना हो। हम बोल तो देते हैं पर समझ नहीं पाते कि शब्द हवा में नहीं खुदे, वे मन में उतरते हैं और मन याद रखता है बहुत देर तक, कभी कभी उम्र भर भी। इसलिए कहा जाता है कि शब्दों को ठहर कर कहना चाहिए, क्योंकि वक्त का स्वभाव बड़ा अजीब है। वह वही बातें, वही आवाजें, वही तीर जैसे शब्द किसी अनजाने सुबह फिर से हमारे सामने खड़े कर देता था, और तब एहसास होता है कि बोलना आसान था पर उन शब्दों के लौट कर आने का भार सहन करना सबसे कठिन। पछतावा भी एक तरह की चुप्पी है जिसमें व्यक्ति अपने ही बोल शब्दों से दूर भी नहीं भाग सकता और पास भी नहीं बैठ सकता। इसलिए शब्दों का चयन केवल भाषा नहीं, एक जिम्मेदारी भी है, क्योंकि शब्द कभी नहीं मरते, वे स्मृतियों में बदल कर हमसे जवाब मांगते रहते हैं।

0: ये वो भी ऐप से, वाह।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, कहा जाता है कि हर किसी का आपको समझ लेना जरूरी नहीं है। अच्छी किताबें और अच्छे इंसान अक्सर वही समझ पाते हैं जिनके पास सोचने की गहराई और समझने का हुनर होता है। अगर कोई आपको नहीं समझता तो उसे लेकर परेशान होने की जरूरत भी नहीं है। इस दुनिया में हर व्यक्ति की सोच, समझ और नजरिए की अपनी एक सीमा होती है। जैसे हर किसी को अच्छी किताबों का महत्व समझ नहीं आता, वैसे ही हर कोई अच्छे इंसान की गहराई को भी नहीं समझ पाता है। कुछ लोग केवल शब्द सुनते हैं, जबकि कुछ लोग भावनाओं और विचारों को भी समझने की क्षमता रखते हैं। इसलिए अगर कोई आपकी अच्छाई, आपकी सोच और आपके व्यक्तित्व को नहीं समझ पा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत है। हो सकता है कि उसकी समझ अभी वहाँ तक नहीं पहुँच पाई हो। जीवन में सबसे ज़रूरी बात ये नहीं है कि हर कोई हमें समझे, बल्कि ये है कि हम खुद को समझें और अपनी सच्चाई पर विश्वास बनाए रखें। अच्छे लोग और अच्छी किताबें अक्सर समय के साथ समझ में आती है और उन्हें वही लोग पहचान पाते हैं जिनके पास गहराई से सोचने और महसूस करने की क्षमता होती है।

0: जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: श्रोताओं कहते हैं कि दुख भी एक तरह का सुख है। जीवन की गहराइयों में उतरकर देखा जाए तो दुख केवल पीड़ा नहीं है, वो आत्मा का एक मौन शिक्षक भी है। जो व्यक्ति केवल सुख को ही जीवन का सत्य मानता है, वो अस्तित्व की आधे पक्ष से ही परिचित रहता है, क्योंकि कई बार दुख ही वो द्वार बन जाता है जहां से मनुष्य स्वयं को पहचानना प्रारंभ करता है। सुख में मन बाहर की ओर दौड़ता है, पर दुख भीतर की यात्रा करवाता है। सुख हमें संसार से जोड़ता है।

जबकि दुख हमें अपने वास्तविक स्वरूप से मिलवाता है। यही कारण है कि अनेक संतों, ऋषियों और साधकों ने दुख को शत्रु नहीं बल्कि आत्म जागरण का साधन भी माना है। जब जीवन सब कुछ छीन लेता है तब व्यक्ति समझता है कि वास्तव में उसका अपना क्या है। जब अपेक्षाएं टूटती है तब वैराग्य जन्म लेता है। जब हृदय आहत होता है तब ईश्वर की खोज भी प्रारंभ होती है, ऐसा कहा जाता है। और इसीलिए हर दुख अपने भीतर किसी गहन कल्याण का बीज लेकर आता है।

श्रोताओ, कभी कभी जब मन दुख डर और निराशा से भर जाता है तब इंसान रो नहीं पाता। उसके भीतर जमा भावनाएं किसी और रूप में बाहर आने लगती है। वह चिड़चिड़ा हो जाता है, छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाता है या अनचाही बातें कह देता है। इसलिए कभी कभी कठोर व्यवहार के पीछे बुराई नहीं होती बल्कि एक टूटा हुआ, थका हुआ और दर्द से भरा इंसान छिपा होता है जिसे सिर्फ समझने की जरूरत होती है।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। आइए सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से सेशल्स की यात्रा पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ दुरुपयोग और अवैध तस्करी विरोधी दिवस पर कल केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में नारकोटिक्स कंट्रोल की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल भोपाल में आयोजित लोकतंत्र सेनानियों के प्रादेशिक सम्मेलन में कई घोषणाएं की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों को सरकार स्पेशल ट्रेन से तीर्थ दर्शन कराएगी। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर आज प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में राजधानी भोपाल के रविन्द्र भवन परिसर में होने वाले मुख्य कार्यक्रम में प्रदेश के औद्योगिक विकास की दिशा में कई निर्णय लिए जाएंगे। रेलवे ने यात्रियों की भीड़ को देखते हुए जोधपुर और चेन्नई के बीच 27 जून से साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेन पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल के रुठियाई, गुना, बीना, भोपाल और इटारसी स्टेशन से गुजरेगी। प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्से के 15 जिलों में एंट्री करने के बाद मानसून ठहर गया है। मौसम केंद्र के अनुसार अगले 2-3 दिन में मध्य प्रदेश के कुछ और हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने की स्थितियां बन रही हैं। और फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।
1: श्रोताओं, हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बज चुके हैं। लीजिए, अब प्रस्तुत है लोकगीत का कार्यक्रम लोक रसधार। श्रोताओं, इसमें सबसे पहले सुनिए रविशंकर श्रीवास्तव के गाए ये लोकगीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम लोक रसधार में अभी आप सुन रहे थे रविशंकर श्रीवास्तव द्वारा गाए लोकगीत। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम में आपको सुनाते हैं शोभा भट्ट इन गायिका द्वारा गाए ये लोकगीत।

श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम लोक रसधार अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:29 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे गुलाम अली द्वारा गाई गजलें। लीजिए प्रस्तुत है पहली गजल।

0: ये आकाशवाणी है, लीजिए प्रस्तुत है आगर मालवा जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है आगर मालवा जिले की चिट्ठी, आलेख महेश शर्मा, वाचन स्वर दीपा सिंह। आगामी वर्षा काल को देखते हुए आगरमालवा जिला कलेक्टर प्रीति यादव ने बाढ़, अतिवृष्टि, आकाशीय बिजली और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सभी विभागों को आवश्यक तैयारियां समय रहते पूरा करने के निर्देश दिए हैं। गत दिनों हुई आपदा प्रबंधन की बैठक में जिला कलेक्टर ने सभी अधिकारियों से कहा है कि आपदा की स्थिति में त्वरित और समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सभी विभाग अपनी कार्ययोजना तैयार रखें और आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करें। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत गंगा दशहरा पर्व पर आगरमालवा जिला मुख्यालय स्थित मोती सागर तालाब में आयोजित गहरीकरण और सफाई कार्य में प्रदेश के उच्च तकनीकी शिक्षा और आयुष विभाग के मंत्री इंदर सिंह परमार शामिल हुए। इस दौरान मोती सागर तालाब में साफ सफाई कार्य किया गया। वहीं जन अभियान परिषद द्वारा जिले के विभिन्न विकास खंडों और गाँवों में जल संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता को लेकर जल स्रोत पूजन, गंगा कलश यात्राएं, सामूहिक श्रमदान और जन जागरूकता गतिविधियों से ग्रामीणों को जल संरक्षण का संदेश दिया गया। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत आगरमालवा जिला अस्पताल में स्थापित तंबाकू व्यसन मुक्ति केंद्र में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें लोगों को तंबाकू सेवन से होने वाले गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने, आमजनों को इसके दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही तंबाकू सेवन से होने वाले कैंसर, हृदय रोग, सांस संबंधी बीमारियों और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं की जानकारी दी गई। मध्य प्रदेश शासन द्वारा समान नागरिक संहिता यूसीसी के संबंध में अध्ययन और परीक्षण हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति की पिछले दिनों आगरमालवा स्थित कंपनी गार्डन के नवीन मांगलिक भवन में समिति के सदस्य प्रोफेसर गोपाल शर्मा की उपस्थिति में जन परामर्श बैठक हुई। इसमें जन प्रतिनिधियों, प्रबुद्धजनों और अन्य वर्गों के लोगों ने विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार और सुझाव पेश किए। कृषक कल्याण वर्ष के अंतर्गत आगरमालवा स्थित पुरानी कृषि उपज मंडी में प्राकृतिक खेती संवर्धन और खेत बचाओ अभियान के तहत पिछले दिनों आयोजित हुए एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम में सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि वर्तमान समय में धरती माता और मानव स्वास्थ्य दोनों को बचाने के लिए प्राकृतिक खेती को जन आंदोलन का स्वरूप देना आवश्यक है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आगरमालवा नगरीय क्षेत्र के पात्र 243 हितग्राहियों को पिछले दिनों विधायक मधु गहलोत ने स्वीकृति पत्र सौंपे। गौरतलब है कि पहली किश्त के रूप में 1-1 लाख रुपए के मान से 2,47,00,000 रुपए सीधे हितग्राहियों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए। अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत हर घर जल बेहतर जल के तहत पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ और बेहतर बनाने के उद्देश्य से आगरमालवा जिले के नलखेड़ा नगर में 11 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन पिछले दिनों क्षेत्रीय विधायक भैरव सिंह परिहार ने किया। योजना के अंतर्गत कुंडालिया बांध से फिल्टर प्लांट तक 16 किलोमीटर रॉ वाटर पाइपलाइन, विभिन्न स्थानों पर उच्च क्षमता की पानी की टंकियों का निर्माण, पाइपलाइन विस्तारीकरण, नल कनेक्शन और फ्लोटिंग इंटरवेल सहित अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे। आगरमालवा जिला पंचायत सभागृह में गत दिनों हुई पशुपालन विभाग की समीक्षा बैठक में सीईओ बीएस सोलंकी ने कृत्रिम गर्भाधान, बधियाकरण, टीकाकरण, क्षीरधारा, ग्राम योजना, दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान, मैत्री योजना, गौशाला संचालन और गौरस ऐप के उपयोग और प्रगति की जानकारी ली। जिले के नलखेड़ा स्थित विश्व प्रसिद्ध पीताम्बरा सर्वसिद्ध पीठ मां बगलामुखी मंदिर में हवन पूजन, विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों के संचालन के लिए पुजारियों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों की जांच और पात्रता परीक्षण प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए जिला प्रशासन ने टीम गठित की है। जिले में 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि में मत्स्य प्रजनन काल होने से कलेक्टर ने जिले के जलाशयों में मत्साखेट पूर्णतः प्रतिबंधित किया है। नियमों के उल्लंघन पर उल्लंघनकर्ता को 1 वर्ष का कारावास या 5,000 रुपए का जुर्माना या दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है। आगर मालवा कलेक्टर प्रीति यादव ने सभी तहसीलदारों को निर्देश दिए हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सभी आवश्यक पात्र हितग्राहियों का ई-केवाईसी निर्धारित समय सीमा 30 जून तक अनिवार्य रूप से पूरा किया जाए ताकि योजना की आगामी किस्तों का लाभ बिना किसी बाधा के प्राप्त हो सके। वृद्धजनों को जागरूक करने के उद्देश्य से आगरमालवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बीते दिनों वृद्धाश्रम में जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में द्वितीय जिला न्यायाधीश मधुसूदन जंघेल ने

वृद्धजन के खान पान स्वास्थ्य से संबंधित बिंदुओं पर चर्चा करते हुए नालसा वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक सेवा योजना और वरिष्ठ नागरिकों माता पिता के भरण पोषण कल्याण अधिनियम 2007 के प्रावधानों की जानकारी दी। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे आगर मालवा जिले की चिट्ठी, ये आकाशवाणी।
1: हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सुबह के 10:05 हुए हैं। लीजिए, प्रस्तुत है वंदे मातरम गौरव गान की 1.5 सदी पर आधारित ये प्रस्तुति।

किसी विविध रंगी गुलदस्ते जैसा है हमारा देश, जिसका हर एक फूल रंग और खुशबू में अपने आप में खास और दूसरों से अलग है। उसके बावजूद हम सब एक दूसरे से मजबूती से जुड़े हुए हैं। बोली, भाषा, रहन सहन, रीति रिवाज अलग, फिर भी सबकी पहचान एक, यानी भारतीय। और भारतीयता का यही जज्बा हमारी सबसे बड़ी ताकत और पहचान है। वास्तव में नदियाँ, सागर, हरे भरे वन, रेगिस्तान और खनिज संपदा किसी देश का भौतिक स्वरूप होते हैं। उसकी सबसे बड़ी कसौटी होती है मानवीय मूल्यों से जुड़ी परंपराएं, जो किसी देश को सबसे अलग और खास बनाती हैं। इसके अलावा उसमें बसने वाले लोग, जो उसे देश के रूप में पहचान देते हैं। हम अपनी मातृभूमि को माँ की संज्ञा देते हैं, जिसके गौरवगान का नाम है वंदे मातरम।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की 3 दिन की राजकीय यात्रा पर रवाना, 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होंगे। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हुए। भूकंप से प्रभावित वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत राहत सामग्री और चिकित्सा सहायता भेजी, मृतकों की संख्या 920 हुई। अमरीका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में ईरान पर फिर हमले किए। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में 2 बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे स्पेन से 0-1 से हारकर प्रतियोगिता से बाहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की 3 दिन की राजकीय यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स को भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और महासागर दृष्टिकोण तथा विकासशील देशों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार बताया है। 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष भारत और सेशल्स के बीच राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंध आपसी विश्वास और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। श्री मोदी ने कहा कि सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के साथ द्विपक्षीय संबंध और मजबूत बनाने तथा हिंद महासागर क्षेत्र की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ संवाद उत्साहजनक रहा।
2: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, ना ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
0: श्री गोयल ने इस समझौते के माध्यम से नए अवसर खुलने के साथ ही दोनों देशों के व्यवसायियों को सहयोग बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने और साझा समृद्धि के लिए निवेश करने को आमंत्रित किया। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3,000 लोग घायल हुए हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से जारी है। एक रिपोर्ट।
3: अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेस ने आपातकाल घोषित किया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसके अंतर्गत कल भारतीय वायुसेना के 2 विमानों से राहत सामग्री और 41 सदस्यों का बचाव दल भेजा गया है। राहत सामग्री में चिकित्सा कर्मी, भारतीय सेना की फील्ड हॉस्पिटल यूनिट, चिकित्सा उपकरण, दवाइयां और अन्य जरूरी सामान भेजे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में वेनेजुएला की सरकार और लोगों के साथ है। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत

0: की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। विश्व दर्पण के लिए मृगनयनी पांडे।
1: परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया। ये संयंत्र फास्ट ब्रीडर रिएक्टर से प्राप्त परमाणु ऊष्मा से कॉपर क्लोरीन ताप रासायनिक प्रक्रिया से संचालित है। डॉक्टर मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए और उसके तटवर्ती रडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से बातचीत में कहा था कि संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन होने पर इसके गंभीर परिणामों का पता चलेगा। इस बीच ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने खबर दी है कि अमेरिका के हवाई हमलों के जवाब में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने अमरीकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। ईरानी सेना के प्रवक्ता इब्राहिम अल-फिकार ने कहा कि इस बार अमरीकी हमले पर ईरान की प्रतिक्रिया तेज और निर्णायक होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा था कि ईरान माकूल जवाब देने के लिए सही समय और स्थान का चुनाव करेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा जारी की है। इस समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्लाह को हमले रोकने और दक्षिणी लेबनान से हटने का निर्देश शामिल है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिकी मध्यस्थता में समझौते की रूपरेखा इसराइल सरकार और लेबनान के बीच तय हुई है। श्री रूबियो ने इस शांति और स्थिरता बहाल करने की दिशा में पहला कदम बताया।
2: Today is the first step in that journey. And the first step is sometimes the hardest step, but it's the one we're taking together today. Obviously, the people of Israel deserve to live in peace and security.
1: भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पिछले सप्ताह के दौरान 963 मिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर 672 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार ये वृद्धि मुख्य रूप से सोने के भंडार में वृद्धि होने से आई है। भारत में सोने का भंडार 4.1 बिलियन अमरीकी डॉलर बढ़कर 107 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक हो गया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में दो बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे स्पेन से 0-1 से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गया। इसके साथ ही स्पेन ग्रुप एच में शीर्ष पर रहा। खेल के 42वें मिनट में एलेक्स बायना ने स्पेन के लिए विजयी गोल दागा। ग्रुप एच के अन्य मुकाबले में काबो वेर्दे सऊदी अरब के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलकर अगले राउंड में पहुंच गया। इससे पहले ग्रुप आई में फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर रहा। नॉर्वे 6 अंक के साथ अगले राउंड में पहुंच गया। सेनेगल अगले राउंड में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। और अब अन्य खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
3: FIH प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। लंदन में मैच के पहले क्वार्टर में अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़त दिलाई, लेकिन दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह ने गोल कर मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, जुगराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल ने 4 और गोल किए। चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने टीम के लिए 7वां गोल किया। प्रतियोगिता में कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। उधर आयरलैंड के बेलफास्ट में पहले T20 क्रिकेट मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथी होलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भूटान के शिक्षा मंत्री यीजांग दे थापा से कल मुलाकात की। श्री प्रधान ने बताया कि चर्चा शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर केंद्रित थी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की 3 दिन की राजकीय यात्रा पर रवाना, 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होंगे। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हुए। भूकंप से प्रभावित वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत राहत सामग्री और चिकित्सा सहायता भेजी। मृतकों की संख्या 920 हुई। अमरीका ने होर्मुज जल डमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में ईरान पर फिर हमले किए। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में दो बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे स्पेन से 0-1 से हारकर प्रतियोगिता से बाहर। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Good morning, this is Akashvani and I'm
1: श्रोताओं, हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:20 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है आपके पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मों फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सारंगा। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम आपको वो गीत सुनाते हैं जिसकी फरमाइश आपने हमें लिख भेजी है, आपके प्यारे प्यारे पत्र हमें जो मिले हैं, और इसी सिलसिले में इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आपको सुनाते हैं फिल्म पापा कहते हैं का ये गीत, जिसे गाया है कुमार सानू अलका याग्निक ने। राजेश रोशन का संगीत है और जावेद अख्तर के बोल। इस गीत को सुनना चाहते हैं कवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण शामली, मीना, आदित्य, शिवानी, मीनू राज शामली। आप सभी श्रोताओं की पसंद पे लीजिए पेश है ये गीत।

श्रोताओं, ये तो आप भी जानते हैं और सिर्फ मैं जानता हूँ कि यहाँ इस कार्यक्रम में आपके पसंद के ही गीत बजने वाले हैं। इसलिए तो आपके लिए लेकर आया हूँ मैं अगला गीत। और ये जो गीत की फरमाइश हमें कर भेजी है जय बजरंग रेडियो श्रोता संघ से लक्ष्मण रैकवार, विनीता रैकवार और वैशाली वैष्णवी ने, आप सभी श्रोता सुनना चाहते हैं फिल्म हम आपके दिल में रहते हैं का टाइटल ट्रैक, अनुराधा पौडवाल, कुमार सानू की आवाज़ और अनु मलिक का संगीत। तो लीजिए श्रोताओं, सुनिए ये आपका मनपसंद गीत।

कार्यक्रम सारंगा में आप सुन रहे हैं श्रोताओं आपके मनपसंद गीत, और अगला गीत जो हम आपके लिए लेकर आए हैं उसको सुनने के ख्वाहिशमंद हैं सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा। आप सभी श्रोता सुनना चाह रहे हैं फिल्म पहेली का ये गीत, जिसे गाया है सुनिधि चौहान, सुखविंदर सिंह ने। MM क्रीम का संगीत है और गुलजार के बोल।

आकाशवाणी जबलपुर से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सारंगा, जहां पर आपके भेजे हुए पत्रों के आधार पर हम आपको सुनवा रहे हैं आपके फरमाइशी फिल्मी गीत। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म परिणीता से। इस गीत को गाया है सोनू निगम और श्रेया घोषाल ने। शांतनु मोइत्रा का संगीत है स्वानंद किरकिरे के बोल। गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब से विनोद, अशोक, सुशील, बीके, कैलाश, अनीता, ममता, मेघा। लीजिए श्रोताओं, आप सभी की पसंद पर प्रस्तुत है ये गीत।

चुपके चुपके नहीं, हमें जोरों शोरों से आपके पत्रों का इंतज़ार रहता है और यही ख्वाहिश रहती है कि जितने ज़्यादा आपके पसंदीदा गीत हम आपको चाहें तो वो सुना सकें। तो लीजिए श्रोताओं, अगला गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं। बहरहाल बता दें आपको कि ये जो गीत है इसे सुनने के ख्वाहिशमंद थे लुधियाना से कुणाल, निधि, हरीश, सतीश, राकेश, गगन, गुंजन, रामा, आप सभी श्रोताओं ने ये गीत सुनना चाहा था फिल्म परदेश से, जिसे कुमार सानू ने गाया था। नदीम श्रवण का इसमें संगीत था। अगला गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म पापा कहते हैं से। इस गीत को गाया है कविता कृष्णमूर्ति ने और जावेद अख्तर के बोल हैं, राजेश रोशन का संगीत है। गीत को सुनना चाहते हैं यंग रेडियो लिसनर्स जवाहर गंज जबलपुर से, जिनेंद्र जैन, महेंद्र जैन। लीजिए आप दोनों की फरमाइश पर कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में ये गीत।

आकाशवाणी जबलपुर पर श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सारंगा, जहां पर हम आपको सुना रहे हैं आपके फरमाइश किए हुए प्यारे प्यारे से नगमे। श्रोताओं, कार्यक्रम में अगला गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म हम तुम पे मरते हैं का टाइटल ट्रैक, और इसे गाया है लता मंगेशकर, उदित नारायण ने, बोल हैं आनंद बख्शी के और संगीत है उत्तम सिंह का। गाने को सुनने की फरमाइश की है बिलहरी बड़खेरा कटनी से संतोष ठाकुर, अवधेश दुबे, सुमेर पटेल, सुदामा सेन, सुजीत, मुनीर एवं बंसी ने। श्रोताओं, आप सभी की फरमाइश पे लीजिए सुनिए ये गीत।

स्वागत है आपका कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में। मैं हूं आपके साथ अनुजा। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारा जो ये कार्यक्रम है, इसमें हम बात करते हैं आपसे किसी विषय पर और सुनाते हैं फिर आपको प्यारे प्यारे गीत। तो आज का हमारा विषय है, आप जिंदगी में कमबैक कैसे करते हैं, तमाम परेशानियों परिस्थितियों के बाद हताश होकर किस तरह दोबारा जिंदगी में एक जिंदगी से लड़ने के लिए दोबारा खड़े हो जाते हैं, खुद को इंस्पायर कैसे करते हैं, अभिप्रेरित कैसे करते हैं, मोटिवेट कैसे करते हैं, तो किस तरह से आप जिंदगी में आगे बढ़ते हैं हमें बताइए। फोन करके, फोन नंबर तो आप जानते ही हैं हमारा, 07552660902। तो जल्दी से हमें फोन कीजिए, तब तक आपको हम सुनाते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: मैं अपूर्वा बोल रही हूँ, अपूर्वा रघुवंशी।
0: जी, तो अपूर्वा जी, आप क्या करती हैं अपनी ज़िंदगी में खुद को वापस मोटिवेट करने के लिए? अगर हार जाते हैं तो फिर कैसे संभल के वापस खड़ी होती हैं ज़िंदगी की जंग लड़ने के लिए?
1: ऐसा अक्सर होता है जीवन में कि हम बहुत थक जाते हैं और फिर लगता है कि कोई फायदा नहीं है ये सब मेहनत करने का, सब ऐसे ही चलेगा। तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो मुझे मेरे नानी की कही हुई एक बात याद आती है
0: जी।
1: कि जिंदगी सबकी कटती है, कभी समय अच्छा कटता है, कभी बुरा कटता है, लाइफ में सब कुछ बैलेंस में रहता है।
0: जी
1: तो हमें ज्यादा लंबा नहीं सोचना चाहिए, बस आज क्या करना है, कल क्या करना है, इसके आगे नहीं सोचना है और बस अपना कर्म करते जाना है।
0: बिल्कुल, क्या बात है। तो हम चाहते हैं हमारे जो श्रोता हैं वो सारी जो आपने जो बातें कही हैं वो बिल्कुल उनको अपनी ज़िंदगी में उतारें और इसी तरह से अपनी लाइफ को जिएं। और आपके परिवार में कौन कौन है?
1: मेरे परिवार में मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे दो बच्चे।
0: अच्छा, चलिए तो अब आपको सुनाते हैं ये गीत।

0: हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी
1: हाँ जी
0: नमस्कार।
1: नमस्ते, किससे बात हो रही है हमारी?
0: हाँ जी, गुलबलो से बोल रहा हूँ, विक्रम मालवीय। हम
1: जी कैसे हैं आप?
0: बढ़िया हैं।
1: तो जैसा कि आप जानते हैं, आज है हमारा कार्यक्रम बात आपकी, गीत हमारे। तो
0: जी
1: आप अपनी ज़िंदगी में मोटिवेट कैसे होते हैं? ऐसी कौन सी चीज़ है, आप ऐसा क्या करते हैं या फिर किस चीज़ से इंस्पायर होते हैं कि वापस आप हताश होकर दोबारा हिम्मत से ज़िंदगी के लिए खड़े हो जाते हैं?
0: ये तो हिम्मत रखना पड़ती है ना मैडम जी।
1: तो वही हिम्मत आपको कहाँ से मिलती है ये जानना चाहते हैं
0: अपने
1: हम।
0: आप पर विश्वास होना चाहिए।
1: बिल्कुल, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीफ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आत्मविश्वास होना ज़रूरी है।
0: हाँ
1: इसके
0: जी
1: अलावा
0: मैडम
1: और
0: जी।
1: ऐसा क्या करते हैं आप जिससे आपको खुशी होती है? जैसे मैं आज दुखी हूँ तो मैंने कुछ अच्छा गाना सुन लिया, या फिर मैंने कुछ अच्छा खा लिया, या फिर बच्चे बच्चों के साथ खेल लिया, या दोस्तों से बात कर ली। तो आप ऐसा क्या करते हैं?
0: ये अपने मित्र या दोस्त है उनको अपनी बात जो है वो शेयर कर दो तो मन हल्का हो जाता है।
1: जी बिल्कुल, तो आप ये करते हैं अपनी ज़िंदगी में एक दोबारा जो है कमबैक करने के लिए। बिल्कुल, तो चलिए अब आपको सुनाते हैं हम ये गीत।

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी, सिद्धार्थ जैन से बात हो रही है मैम।
0: जी सिद्धार्थ जी, कैसे हैं आप?
1: ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
0: मैं भी बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारा आज का कार्यक्रम है बात आपकी गीत हमारे। तो अपनी जिंदगी में कमबैक कैसे करते हैं आप, कैसे खुद को मोटिवेट करते हैं?
1: जैसे कभी कभार, जैसे मैं कभी कुछ परेशान हो जाता हूँ तो कुछ ना कुछ मोटिवेशन के लिए कुछ ऐसी चीजें देखता हूँ जिससे मुझे कुछ मोटिवेशन हो।
0: जी
1: जैसे कि कुछ मूवीज हो गई जिसको अपन देख के अपने अंदर प्रोत्साहन जगता है।
0: हाँ
1: आज
0: जी
1: सुबह जैसे मैं एक मूवी देख रहा था, ग्राम पंचायत 2, जो पार्ट सीजन आया है,
0: हाँ जी
1: तो उसमें वही बता रहे हैं कि आप अपनी परिस्थितियों पे कैसे काबू करके अपना काम कर सकते हैं। तो इससे मेरे को काफी मोटिवेशन मिलता है कि
0: जी
1: अपनी
0: जी
1: परिस्थितियां जो भी है, लेकिन काम आपको उसी परिस्थितियों में रहकर कैसे अपना आउटपुट बेस्ट देना है, वो चीज अपन उससे सीखते हैं।
0: हाँ जी तो बिल्कुल, हमें आपकी बात बड़ी अच्छी लगी कि आप मूवीज़ के थ्रू जो है इंस्पायर हो सकते हैं और मोटिवेट हो सकते हैं। जी, आपने हमें
1: जैसे कि
0: फ़ोन किया, हमें बड़ी खुशी हुई सिद्धार्थ जी। तो अब आपको सुनाते हैं बड़ा ही प्यारा सा ये मोटिवेशनल सॉन्ग।

0: चतुर एक पेर है ना, या घोड़ा बोला या चतुर बोला।
1: एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, अपने ही जाल में फंसत जात, हम मरत जात।

0: हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी नमस्ते, किससे बात हो रही है
1: सुप्रिया
0: हमारी?
1: सिंह से। बढ़िया,
0: जी सुप्रिया जी, कैसी हैं आप?
1: बिल्कुल ठीक हूँ मैं।
0: तो आप
1: आप
0: अपनी ज़िंदगी
1: सुनाइए
0: में
1: आप।
0: कमबैक करने के लिए क्या करती हैं? खुद को कैसे मोटिवेट करती हैं, इंस्पायर करके कैसे रखती हैं?
1: बहुत सारे, कई बार तो हमारे जीवन पूजा पाठ तो हमेशा ही चलती रहती है,
0: हाँ जी
1: और कई बार अपने बच्चों को देखकर ही बहुत खुशी होती है, तो लगता है कि हम भी इनके जैसे बने, थोड़ा
0: हाँ
1: सा
0: जी
1: हमारे अंदर भी फूर्ति आए, थोड़ा सा हम भी कुछ करें, कुछ नया करें। आसपास के लोग भी कई बार इंस्पायरिंग होते हैं,
0: हाँ जी
1: और भी ढेर सारी चीजें होती हैं।
0: जी बिल्कुल। और आपने जैसे बच्चों की बात करी, तो बच्चे तो सबसे ज़्यादा हम इंस्पायर करते हैं, है ना? जैसे बच्चे, आप देखते हैं कि बच्चे रोते हैं, गिर जाते हैं, फिर वापस थोड़ी देर में हम उन्हें हंसते हुए देखते हैं, खेलते हुए।
1: हाँ जी, हाँ जी,

0: बिल्कुल नहीं। और कई बार हम जैसे बच्चे, कई बार बेटी है मेरी तो उसको डांस का बहुत शौक है, तो
1: हाँ जी
0: कई बार वो गानों जो उसके गीत होते हैं डांस वाले, उनको कई बार वो रिपीट करती है, फिर डांस करती है, फिर करती है, फिर कहती है मम्मा ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। तो कई बार हमने आपको इन सारी चीजों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि नहीं उसने कितनी बार कोशिश की और आखिर में सीख कर ही मानी है ना। तो
1: बिल्कुल,
0: बच्चे
1: हाँ
0: भी कई
1: जी
0: बार हमारे लिए इंस्पायरिंग होते हैं।
1: बिल्कुल। तो चलिए, हमें बड़ी, हम चाहते हैं कि आपकी ये बात हमारे और श्रोताओं तक पहुँचे जो अभी उदास महसूस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो उन्हें एक मोटिवेशन और इंस्पायर जो है आप उन्हें ज़रूर
0: जी
1: करेंगी।
0: जी कई बार क्या होता है कि हम कभी बाहर नहीं जा पाते, या बहुत सारा हमें खुद इतने बिजी रहते हैं अपनी लाइफ में, तो हमारे आसपास ही बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जिनको देखकर हम बहुत कुछ सीख सकते हैं ना। हमारे बच्चे हुए, हमारे कई बार बुजुर्ग भी हमको कई बार ऐसी ऐसी बातें बताते हैं जिनके बारे में हम कभी सोचते ही नहीं है
1: हाँ
0: ना।
1: जी
0: हमारे हस्बैंड भी वो बेचारे लगे रहते हैं पूरे समय काम करते, या है ना, या कुछ बहुत टिपिकल ऐसी पोजीशन आ जाती है तो भी वो बेचारे लगे रहते। तो हमारे लिए तो बहुत कुछ है ऐसा आसपास से सीखने के लिए।
1: तो चलिए, आपने हमें फोन लगाया, हमें बड़ी खुशी हुई, और अब हम आपको सुनाते हैं ये प्यारा सा मोटिवेशनल एक गीत।

0: हेलो।
1: हेलो, नमस्कार। राजस्थान
0: हाँ जी, नमस्ते जी।
1: कोटा से। बस
0: अच्छा, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, आप बताओ, आप कैसे?
0: मैं भी बढ़िया हूँ। आपका नाम एक बार हमें बता दीजिए।
1: भूपेंद्र कुमार गुप्ता।
0: जी भूपेन जी, तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारा आज का विषय है कार्यक्रम में बात आपकी गीत हमारे में।
1: विषय
0: आप
1: बताओ ना आप।
0: खुद को मोटिवेट कैसे करते हैं? अभी प्रेरित कैसे करते हैं? जिंदगी में प्रेरणा कैसे लाते हैं?
1: जिंदगी में प्रेरणा तो प्रकृति से ही है सब कुछ।
0: जैसे आप कभी हताश होते हैं, उदास हो जाते हैं, तो आप क्या करते हैं जिससे आप वापस खुश हो जाते हैं और जिंदगी जीने के लिए आगे बढ़ते हैं?
1: संगीत का सारा लो, अगर उदास होते हो तो
0: जी जी बिल्कुल।
1: संगीत सुनाओ, अपनों के साथ बैठ के बातें करो,
0: हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, अपनों से बात
1: बात
0: करें,
1: करो,
0: संगीत सुने के।
1: पुरानी यादों
0: हाँ
1: में पुराने
0: जी
1: दोस्तों को याद करो।
0: जी बिल्कुल,
1: अगर
0: पुराने
1: उदास
0: दोस्तों
1: हो वो
0: को,
1: टाइम
0: पुराने
1: भी
0: पलों
1: आज
0: को।
1: बकायदे से देखा जाए,
0: जी जी बिल्कुल
1: कैसी भी परिस्थिति हो उसका मुकाबला करना चाहिए।
0: बिल्कुल, कैसी भी परिस्थिति हो उसका डटकर हमें मुकाबला करना चाहिए, और उसका तरीका ही है ये चंद खुशियाँ। हाँ जी
1: परेशानियां तो,
0: जी जी
1: अगर परेशानी नहीं हो तो फिर जिंदगी क्या है? परेशानी
0: बहुत, ये भी बिल्कुल सही बात है।
1: बॉयल करो तो खुशी खुशी है,
0: जी
1: अब
0: जी
1: मानो तो खुशी है, नहीं मानो तो फिर कुछ भी नहीं
0: क्या बात है, बिल्कुल सही, बड़ी अच्छी बातें हुई
1: है।
0: आपसे। अब आपको हम सुनाते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी, नमस्ते
1: जी, नमस्ते मैम।
0: जी। किससे बात हो रही है हमारी?
1: मेरी करिश्मा चौकसे से बात हो रही है।
0: अच्छा, मेरी मेरी आपसे बात हो रही है
1: आपकी करिश्मा चौकसे से बात हो रही
0: जी।
1: है।
0: करिश्मा जी, कैसी हैं आप?
1: मैं बढ़िया हूँ मैम, आप कैसे हो?
0: मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। और करिश्मा जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: मैं भोपाल से बात कर रही हूँ मैम।
0: अच्छा, भोपाल से ही बात कर रही हैं। चलिए,
1: हाँ
0: तो मैं आज, जैसा कि आप जानती हैं, हमारा आज का विषय है कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे में, कि आप खुद को मोटिवेट कैसे करते हैं, खुद को प्रेरित कैसे करते हैं ज़िंदगी जीने के लिए।
1: मैम, मैं खुद को प्रेरित ऐसे करती हूँ कि अपने आसपास के एटमोसफियर को मतलब एक खुशहाल बना के
0: जी
1: और हमेशा खुशियां ढूंढ ढूंढ के अपने आप को मोटिवेटेड करती हूँ।
0: जी क्या बात है, मुझे तो आपकी आवाज़ से लग रहा है कि आप बड़ी हंसमुख हैं। ज़िंदगी में परेशानियां होंगी पर चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहती है आपके, सही है
1: हाँ
0: क्या?
1: मैम, परेशानियां तो जिंदगी में बनी रहती हैं, बट आगे जिंदगी जीने के लिए खुशहाल तो रहना ही पड़ेगा ना। यदि
0: बिल्कुल
1: अपन खुशहाल रहेंगे तो ऑलरेडी खुशियां ही आएंगी जिंदगी में।
0: बिल्कुल करिश्मा
1: नेगेटिविटी
0: जी।
1: सोचेंगे तो
0: हाँ,
1: नेगेटिविटी ही आएगी।
0: क्या बात है, मतलब पॉजिटिव सोचना चाहिए। आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होगा,
1: हाँ
0: पॉजिटिव सोचोगे तो
1: पॉजिटिविटी, यदि अपन पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी रहेगी अपने आसपास। नेगेटिविटी देखेंगे तो नेगेटिविटी देखेंगे। इसलिए मैं अपनी जिंदगी में कोशिश करती हूँ कि हमेशा नेगेटिव चीजों से दूर रह के पॉजिटिव चीजों को गेन करूँ और पॉजिटिव

0: भी पॉजिटिव रहूं।
1: बिल्कुल, तो हम अपना समझ सकते हैं आपकी, जैसा जो आप कहना चाह रही हैं कि हमेशा ज़िंदगी में सकारात्मक रहना चाहिए, और जब आप परेशान हैं तो आप सकारात्मक सोचने की कोशिश कीजिए और उसका ही प्रयास कीजिए।
0: तो क्या सकारात्मक सोचेंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी जो पॉजिटिविटी रहेगी तो वही चीज आपको हर चीज सकारात्मक सकारात्मक दिखेगी।
1: बिल्कुल, आप उसको उसी परिस्थिति को सकारात्मक नज़रिए से देखेंगे। हमें बड़ी खुशी हुई करिश्मा कि आपने हमें फ़ोन लगाया और हमसे इतनी अच्छी बात साझा करी। चलिए अब हम आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: हेलो,
1: नमस्ते
0: नमस्ते। किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी। मैं बोल रही जुलेखा खत्री इटारसी से। जी
0: जी, कैसी हैं आप?
1: मैं अच्छी, आप कैसी?
0: मैं भी बढ़िया हूँ। इटारसी में मौसम कैसा है अभी?
1: मौसम तो धूप निकली हुई है,
0: अच्छा, बारिश नहीं हुई अभी?
1: बारिश तो बहुत कम है, बहुत।
0: जी, बिल्कुल। देखिएगा, जल्दी से बारिश होगी अब वहाँ पे।
1: जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद।
0: तो बात आपकी गीत हमारे आज कार्यक्रम है, और जैसा कि आप जानते हैं, हमारा आज का विषय है आप जिंदगी को कैसे जीते हैं, खुद को प्रेरित कैसे करते हैं, मोटिवेट कैसे करते हैं जिंदगी जीने के लिए।
1: जी
0: आपसे जानना चाहेंगे आप कैसे जिंदगी को जीती हैं। वापस उदास होती हैं तो वापस खुश होने के तरीके क्या ढूंढती हैं, हिम्मत से कैसे वापस खड़ी हो जाती हैं।
1: जी तो मैं ऐसे ढूंढती हूँ कि जैसे कभी मैं उदास होती हूँ तो फिर मैं सोचती हूँ कि और भी तो लोग इतने उदास है, कितनी ज्यादा परेशानी में, हमारी परेशानी हम देखते हैं तो औरों से थोड़ी ही कम लगती है, तो फिर खुश हो जाती हूँ कि नहीं भाई ठीक है।
0: जी,
1: और चाहती हूँ कि किसी को भी ना आए परेशानियाँ,
0: हाँ जी
1: और इसमें ध्यान लगा देती हूँ।
0: जी जी बिल्कुल। तो आपके परिवार में कौन कौन है?
1: परिवार में मेरी माँ है
0: जी,
1: और मेरा भाई है।
0: अच्छा, क्या बात है। बिल्कुल, तो माँ तो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन होती, प्रेरणा होती है हमारे लिए, है ना।
1: बिल्कुल सही।
0: हमने माँ को तकलीफ में भी देखा है, लेकिन उसके बाद भी हमारे लिए हमेशा माँ जो है बीमार होती थी, उसके बाद भी हमारे लिए भोजन बनाना, हमें खाना खिलाना, हमें हमारा ध्यान रखना, हमारी पढ़ाई करवाना, आधी नींद में भी हमारे लिए जागती थी वो हमेशा।
1: बिल्कुल सही, माँ तो माँ होती है, उनका दर्जा तो कोई नहीं ले सकता है।
0: बिल्कुल सही बात है। तो सबसे बड़ी प्रेरणा जो है हमें माँ से मिलती है, और
1: जी
0: आपने हमें फ़ोन किया, हमें बड़ी खुशी हुई।
1: जी जी मुझे बहुत खुशी हुई, कई दिनों बाद लगा मैडम जी मेरा फोन।
0: बिल्कुल, अब तो आप देखिएगा, आप प्रयास करते रहिए, फोन जरूर लगेगा
1: जी
0: आपका।
1: बिल्कुल बिल्कुल जी सही।
0: जी, आपने हमें फोन किया, बड़ी खुशी हुई। चलिए, अब आपको सुनाते हैं प्यारा सा गीत।

अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हमें उम्मीद है कि अब आप अपनी जिंदगी को और ज्यादा प्रेरणा से, हिम्मत से, मोटिवेशन होकर और इंस्पिरेशन के साथ जिएंगे। अपने आसपास की चीज़ों से खुद को प्रेरित करेंगे और अपने आसपास के लोगों को भी अपनी हिम्मत से प्रेरित करेंगे, मोटिवेशन देंगे।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आइए सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर रवाना होने से पहले जारी अपने वक्तव्य में कहा कि इस साल भारत और सेशल्स के बीच राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। दोनों देशों के रिश्ते आपसी विश्वास, लोकतांत्रिक मूल्यों, विविधता के सम्मान और मजबूत जनसंबंधों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ईरान को चेतावनी दी है कि यदि वो भविष्य में संघर्ष विराम का उल्लंघन करता है या कोई आक्रामक कार्रवाई करता है तो अमेरिका उसका सैन्य जवाब देगा। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर आज प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में राजधानी भोपाल के रविन्द्र भवन परिसर में होने वाले मुख्य कार्यक्रम में प्रदेश के औद्योगिक विकास की दिशा में कई निर्णय लिए जाएंगे। हज 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने इच्छुक लोगों से निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करने की अपील की है। और भोपाल के मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में शलाका जनजातीय चित्र प्रदर्शनी चल रही है। गौंड चित्रकार मनीषा ध्रुवे के चित्र प्रदर्शित हैं। ये प्रदर्शनी 30 जून तक चलेगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, जहां आज मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो साथी ऋषभ आहूजा। श्रोताओं, इस मौसम की जो गर्मी है उसमें बारिश बस आने ही वाली है, तो चलिए इन बारिश की बूंदों के आगमन के इंतजार में हम शुरू करते हैं हमारा कार्यक्रम आपकी फरमाइश। श्रोताओं, इस कार्यक्रम के लिए आज का पहला खत हमें प्राप्त हुआ है मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से, नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा का। इसी गीत के लिए अगली फरमाइश हमें प्राप्त हुई है आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस, तपस्या और करिश्मा कामले की, जो कि गौरी नगर इंदौर से हैं। इनकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं ये गीत जो हमने लिया है फिल्म दिल चाहता है से। शंकर महादेवन, शान और केके की आवाज़ें हैं। जावेद अख्तर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है शंकर एहसान लॉय ने।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश ट्यून किया है आपने और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म कभी खुशी कभी गम से। अलका याग्निक, सुनिधि चौहान, उदित नारायण और सुदेश भोसले, साथ ही आदेश श्रीवास्तव की आवाजें हैं। गीतकार हैं समीर और इसको संगीत दिया है आदेश श्रीवास्तव ने। और साथ ही इसी गीत के लिए हमें खत प्राप्त हुआ है पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और बेबी आरजू जाजोरिया का। इसी गीत के लिए हमें अगली फरमाइश मिली है आदर्श नगर मालोट पंजाब से ही राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरभ शर्मा की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।
1: हां जी बादशाह, की देख रहे हो तुसी? चलो शुरू हो जाओ। 1 2

श्रोता, ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म कल होना हो से। वसुंधरा दास, के शान और लॉय मेंडोजा की आवाज़ें, जावेद अख्तर के लिखे बोल और संगीत था शंकर एहसान लॉय का। साथ ही इसी गीत

0: के लिए हमें फरमाइश भेजी थी आशा रेडियो श्रोता संघ मेहरनगर उमेरखंड महाराष्ट्र से, अभिजीत गवहाणकर राही, श्रीमती सरिता गवहाणकर, सिद्धांत गवहाणकर, प्रिंस एकांश गवहाणकर और आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से शैलेश गवहाणकर, श्रीमती वैशाली गवहाणकर, श्वेता सुमित गवहाणकर और कुमारी ध्वनि गवहाणकर परी। श्रोताओं आइए अब अगला गीत हम सुनते हैं जिसके लिए हमें फरमाइश प्राप्त हुई है। सिंगापुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता नेमा, भावना और प्राची नेमा से। ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म आजा नचले से, पीयूष मिश्रा के लिखे बोल, सलीम सुलेमान का संगीत और इस गीत में आवाज़ है सुनिधि चौहान की।
1: Dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata din

श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश ट्यून किया है आपने और आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश का। श्रोताओं, यह अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं जिसके लिए हमें फरमाइश प्राप्त हुई है, पाकिजा रेडियो श्रोता संघ, वैष्णव कॉलोनी सना।

0: फिल्म कभी अलविदा ना कहना से ये गीत आपने सुना, जिसे लिखा था जावेद अख्तर ने, संगीत था शंकर एहसान लॉय का, और इस गीत में आपने आवाज़ें सुनी शान वसुंधरा दास और साथियों की। श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम आपकी फरमाइश संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला प्रसारण होगा इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।
2: दंभ का स्तंभ खंडम धम त्रिशूल गाड़ के, प्रलयंकारी गति से बिन नखे

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर

0: Nasansani, Nasansani, Nasansani, Nasansani. Naotechna, Naotechna, Naotechna. Nashor din ra, Nashor din ra,
1: Nashor din ra. Chori chori kiya re.
0: Nahi ahankar. केवल मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और सच्चे समाचार। जी हाँ, यही बिखेरता है आपके जीवन में आकाशवाणी परिवार।
2: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। इसके अंतर्गत आज आपको सुनवा रहे हैं रेडियो धारावाहिक भुवन मोहिनी का नौवां भाग।

0: धारावाहिक भुवन मोहिनी की अब तक की कड़ियों में आपने जाना कि राजकुमार विजय श्रवा से प्रेम करने के कारण धारा नगरी के राजा द्युम्नसेन ने नर्तकी भुवन मोहिनी को देश निकाला दे दिया था। कुछ दिनों बाद भुवन मोहिनी की तलाश में राजकुमार इंद्रप्रस्थ पहुंच गया, जहां की राजा आदित्य सेन के यहाँ भुवन मोहिनी आश्रय में थी। आदित्य सेन अपनी पुत्री का विवाह विजय श्रवा से कराना चाहता था। चंद्रहासिनी की ओर आकर्षित होने के बावजूद विजय श्रवा भुवन मोहिनी से ही प्रेम करता था। चंद्रहासिनी ये जानकर भी विवाह करने को तैयार थी। इंद्रप्रस्थ के मेले में विजय श्रवा के पिता सम्राट द्युम्नसेन ने सभी भारतीय खंड राज्यों की सभा बुलाई, जिसमें हूणों से लड़ने के लिए भारतीय सेनापति के रूप में विजय श्रवा का चयन हुआ। धारा की सभा में हूणों के अपमानजनक प्रस्ताव को पढ़ा गया। आमात्य ऋषभ देव ने कहा कि युद्ध टालने के लिए चंद्रहासिनी को समर्पित कर दिया जाए। ये सुनकर भुवन मोहिनी ने क्रोध में आकर ऋषभ देव का सिर काट दिया। उसके इस कार्य की सर्वत्र प्रशंसा हुई। राजकुमार के सेनापतित्व में हूणों से युद्ध हुआ, जिसमें भारतीय सेना विजयी हुई। विजय के बाद विजय श्रवा ने चंद्रहासिनी से विवाह किया और वो सम्राट बना। अब आगे क्या होता है, सुनिए धारावाहिक भुवन मोहिनी की 9वीं कड़ी में।
1: चंद्रहासिनी के साथ मेरा विवाह संपन्न हो गया। धारा नगरी लौटकर सम्राट ने स्वयं संन्यास ले लिया और मुझे सम्राट की गद्दी सौंप दी। आज मेरे पास सब कुछ है। भारत समस्त खंड राज्यों के नरेशों का एक सुदृढ़ संघ बन चुका है और मैं भारत का सम्राट हूं। सत्ता और शक्ति की अविरल धारा बहने लगी है, परंतु फिर भी एक रिक्तता है। भुवन मोहिनी चंद्रहासिनी को साम्राज्ञी बनवाकर राष्ट्र की सुप्त नारियों को जगाने के कार्य में संलग्न हो गई। स्वप्रेरणा से या मुझसे दूर जाने के लिए नहीं जानता। यद्यपि मैं प्रजा के हितार्थ कार्यों में स्वयं को व्यस्त रखता हूं, फिर भी मेरी आंखें सदैव भुवन मोहिनी को ही खोजती रहती हैं। प्रत्येक क्षण लगता है कि वो द्वार पर आकर खड़ी हुई है और कहती है,
2: आपने याद किया सम्राट विजय श्रवा?
1: इस ध्वनि को सुनने के लिए मैं तड़प रहा हूं। कब आओगी भुवन मोहिनी, तुम कब आओगी मुझसे मिलने?
2: मैं आपके ही कक्ष में हूं देव।
1: आहा, भुवन मोहिनी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मेरे कक्ष में मेरे सामने हो। ना जाने कितने दूत मैंने तुम्हें खोजने के लिए भेजे, सब लौट कर यही बताते रहे कि तुम नहीं मिली। क्यों क्यों भुवन मोहिनी, तुम मुझे भूलकर मुझसे इतनी दूर कैसे चली गई? क्यों चली गई? वो तुम ही हो ना जिसने राजकुमारी चंद्रहासिनी को मेरे जीवन में बलात् प्रवेश कराने की अनवरत चेष्टा की। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मुझे तुमको खोना होगा। मैं दृष्टि फाड़ फाड़ कर सूने पथ पर तुम्हारे बढ़ते चले आने वाले महायान की प्रतीक्षा करता रहता हूं। अपने अंतर की उस विवश आकुलता को दबाकर, किंतु जब तुम्हें नहीं देख पाता तब एक पश्चातापूर्ण भावना जीवन में घुलकर कहती है, सब व्यर्थ है। मेरे जीवन के कर्म सब व्यर्थ हैं। मेरी दहकती विवक्ष भूमि ज्वालामुखी का उद्गार बन जाती है।
2: सम्राट, जिस तरह

0: चाहता भुवन मोहिनी।
1: आपकी उद्विग्नता साम्राज्य की निकटता समाप्त कर देगी सम्राट, आप उन्हें अवसर तो दें। चंद्रहासिनी आपकी पूजा करती हैं, आपको देवों से भी बढ़कर मानती हैं। मेरा क्या है, मुझे आपकी दया ने एक नर्तकी से राष्ट्रभक्त नारी के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। मेरे लिए यही आशातीत है, इससे अधिक की ना तो मुझे कोई अभिलाषा है और ना ही कामना। मुझे आज्ञा दें सम्राट, मेरे सामने बहुत कार्य हैं। आपसे प्रार्थना है कि बिना किसी प्रयोजन के मुझे ना बुलवाया करें। प्रणाम।
0: भुवन मोहिनी।

क्या भुवन मोहिनी को सम्राट ने बुलवाया था? मेरी प्रियतम, क्या मैं अपना समस्त प्रेम दान देकर भी उस आग की ज्वलनशीलता को कम नहीं कर पाई जिसे भुवन मोहिनी की स्मृति ने दहका रखा है? आह स्वामी, मैंने भूल की है। मैंने अपने सुख के लिए आपके और भुवन मोहिनी के जीवन की होली जला दी है।

0: अरे देखिए ना, ये नन्हे कुंवर के गालों पर ये लाल लाल क्या हो गया है?
1: छोटे बच्चों को ऐसा हो जाया करता है साम्राज्ञी, इसमें परेशान मत हो।
0: अरे अरे रे रे रे, चुप हो जा मेरा बच्चा, चुप हो जा। अरे नहीं, चुप हो जा बेटे।
1: आज भुवन मोहिनी आ रही है।
0: अच्छा
1: हाँ, मैंने बुलवाया है, आती ही होगी। 5 वर्ष बाद आज उसके दर्शन होंगे।
0: मैं भी अपनी सखी को देखने के लिए आकुल हूं सम्राट।
2: सम्राट की जय हो।
1: अरे भुवन मोहिनी, आओ, तुम्हारी ही चर्चा। कितना परिवर्तन हो गया है तुम में, तुम तो साक्षात योगिनी बन चुकी हो।
2: अरे कितना नन्हा देवोपम, कोमलता का प्रतिरूप। बधाई हो बहन चंद्रहासिनी, बहुत बहुत बधाई आप दोनों को पुत्र रत्न प्राप्ति के लिए।
0: अरे छोड़ो सखी, इतना ही दुलार था तो पुत्र जन्मोत्सव में क्यों नहीं आई?
2: मेरा रोम रोम इन्हें आशीर्वाद दे रहा था, परंतु मैं अपने कार्यों में इतनी व्यस्त रही कि समय ही नहीं निकाल सकी। मेरी त्रुटि को क्षमा करना बहन। आ आ हाँ, मेरे पास आएंगे। आइए ना, आइए, दो ना बहन।
0: हाँ, ये लो जा। तू भी भुवन मोहिनी की गोद में ही रहा कर। ना जाने कब से तेरे पिता इनके नाम की माला जपते रहे हैं। अब तू भी पिता की भांति मेरा तिरस्कार कर।
1: साम्राज्ञी,
2: ऐसा ऐसा मत कहो बहन। सुना भुवन मोहिनी, ये वही राजकुमारी है जिसको सुखी बनाने के लिए तूने अपनी प्रेम आकांक्षाओं को होम कर दिया। फिर भी राजकुमारी तेरे प्रति कृतज्ञ नहीं है।
0: लो मुझे दो, मेरा कुमार है, कहीं इसे भी तुम्हारी गोद की आदत ना पड़ जाए। चलेगा दूध पीने? आ चल, तुझे दूध पिला दूं। मैं तेरी माँ हूं सम्राट पुत्र। मैं तेरी माँ हूं। आ

0: आचल।
1: क्षमा मांग सकता हूं तुमसे भुवन मोहिनी?
2: कुछ मत बोलिए आप, बहुत कड़वी घूंट पी चुकी हूं, अब इनका प्रभाव नहीं पड़ता। सम्राट अभी तीर्थाटन पर गई थी।
1: कभी अपनी तूलिका से तुम्हारा चित्र बनाया था।
2: नारी सेवा के काम में लग गई हूँ।
1: निर्वासित होते समय तुम्हारा वो मुखड़ा अभी भी मुझे याद है।
2: मैंने अब तक 8 आश्रम आरंभ करा दिए हैं सम्राट।
1: भुवन, कहीं नहीं जाना है तुम्हें।
2: क्यों?
1: इसलिए कि राजकाज से अवकाश मिलने पर जब कभी तुम्हारी पागल स्मृति कौंधती है, तब मेरा हृदय चीत्कार कर उठता है और कहता है, क्या इसीलिए तुमने मुझे विवश करके चंद्रहासिनी को स्वीकार करने की प्रेरणा दी थी कि तुम मुझसे विलग रहो?
2: तो इसमें बुराई क्या है मेरे सम्राट? आपके दाम्पत्य जीवन में मेरी उपस्थिति सर्वदा बाधक होती और हमारी सम्माननीय साम्राज्ञी समझती कि मैं उनके सरस जीवन में अपनी उपस्थिति से विष घोल रही हूं। आज मुझे संतोष है कि निरंतर 5 वर्षों तक आपसे दूर रहकर मैंने अपने को अपराधिनी बनने से बचा लिया है।
3: ये झूठ है, मुझे फुसलाने का एक विषैला षड्यंत्र है।
1: चंद्रहासिनी!
2: राजकुमारी क्षमा करो, पिछले 5 वर्षों में धारा नगरी में मेरी उपस्थिति अधिक से अधिक मात्र 1 माह की हुई होगी। तब मैं अपने पागल मन को नहीं रोक पाती थी, सबके दर्शन के लिए 2-4 दिन रुक जाती थी। किंतु मुझे आश्चर्य हुआ सुनकर कि मैंने आप दोनों के दाम्पत्य जीवन में विष घोलने का षड्यंत्र किया। आज भी अपराधिनी सिद्ध होने पर मैं सहर्ष कठोर से कठोर दंड स्वीकार करूंगी।
3: जिसके शीश पर भारत सम्राट का वरद हस्त हो, उसे दंडित करने का अपराध कौन मोल लेगा?
2: असत्य है राजकुमारी, जिस अपराध का संदेह तुम मुझ पर आरोपित कर रही हो, उसे हृदय चीर कर दिखला सकती तो अवश्य दिखलाती कि तुम्हारी प्रियतम को अपनी ओर मिलाए रखने का मैंने कोई कुचक्र कोई षड्यंत्र नहीं रचा। हाँ, मैं सम्राट को नहीं रोक पाती कि वो अपनी ममता की धारा मुझ पर ना उड़ेले।
3: यही यही तो काटा है जिसे दूर होना चाहिए।
1: पा लिया ना तुमने भुवन मोहिनी वो परिणाम जिसके लिए मैंने तुम्हें सावधान किया था। चंद्रहासिनी आज भारत की साम्राज्ञी है, वो तुम जैसी तुच्छ नारी के प्रति कभी कृतज्ञ नहीं हो सकती। उसे वो क्षण भूल गए जब दीनहीन याचक की भांति तुम्हारे सम्मुख नेत्रों में आंसू भरे हुए प्रणय दान के लिए अपना आंचल फैलाए हुए थी। आज तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर वो मुस्कुरा रही है।
3: भुवन मोहिनी, मेरी बातें जितनी तुम्हें असह्य नहीं होंगी, उससे कहीं अधिक भारत सम्राट को दुखा रही हैं। अरे अरे, मुझे क्षमा करो, कहीं इन बातों का बदला मुझसे चुकाया गया तो मैं किसका सहारा खोजूंगी? कम से कम तुम्हारा पक्ष तो भारत सम्राट ग्रहण कर रहे हैं ना भुवन मोहिनी? उन्होंने अभी अभी स्वीकारा है कि तुम्हारे दया के कारण मैं साम्राज्ञी बनी हूं। क्यों नहीं ऐसा हुआ कि मैं तुम्हारी दया ना लेती? राजकुमारी होने के कारण किसी न किसी राजकुमार की जीवन संगनी तो होती ही ना। किंतु ऐसा नहीं हुआ। आज सम्राट भी मुझ पर कृतज्ञता का बोझ लाद कर कह रहे हैं, यदि तुमने मेरे साथ सदैव व्यवहार ना किया होता तो वो संभवतः मुझे स्वीकार ना करते।
1: हाँ हाँ, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करता, इसमें कोई संदेह भी मत रखना चंद्रहासिनी।
3: देख लिया ना भुवन मोहिनी, क्या मैंने झूठ बोला था कि तुम्हारी उपस्थिति मात्र से किस प्रकार हमारे दाम्पत्य जीवन में भयानक प्रहार होते हैं? कहा था ना मैंने?
2: साम्राज्ञी, मैं तुमसे हाथ जोड़कर।
1: साम्राज्ञी से क्षमा याचना करके मुझे अधिक लज्जित मत करो भुवन मोहिनी। तुमने तुमने कोई अपराध नहीं किया, सारा दोष मेरा है। मैंने तुम्हारे अतुल स्नेह के प्रति भयानक अपराध किया है। मैंने ही तुम्हारे समर्पित जीवन को कुचल कर नीरस बनाया है। मैं ही तुम्हारे मरु जीवन में झंझावात पैदा करने वाला भयानक स्वार्थी और लोलुप व्यक्ति सिद्ध हुआ हूं। चलो, आज से मैं अपने पूर्व पापों का प्रायश्चित करूंगा।

0: चंद्रहासनी साम्राज्ञी रहे मुझे कोई आपत्ति नहीं, किंतु मैं स्वयं सम्राट पद का परित्याग कर तुम्हारे साथ राह राह का भिखारी बनूंगा। मुझे नहीं चाहिए ऐसा उद्धत प्रेम जो हमारी दृष्टि में हमारा अपमान करने पर तुल जाए। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो, अंततः साम्राज्ञी भी एक नारी है, सर्वदा अवध आदंडनी। अस्तु मैं आज से ही साम्राज्ञी से दूर रहूंगा ताकि उन्हें किसी प्रकार हमारे प्रति क्षोभ न उत्पन्न हो। चलो भुवन मोहिनी।
1: सम्राट,
0: मैं तुमसे कुछ नहीं सुनना चाहता भुवन मोहिनी, चलो।

0: हम राजप्रसाद के इस खंड में रहेंगे, याद है ना, यहीं पर मैंने तुम्हारा चित्र बनाया था। किशोरावस्था से लेकर सम्राट होने तक मेरा आवास यही प्रखंड था। कोलाहल से दूर एकांत में, और तुम्हें मेरी सौगंध है भुवन मोहिनी, तुम इस योगिनी स्वरूप का परित्याग करो। एक बार फिर से मुझे उस स्नेह वारुणी से उन्मत्त हो लेने दो, जिसे पीकर मेरा जीवन हरा भरा हो जाए। मैं अनुभव कर रहा हूं कि मेरे जीवन में भयानक शून्यता आ रही है, और मैं अपने को उसी नीरव शून्यता में विलीन करता जा रहा हूं। राजकुमारी चंद्रहासिनी अपने सौंदर्य मद में प्रतिपल पागल हो रही हैं, और वो समर्पण का ढोंग रचकर प्रतिक्षण मेरे समर्पण की उपेक्षा करती जा रही हैं। मैंने किसी प्रकार 5 वर्ष अपने दाम्पत्य जीवन के नाम पर व्यतीत कर डाले हैं, किंतु चंद्रहासिनी कभी भी सौंदर्योन्माद के विषैले नशे से बच नहीं सकी। वो महानता की उपासिका हैं, जबकि मैं अस्तित्वहीनता का। भुवन मोहिनी, आह, तुम्हारे स्पर्श में अभी भी वही मादकता है, वही विद्युत तरंगों से चपल भावनाओं का मायावी उन्माद, वही प्राणों में कंपन और सिहरन पैदा करने वाली प्राकृतिक वासना का स्फुरण। प्रिय, तुम्हें ये रूप राशि इसलिए नहीं प्राप्त हुई है कि मैं उसे देखकर आत्मविभोर हूं, अप्राप्य की भांति तुम्हें ना प्राप्त कर सकने की छलना में निरंतर जलता रहूं। बोलो भुवन मोहिनी, मैं चंद्रहासिनी के रूप की उत्पत्त गरिमा को बुझा दूंगा यदि तुम्हारा संबल प्राप्त हो। यदि एक बार तुम इस असमय के वैराग्य को ठुकरा सको, अन्यथा ये अतृप्त अनंत जीवन की वासना बनकर मुझे क्षुब्ध करती रहेगी, और मैं लुप्त मधुप की भांति तुम्हारे रूप की यश गाथा को मन ही मन गुनगुनाते हुए उद्भ्रांत बना रहूंगा। मुझे चाहिए तृप्ति, तुम्हारे अक्षय यौवन के उपभोग की पूर्ण स्वीकृति, अन्यथा मैं माननी चंद्रहासिनी के साम्राज्य को ठुकरा दूंगा। चंद्रहासिनी को चाहिए सत्ता और शक्ति, वो उसे मैं स्वेच्छा से प्रदान कर विरक्त हो जाऊंगा। आज चंद्रहासिनी की गोद में साम्राज्य के सिंहासन का प्रतिनिधि खेल रहा है, वो उसके रंग में रंगकर मुझे भूल सकती हैं और मेरी उपेक्षा भी कर सकती हैं, किंतु तुम बोलो, क्या तुम भी मेरी उपेक्षा करना चाहती हो? क्या तुम भी मेरे जीवन में मात्र छलना सिद्ध होना चाहती हो? बोलो भुवन मोहिनी, बोलो, तुम मुझसे घृणा करती हो?
1: नहीं।
0: तुम मुझसे दूर भागना चाहती हो?
1: नहीं।
0: क्या तुम्हें मेरी वासनात्मक वृत्तियों के प्रति रोष है?
1: नहीं।
0: क्या कभी तुमने अंतर के निगूढ़तम प्रकोष्ठ में मेरी मूर्ति बिठाकर कभी पश्चाताप करना चाहा है?
1: नहीं।
0: क्या कभी तुमने मेरे लिए सर्वस्व उत्सर्ग ना करने की शपथ ली है?

0: कभी नहीं।
1: तो क्या कभी मेरी आसक्ति पर तुम्हें भय या रोष उत्पन्न हुआ था?
0: कभी नहीं।
1: क्या तुम सदैव मुझे देवत्व पर प्रतिष्ठित रखने के बोझ से दबी रही हो?
0: कभी नहीं देव।
1: तो क्या कभी तुम्हें चंद्रहासिनी के जीवन संगिनी बनाने का आंतरिक क्षोभ हुआ है?
0: कभी नहीं।
1: तब मायावनी, तब सच सच कहो, मेरी छाया से ही भयभीता बनकर मुझसे दूर क्यों भागती रही हो? क्या मुझसे प्रेम करने का तुम्हारा हार्दिक उल्लास अब मर चुका है?
0: नहीं, किंतु
1: तुम्हें मेरी सौगंध है, मुझसे गोपनीय बनकर रहने की धृष्टता ना करना। मैंने तुम्हारे सम्मुख अपना अंतरपट खोल कर रख दिया है। मैं तुम्हें पाप पुण्य की भावना से विलख रख कर प्यार करता रहा हूं, और आज मैं प्यार के बदले प्यार ही चाहता हूं।
2: आप तो प्यार पा ही रहे हैं सम्राट। भुवन मोहिनी आपकी गोद में अल्लड़ बालक सी मचल जो रही है।
1: ऐसी ही बैठी रहो भुवन मोहिनी। साम्राज्ञी, तुमने मेरे एकांत में पहुंचकर भीषण अपराध किया है। सावधान, अब तुम्हें अपने किए का दंड भोगना ही पड़ेगा। देखो, नेत्रों में आग भर के देखो, आज से मेरी गोद में प्रणय लीला रचाने वाली भुवन मोहिनी पुनः प्रतिष्ठित हो चुकी है। तुमने मुझसे जो प्रणय दान चाहा था, वो भी भुवन मोहिनी का उच्छिष्ट था। भुवन मोहिनी की अनिच्छा देखकर भी मैं उसे अपने प्रेम दान से विभूषित करूंगा।
0: सम्राट,
1: भुवन मोहिनी, भुवन मोहिनी, कहां जा रही है?

हे मेरे जीवन के शत शत सहस्त्र लक्ष विद्रोह के स्फुलिंगो, तुम एक बार एकाकार होकर प्रलयंकारी महाज्वाल बनकर धधक उठो। असीम वेदनाएं, अगणित निराशाएं, तीव्र जलन और घोर हाहाकार जीवन को इतना रुला चुका है कि अब आंसू सूख गए हैं। विद्रोह प्रबल हो उठा है, हमारी रग रग में एक ज्योति जलने लगी है। जीवन चाहता है कि उसी में भस्म हो जाए, मुट्ठी भर राख के अतिरिक्त कोई अवशेष न बचे। अपने भौतिक अस्तित्व पर अभिमान करने वालों को मैं बता जाऊं कि कैसे मरना होता है। आत्महनन करके मैंने जो पुण्य कमाया था वो तो मानो आत्मछल था, वो सर्वदा अपने आप को धोखा देती रही। किंतु आज अंतर तारों से जो चीत्कार प्रतिध्वनित हो रहा है वो मानो करुणा सागर में जीवन की समाधि लगा देगा। चंद्रहासिनी के लिए मुझे अपने सुख का परित्याग करना पड़ा था, चंद्रहासिनी के लिए दान कर डाला था अपने प्रीतम प्रणय के अनंत बसंतों को। यदि यदि मैं समझ पाती कि उस प्रतिदान का परिणाम आंसुओं में जीवन को विगलित कर देना है तो क्यों अपने मिलन भरे वसंत में पतझड़ लाती। काश काश मैं ना समझती कि प्रेम की पीड़ा से छटपटाने वाली एक सुंदरी राजकुमारी ने मेरे ऋतुराज को छीनकर अपना वसंत मनाया है। आज मैंने चंद्रहासिनी की दृष्टि में प्रेम की असहिष्णुता का दर्शन किया। वो तो मानो मेरे प्रणय की प्रतिस्पर्धिनी बनकर उग्र प्रतिकार के लिए तत्पर है। किंतु दूसरी ओर मेरे प्रियतम विजय श्रवा की आकुलता घुन सी मेरे जीवन की सुख शांति और समृद्धि को चूर चूर कर रही है। अब मेरे सामने मात्र दो रास्ते हैं, या तो मैं चंद्रहासिनी की सर्वत्र उपेक्षा करके विजय श्रवा के जीवन को मधुमेह वसंत के मादक हिलोरों से भर दूं, या अपने जीवन का अंत करके चंद्रहासिनी के लिए सर्वस्व उत्सर्ग कर जाऊं। परंतु यदि मैं उत्सर्ग करती हूं तो मेरे प्रिय का क्या होगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं देव के जीवन में सरस वसंत अनुप्राणित करने का एक बार प्रयास अवश्य करूंगी, भले ही मुझे चंद्रहासिनी की कोपाग्नि में भस्म ही क्यों ना होना पड़े।

0: कहाँ है साम्राज्ञी? साम्राज्ञी के महल के सभी दासों और परिचारिकाओं सुन लो, अब तुम्हें साम्राज्ञी की सेवा में लगे रहने की आवश्यकता नहीं है। चंद्रहासिनी, मैं आज तुम्हें दंड देने आया हूं। बोलो, तुम्हें क्या दंड दिया जाए?
1: सम्राट,
0: मैं तुम्हें शारीरिक दंड न देकर मानसिक दंड दूंगा। मैंने तुम्हें साम्राज्ञी पद पर प्रतिष्ठित करके भयानक भूल की है। एक अकृतज्ञ नारी हो तुम। जाओ, आज से तुम साम्राज्ञी पद से वंचित की जा रही हो।
1: नहीं,
0: मैं आज ही आदेश देता हूं कि समस्त साम्राज्य की प्रजा तुम्हें राजकुमारी चंद्रहासिनी के नाम से संबोधित करे, ना कि साम्राज्ञी।
1: नहीं सम्राट,
0: तुम्हें मेरे राज प्रासाद को भी त्यागना होगा।
1: परंतु सम्राट,
0: तुम्हें अपने राजकुमारी होने पर गर्व है ना? तो जाओ, महाराज आदित्य सेन की लाडली बनकर इंद्रप्रस्थ के राजमहल को सुशोभित करो। तुम जैसी माननी के लिए धारा नगरी के राजप्रसाद में कोई स्थान नहीं है।
1: नहीं, सम्राट।
0: मैं इस अंतापुर की संरक्षिका को आदेश देता हूं कि 24 घंटों के अंदर चंद्रहासिनी धारा नगरी के अंतापुर का परित्याग कर दे।
2: कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक भुवन मोहिनी का 9वां भाग। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से सेशल्स की यात्रा पर रहेंगे। वह सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से 3 दिवसीय गुना जिले के दौरे पर हैं। आज इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में आमजनों से मिलकर उनकी समस्या संबंधी आवेदन प्राप्त किए। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर आज प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव के मुख्य आतिथ्य में राजधानी भोपाल के रविन्द्र भवन परिसर में होने वाले मुख्य कार्यक्रम में प्रदेश के औद्योगिक विकास की दिशा में कई निर्णय लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज से 2 दिवसीय दौरे पर बैतूल जिले के हिल स्टेशन कुकरू जाएंगे। वह गांव वालों से बातचीत भी करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। रेलवे ने यात्रियों की भीड़ को देखते हुए जोधपुर और चेन्नई के बीच 27 जून से साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन रुठियाए, गुना, बीना, भोपाल और इटारसी स्टेशन से गुजरेगी। हज 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने इच्छुक लोगों से निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करने की अपील की है। और भोपाल के माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होने के इच्छुक अभ्यर्थी 10 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आप जुड़े हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। दोपहर के 1 बज रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला सभा। योगदान आकाशवाणी के रीवा केंद्र का है।

सी कोमल चांद सी प्यारी, धरती की शोभा है हर नारी। उसकी हंसी में सावन गाए, उसकी ममता जग महकाए। नदियों सी निर्मल उसकी धारा,

जीवन में भर दे उजियारा। सूरज सा साहस, दीपक सा मान, नारी है सृष्टि की पहचान। हरियाली का संदेश सुनाती, प्रेम और करुणा की ज्योति जलाती। नारी और प्रकृति का यह नाता सारे जग को सुख दे जाता। मैनो इसी जोश और उमंग के साथ हम फिर हाजिर हैं आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम महिला सभा लेकर। तो बहनों स्वीकार कीजिए अष्टा का नमस्कार। बहनों जनगणना किसी भी देश की जनसंख्या, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति से संबंधित जानकारी एकत्र करने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह कार्य सामान्यतः प्रत्येक 10 वर्ष में किया जाता है। मैनो जनगणना से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर सरकार विभिन्न योजनाएं बनाती है और देश के विकास की दिशा निर्धारित करती है। मैनो जनगणना में महिलाओं की भागीदारी और उनकी सही जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि किसी भी समाज की प्रगति महिलाओं की स्थिति पर निर्भर करती है। मैनो लोग सोचते हैं जनगणना केवल देश के लोगों की संख्या जानने का माध्यम है, लेकिन बहनों जनगणना से यह पता चलता है कि देश में महिलाओं की साक्षरता दर क्या है, कितनी महिलाएं रोजगार से जुड़ी हैं और किन क्षेत्रों में महिलाओं को अधिक सहायता की आवश्यकता है। इन आंकड़ों के आधार पर सरकार महिलाओं के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, मातृत्व लाभ, स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता से संबंधित योजनाएं तैयार करती है। मैंने हम महिलाओं को यह समझना आवश्यक है कि जनगणना केवल जनसंख्या की गणना नहीं है, बल्कि हमारे परिवार के बेहतर भविष्य का आधार है। मैंने प्रत्येक महिला का कर्तव्य है कि वह 2027 में होने वाली जनगणना में जनगणना अधिकारी को सही और पूर्ण जानकारी प्रदान करे, साथ ही अपने परिवार और समाज की अन्य महिलाओं को भी जनगणना में सहयोग करने के लिए प्रेरित करे। मैंने एक जागरूक महिला न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे समाज के विकास में योगदान देती है, क्योंकि जब महिलाएं जागरूक होंगी और जनगणना में सहयोग देंगी तभी एक सशक्त समाज और विकसित राष्ट्र का निर्माण संभव है। अब आइए बहनों मोहम्मद रफी की आवाज में सुन लेते हैं आराधना फिल्म का ये गीत।

0: आइए बहनों, हम 2027 में होने वाले जनगणना के बारे में श्रेया पांडे से बातचीत करते हैं। श्रेया जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है।
1: नमस्ते, मैं श्रेया पांडे। जनगणना किसी भी देश के विकास की आधारशिला है। इसके बिना सरकार योजनाएं नहीं बना सकती और ना ही जनता की को क्या आवश्यकता है ये ठीक से समझ सकती है। इसलिए प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह जनगणना में अपना पूरा सहयोग दे। जनगणना किसी भी देश में रहने वाले लोगों की संख्या, आयु, लिंग, शिक्षा, भाषा, व्यवसाय, आवास आदि से संबंधित जानकारी को एकत्रित करने की एक सरकारी प्रक्रिया है। यह हर 10 वर्ष में कराई जाती है।
0: क्या जनगणना में महिलाओं की सही संख्या, सही स्थिति दर्ज होना आवश्यक है?
1: हाँ, महिलाओं की सही संख्या एवं स्थिति का जनगणना में, जिससे कि उनकी सामाजिक स्थिति का पता चलता है, वे सामाजिक रूप से कहाँ, उनकी क्या स्थिति है, उनकी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण और उनका जो लिंगानुपात है वो भी कितना बढ़ा या घटा, इसकी जानकारी के लिए उनकी सही महिलाओं की सही जानकारी जनगणना में होना बहुत आवश्यक है, जिससे कि उनके लिए जो भी योजनाएं बनेंगी उनको बनाने में बहुत सहायता मिलती है।
0: महिलाओं और बच्चों के विकास में जनगणना की क्या भूमिका है?
1: महिलाओं एवं बच्चों के विकास में जनगणना की बहुत भूमिका है। महिलाओं के सही स्थिति महिलाएं एवं बच्चों के बारे में दर्ज होने से महिलाओं के विकास के लिए योजना बनाने में मदद मिलती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण एवं रोजगार संबंधी योजनाएं महिलाओं को पहुंचाने में बहुत सहायता मिलती है एवं महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण के लिए बेहतर नीतियां बनाई जा सकती हैं जनगणना के माध्यम से। एवं बच्चों के विकास में मातृ स्वास्थ्य एवं पोषण से जुड़ी योजनाएं बनाने में बेहतर सहायता मिलती है। महिला रोजगार एवं आर्थिक स्थिति की जानकारी के आधार पर आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजनाएं बनाई जा सकती हैं।
0: श्रेया जी, आपने हमारी बहनों को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, जिसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद
2: बहनों। अच्छा स्वास्थ्य एक ऐसी व्यक्तिगत और सामाजिक अनुभूति है जिसमें महिलाएं अपने आप को सक्रिय, सृजनशील, समझदार तथा योग्य महसूस करती हैं, जिससे उनकी विभिन्न क्षमताओं व योग्यताओं को यथा योग्य सम्मान मिलता है। साथ ही निर्भीक रूप से अपने आप को अभिव्यक्त कर सकती हैं महिलाएं और जहां चाहे वहां आ जा सकती हैं और कठिन से कठिन कार्य करने में कभी पीछे नहीं हटती। बहनों, अक्सर देखने में आता है कि खून की कमी मतलब एनीमिया की बीमारी भारत में महिलाओं और किशोरियों के सामने एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या बन गई है। बहनों, हमारे शरीर में पर्याप्त हीमोग्लोबिन या लाल रक्त कोशिकाओं की कमी होने पर हमें कमजोरी लगती है और थोड़ा सा काम कर ले तो थकान लगने लगती है, चक्कर आने लगता है, किसी काम में मन नहीं लगता जैसी समस्या होने लगती है। विशेष रूप से किशोरियों और गर्भवती महिलाओं में एनीमिया का प्रभाव अधिक देखा जाता है। बहनों, मिशन उत्कर्ष 2026 का मुख्य उद्देश्य

ये है कि एनीमिया से प्रभावित किशोरियों और महिलाओं में पोषण के स्तर को सुधारना व स्वस्थ जीवन प्रदान करना है। मैंने इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य जागरूकता, पोषण संबंधी शिक्षा, आयरन की पूर्ति और नियमित स्वास्थ्य जांच पर ध्यान दिया जाता है। सरकार का लक्ष्य है कि एनीमिया मुक्त भारत के सपने को साकार किया जाए। मैनो, खून की कमी मतलब एनीमिया होना। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हमारे शरीर में आयरन की कमी, जरूरी पोषक तत्वों का अभाव, बार बार संक्रमण होने के कारण भी हमारा हीमोग्लोबिन का स्तर गिर जाता है। मैनो, आप सोचेंगे कि किस प्रकार का संक्रमण? मैनो, जैसे बार बार दस्त लगना, उल्टी होना, भूख न लगना। लगातार कई दिनों तक दस्त लगने से व्यक्ति की भूख भी मर जाती है और वह खाना नाम मात्र का खाता है, जिस कारण शरीर कमजोर हो जाता, साथ ही हीमोग्लोबिन का स्तर गिर जाता है, व्यक्ति एनीमिक हो जाता है। यदि सही उपचार ना मिला तो यह मौत का कारण भी बन सकता है। मैंने मासिक धर्म के दौरान अत्यधिक रक्तचाप, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के प्रति जागरूकता में कमी भी एनीमिया का कारण बन सकती है। इसीलिए बहनों, सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है किशोरियों में खून की कमी की पहचान के लिए नियमित जांच कराई जाती है। आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियों का वितरण भी कर रही है सरकार। बहनों, संतुलित व पौष्टिक भोजन के प्रति जागरूक कर रही है सरकार, लेकिन माताओं बहनों को भी ध्यान देना चाहिए कि हर घर में माताओं के साथ साथ बेटियों को भी खास तौर पर पौष्टिक आहार प्रदान करें, क्योंकि आज की बेटी कल की माँ होती है और मजबूत नागरिक बनती है। बहनों, एनीमिया की समस्या दूर होने से शिक्षा, कार्य क्षमता और आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। लगभग 95,000 किशोरियों को इस कार्यक्रम से लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। बहनों, हम महिलाओं को यह प्रयास करना चाहिए कि घर में सभी को अच्छे से अच्छा पौष्टिक आहार प्रदान करें, जिससे किसी भी व्यक्ति को, बच्चा हो, बूढ़ा हो या जवान हो, एनीमिया का शिकार ना हो वो। बहनों, यदि सरकार, समाज और परिवार एक साथ मिलकर इस अभियान को सफल बनाते हैं तो भारत निश्चित रूप से एनीमिया मुक्त और स्वस्थ भारत की दिशा में आगे बढ़ेगा। बहनों, आइए सुन लेते हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में ये गीत।

मैनू कभी कभी तला भुना खाते खाते मन ऊब सा जाता है, लगता है कुछ झटपट बनाकर खाया जाए जो हमारी सेहत के लिए भी लाभकारी है और हमारा पेट भी भर जाए और जो बच्चे बूढ़े जवान सभी को पसंद आए। बहनों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्वादिष्ट दलिये की खिचड़ी। बनाने की विधि इस प्रकार है। हमें चाहिए 1 कप दलिया गेहूं का, 1/2 कप मूंग की दाल, 1 छोटी प्याज बारीक कटी हुई, 1 छोटी गाजर बारीक कटी हुई, 1/4 कप हरे मटर के दाने, 1 छोटा टमाटर बारीक कटा हुआ, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 चम्मच घी, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी, स्वादानुसार नमक, 4 कप पानी। बहनों, दलिया बनाना शुरू करते हैं हम। बहनों, दलिये को कड़ाही में डालकर थोड़ा सा घी डालें और हल्का भूंज लें। फिर मूंग की दाल को अच्छे से धो लें। आप कुकर में घी गर्म करें और जीरा डालें। जीरा चटक जाए तो उसमें प्याज को हल्का ब्राउन होने तक भूंजें, फिर गाजर डालें और टमाटर डालकर 2 से 3 मिनट तक भूनते रहें। अब दलिया और मूंग की दाल डालकर 1 मिनट तक चलाएं। फिर हल्दी, नमक और पानी डाल दें। आप कुकर का ढक्कन बंद करके 3 से 4 सीटी आने तक पकने दें। कुकर के ठंडे होने पर खिचड़ी को अच्छी तरह मिला लें। फिर ऊपर से थोड़ा सा घी डाल दें, बारीक कटी हरा धनिया डाल दें। आप गर्मा गर्म दलिये की खिचड़ी दही या पापड़ हरी चटनी के साथ परोसें। यह स्वादिष्ट होने के साथ साथ शरीर को ऊर्जा देता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और जल्दी से पच जाता है। बहनों, आप लीजिए गर्मा गर्म दलिये का आनंद अपने पूरे परिवार के साथ। साथ ही सुन लीजिए ये प्यारा सा गीत जिसे गाया है किशोर कुमार और आशा भोसले ने।

आकाशवाणी रीवा के योगदान के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला सभा। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला प्रसारण होगा इस छोटे से अंतराल के बाद।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। दोपहर के 1:30 होने को हैं। अब आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत। प्रस्तुति आकाशवाणी रीवा की है। श्रोताओं, लोक संगीत में आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं मुन्नी गंधर्वा का गाया गैलहई गीत।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर के 1:45 हुए हैं। आइए सुनते हैं सुगम संगीत। योगदान आकाशवाणी रीवा का है। श्रोताओं, सुगम संगीत कार्यक्रम में आज आपको सुनवाने जा रहे हैं अखिलेश द्विवेदी द्वारा गाए कुछ गीत और भजन। तो आइए सुनते हैं अखिलेश द्विवेदी द्वारा गाया ये भजन।

अखिलेश द्विवेदी द्वारा गाया ये भजन अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत में। आइए अब आपको सुनवाते हैं अखिलेश द्विवेदी द्वारा गाया ये गीत।

श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत यहीं संपन्न होता है, जिसे आप सुन रहे थे आकाशवाणी रीवा के योगदान से। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

0: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा
1: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
2: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
0: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
1: आकाशवाणी है ना,
3: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
1: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
0: शाम सुहानी हो,
1: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
0: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
1: सफर में
0: आपके साथ
1: आकाशवाणी।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
0: कभी हंसाकर, कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात जन जन की बात। 1936 से आकाशवाणी आप

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। दोपहर के 2 बज रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। श्रोताओं, फिल्म संगीत में आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं फिल्म अपना सपना मनी मनी का ये गीत, मीका सिंह की आवाज़, शब्बीर अहमद के बोल और प्रीतम का संगीत।

आनंद राज आनंद और श्वेता पंडित की आवाज़ों में आइए सुनते हैं फिल्म वेलकम का ये गीत। आनंद राज आनंद के लिखे बोल और संगीत है अनजान सागरी का।

0: श्रोताओं, फिल्म वेलकम के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मिराना शाहिद। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर आज प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राजधानी भोपाल के रविन्द्र भवन में होने वाले मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एमएसएमई इकाइयों को 225 करोड़ 19 लाख और स्टार्टअप को लगभग 39 लाख रुपए की राशि अंतरित करेंगे। समिट में 2000 से अधिक प्रतिभागियों, जिनमें एमएसएमई उद्यमी, स्टार्टअप, वित्तीय संस्थान, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एवं महिला व स्व सहायता समूह शामिल होंगे। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात में गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। शुरुआत में यह सेवा राज्य के 14 प्रमुख शहरों में शुरू की जाएगी। इस दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चालकों को प्लेटफॉर्म शेयर सर्टिफिकेट भी प्रदान किए गए।
1: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो। वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज से 2 दिवसीय दौरे पर बैतूल जिले के हिल स्टेशन कुकरू जाएंगे। मुख्यमंत्री ग्राम पंचायत कुकरू में रात्रि चौपाल में ग्रामीणों से बातचीत करने के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। अगले दिन मुख्यमंत्री स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा संचालित गतिविधियों का

अवलोकन करेंगे। वहीं पौधरोपण कार्यक्रम के बाद कॉफी प्लांटेशन का निरीक्षण भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। संचार और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से गुना जिले के 3 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान वे कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री सिंधिया ने आज सर्किट हाउस में लोगों से भेंट कर उनकी शिकायतें सुनी। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत कंजा गांव में पौधरोपण किया। श्री सिंधिया का रुथियाई क्षेत्र में एक सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 29 जून को नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ करेंगे। इनमें आरोग्य सेतु 2.0, आयुष्मान सारथी चैट बॉट, आयुष्मान ऐप, ई सुश्रुत क्लिनिक, नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज और स्वास्थ्य मानक शामिल हैं। वहीं श्री नड्डा केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। प्रदेश में मानसून की दस्तक के बाद इसकी रफ्तार फिलहाल थम गई है। अगले 2 से 3 दिनों में इसके फिर सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर, शहडोल और सागर संभागों के 43 जिलों में बारिश होने का अनुमान जताया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज उज्जैन में सिंहस्थ 2016 के अनुभव 2028 का संकल्प विषयक कार्यशाला का शुभारंभ किया। कटनी जिले में कल राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का व्यापक आयोजन किया जाएगा। खंडवा जिले में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के प्रति जागरूकता के लिए आज विशाल रैली आयोजित की गई। नरसिंहपुर जिले में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: Midday News.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशल्स पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने सेशल्स को एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भारत के विजन महासागर में प्रमुख भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है। दोनों देशों के साझा मूल्य और हित हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशल्स पहुंचेंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि हैं। प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमनी के साथ

0: द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी बद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सेशल्स में भारत के राजदूत रोहित रथीश ने बताया कि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी।
2: $175 million इकोनॉमिक पैकेज जो प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था, उसको आगे कैसे बढ़ाएं, उसमें काफी सारे प्रोजेक्ट्स तो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, उस पर काम भी शुरू हुआ है और कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे इनके एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है ग्रांट में बनाएंगे अंडर दैट $175 million पैकेज, उसका शायद हम देख पाएंगे कि ये वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग भी होगा इस विजिट में। दूसरा, डिफेंस और सिक्योरिटी सेक्टर में हम आगे बढ़ेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे, हम इनके मैरिटाइम एसेट्स को अपग्रेड कैसे करें, इसके भी बातचीत होगा।
0: इस बीच सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोरे ने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है।
3: प्रधानमंत्री मोदी के कामों की बात करें तो वो एक ऐसे देश का नेतृत्व कर रहे हैं जो आर्थिक रूप से जबरदस्त तरक्की कर रहा है और एक वैश्विक शक्ति के रूप में पहचान बना रहा है, एक ऐसा देश जिसकी वैश्विक स्तर पर फैसलों में अहम भूमिका रहती है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ उनका संवाद उत्साहजनक रहा।
4: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है, ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, ना ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है, इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले दो वर्षों में देश भर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने इस पहल को सहकारी क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
5: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण है। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूं भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: श्री अमित शाह ने डेयरी उत्पादों से संबंधित अमूल सहकारी अभियान की भी सफलता का उल्लेख किया।
5: एक टैक्सी बनाने का विचार आया कोऑपरेटिव बेसिस पर, तो सब लोग परेशान थे कि भाई पैसा कहाँ से लाएंगे। तो मैंने कुछ कोऑपरेटिव संस्थाओं को कहलवाया भी, बुलाया भी। मुझे आनंद है कि एनसीडीसी, इपको, क्रिपको, एनडीडीबी, नाबार्ड, एनसीईएल, अमूल, ये सब ने मिलकर बड़ी से बड़ी कंपनियों से लोहा लेने के लिए ड्राइवरों की, सारथियों की अपनी एक कोऑपरेटिव बनाने का फैसला।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस पर उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि देश के कुल निर्यात में एमएसएमई क्षेत्र का योगदान लगभग 50% है।
6: That is the only way that our MSME can go to the next level. And it is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress.
0: स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सतत विकास लक्ष्य, खाद्य एवं औषधि सुधार तथा संबद्ध स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में सीमा पार से चल रहे अवैध हथियार तस्करी गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। इससे पहले पुलिस ने 7 लोगों से हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला की बड़ी रकम बरामद की थी। पुलिस के अनुसार आरोपी सीमा पार से हथियार मंगाकर अपराधियों तक पहुंचाते थे। मामले की जाँच जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। महाराष्ट्र में कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा TET का प्रश्न पत्र लीक होने के कारण परीक्षा स्थगित कर दी गई है। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने बताया कि ठाणे के भिवंडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास परीक्षा प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी होने की सूचना मिली थी। परिषद ने कहा है कि परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर डाली जाएगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि डिजिटलीकरण प्रक्रिया तय समय सीमा से 3 दिन पहले पूरी हो गई। कोलकाता के तारातला भवन में हुई दुर्घटना में मृतकों की संख्या 17 हो गई है। राहत और बचाव कार्य में सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, रेलवे, नागरिक सुरक्षा, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और अन्य एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के शेष हिस्सों, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आज बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान है। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक के भाग्यराज का आज चेन्नई में 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे तमिल सिनेमा में अपनी प्रभावशाली पटकथाओं और संवाद लेखन के लिए जाने जाते थे। उन्होंने 25 से अधिक फिल्मों का निर्देशन किया और लगभग 75 फिल्मों में अभिनय किया। राज्य सरकार ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय सहित कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया। एक रिपोर्ट।
3: समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर मोहंते ने कहा कि परमाणु ऊर्जा को हाइड्रोजन उत्पादन जैसी उभरती हुई स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों के साथ जोड़ना टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा जिसमें भरोसेमंद और कार्बन मुक्त बिजली देने की खास क्षमता है वह बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन में मदद करने के लिए उपयुक्त है। ये सुविधा एक तकनीक प्रदर्शन इकाई के तौर पर स्थापित की गई है। इसका उद्देश्य भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई द्वारा स्वदेश रूप से विकसित CUCI थर्मोकेमिकल प्रक्रिया का इस्तेमाल करके परमाणु ऊर्जा से हाइड्रोजन उत्पादन को

0: प्रमाणित करना है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध रीवा सुंदरजा आम की पहली व्यावसायिक खेप संयुक्त अरब अमीरात भेजी गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि एक मीट्रिक टन प्रीमियम गुणवत्ता वाले GI टैग प्राप्त आम निर्यात किए गए हैं। इससे रीवा के आम उत्पादकों को लाभ मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के विशिष्ट कृषि उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। नई दिल्ली में आज 3 दिवसीय त्रिपुरा वैश्विक अनानास महोत्सव का उद्घाटन त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महोत्सव से अनानास के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और राज्य की संस्कृति, हस्तशिल्प तथा पर्यटन को भी वैश्विक पहचान मिलेगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ने पहली बार नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। अंतिम लीग मैच में मिस्र ने ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ खेला। राउंड ऑफ 32 में मिस्र का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। हालांकि ईरान भी नॉकआउट चरण में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। एक अन्य मैच में बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 से हरा कर नॉकआउट दौर में जगह बना ली। बैडमिंटन एशिया जूनियर मिक्स टीम चैंपियनशिप में भारत ने कजाकिस्तान को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत ग्रुप सी में चीनी ताइपे, कजाकिस्तान और फिलीपींस के साथ है। भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण पोत INS सुदर्शनी लोकायन 26 अभियान के अंतर्गत अमेरिका के मैरीलैंड राज्य के बाल्टीमोर बंदरगाह पहुंच गया है। यात्रा का उद्देश्य भारत की समृद्ध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना और भारत तथा अमेरिका की नौसेनाओं के बीच सहयोग को मजबूत करना है। पोत अपने प्रवास के दौरान समुद्री सहयोग और सामुदायिक संपर्क कार्यक्रमों में शामिल होगा। इससे पहले INS सुदर्शनी ने वर्जीनिया के नॉर्क फॉक में आयोजित सेल 250 समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशेल्स पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने सेशेल्स को एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भारत के विजन महासागर में प्रमुख भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है। दोनों देशों के साझा मूल्य और हित हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। अब पेश है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। श्रोताओं, कार्यक्रम आपकी फरमाइश लेकर हाजिर हूं मैं फिर एक बार, आपका रेडियो साथी ऋषभ आहूजा। श्रोताओं, आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करें और आपको गीत सुनवाते हैं फिल्म दे दनादन से। सैयद कादरी के लिखे इस गीत को आवाज़ें दी है राहत फतेह अली खान और सुजैन डिमेलो ने। संगीत है प्रीतम का और इस गीत के लिए हमें फरमाइश प्राप्त हुई है घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमंद्र और सन्मति पंचोलिया की। साथ ही हमें अगला खत इसी गीत के लिए मिला है सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी मनन और तानिया का। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश ट्यून किया है आपने और आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश का। कार्यक्रम के अगले गीत के लिए हमें फरमाइश प्राप्त हुई है कंवर कॉलोनी बड़वाह से। प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनूरा श्रीमाली का। साथ ही इसी गीत के लिए अगला खत हमें प्राप्त हुआ है नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन का। तो आइए आपकी फरमाइश पर यह गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म बॉडीगार्ड से। शब्बीर अहमद और नीलेश मिश्रा के लिखे इस गीत को आवाज़ें दी हैं ऐश किंग और क्लिंटन ने। संगीतबद्ध किया है हिमेश रेशमिया ने।

कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से हमें फरमाइश भेजी है अगले गीत के लिए ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय ने। साथ ही दुबेहा नेवदा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय ने। इसी गीत के लिए अगला खत हमें मिला है गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले का। तो आपकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं कुर्बान फिल्म का ये गीत। निरंजन अयंगर ने इस गीत को लिखा है, सलीम सुलेमान का संगीत और आवाज़ें हैं सोनू निगम, श्रेया घोषाल और सलीम मर्चेंट की।

श्रोताओं, कार्यक्रम आपकी फरमाइश का आनंद आप ले रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म सिंघम से। श्रेया घोषाल और अजय की आवाज़ें हैं, स्वानंद किरकिरे के लिखे बोल और अजय अतुल का संगीत। इस गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी है छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और ज्ञानेंद्र कुमार वर्मा ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अगले गीत के लिए हमें फरमाइश प्राप्त हुई है महादेव घाट अमलेश्वर से। डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी, सूरज, ज्योति ठाकुर और बेबी रेयांश ठाकुर की। इसी गीत के लिए हम अगला खत प्राप्त हुआ है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा का। लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी और दतरेंगी से भागवत वर्मा। आइए सुनते हैं ये गीत फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी से। आतिफ असलम और अलीशा चिनॉय की आवाज़ें हैं, आशीष पंडित के लिखे बोल और प्रीतम का संगीत।

सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से अगली फरमाइश हमें प्राप्त हुई है। कमरुल्ला ठेकेदार नसीम बेगम, ऐशा खान, हदिया खान, अस्मा सालिया शोएब खान, पोत्रा मुस्तफ़ा खान, राउफ भाई, शाहिद भाई और गांधीबाग अकोला से, रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर से। इनकी फरमाइश है फिल्म लव आजकल का ये गीत, जिसे गाया है राहत फ़तेह अली खान ने, इरशाद कामिल के लिखे बोल और संगीतबद्ध किया है प्रीतम ने।

0: श्रोताओं, फिल्म लव आजकल के इसी गीत के साथ कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर आज उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर आज प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भोपाल के रविन्द्र भवन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एमएसएमई इकाइयों को 225 करोड़ 19 लाख और स्टार्टअप को लगभग 39 लाख रुपए की राशि अंतरित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात में गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। संचार और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से गुना जिले के 3 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान वे कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज से 2 दिवसीय दौरे पर बैतूल जिले के हिल स्टेशन कुकरू जाएंगे। वह गांव वालों से बातचीत भी करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 29 जून को नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ करेंगे। और मौसम विभाग ने आज भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर, शहडोल और सागर संभागों के 43 जिलों में बारिश होने का अनुमान जताया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। मीडियम वेव डीटीएच न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन और वेव्स ओटीटी ऐप पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। मीडियम वेव पर हमारी इस सभा के समापन से पहले आइए एक नजर डालते हैं सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। श्रोताओं, शाम की सभा के आगाज के साथ सुनिए युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी शाम 5:02 पर। प्रस्तुति आकाशवाणी रीवा की होगी। फिल्म संगीत का आनंद लीजिए शाम 5:33, शाम 6 और रात्रि 8:35 पर। आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति के अंतर्गत ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम ग्राम सभा का प्रसारण शाम 7:21 पर होगा। 7:45 पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान। रात्रि 8 सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में। प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ इस स्टूडियो पॉडकास्ट सीरीज का 7वां अंक आप सुनेंगे रात्रि 8:15 पर। कार्यक्रम विज्ञान भारती का प्रसारण रात्रि 9:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से किया जाएगा। और संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज सुनिए प्रभात मुखोपाध्याय का संतूर वादन रात्रि 10:00। इस कार्यक्रम का प्रसारण भी आकाशवाणी दिल्ली से किया जाएगा। ये थे आज शाम की सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन, साथ ही वेव्स ओटीटी ऐप पर यह आकाशवाणी भोपाल है। दोपहर के 3:02 हुए हैं। मीडियम वेव पर अब हमारी यह सभा यहीं विराम लेती है। शाम की सभा के कार्यक्रमों के साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब तक डीटीएच पर यह प्रसारण जारी रहेगा। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी का भोपाल केंद्र। दोपहर के 3:02 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत।

विद्यार्थी पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत, और अगला गीत कौन सा है उससे पहले बता दें कि किसकी पसंद पर हम सुनवा रहे हैं गीत। पसंद आई है अंबेडकर चौक खुरई से राम सखी परमानंद, सौरभ गौरव, एलपी रोहित, लल्लू राम, पूरन रोहित, छोटू डुंडुन और उनके परिवार की। और आप सभी ने पसंद किया है मुकेश की आवाज में हिमालय की गोद में फिल्म का ये गीत। आनंद बख्शी के बोल हैं, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। तो सुनिए अपनी पसंद पर ये गीत।

0: सा था।
1: मुकेश की आवाज में हिमालय की गोद में फिल्म का ये गीत आपने सुना, आनंद बख्शी के बोल कल्याण जी आनंद जी का संकेत। कार्यक्रम मन चाहे गीत में अगला गीत है कन्यादान फिल्म से। मोहम्मद रफी की आवाज में ही ये गीत है, नीरज के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। इसकी फरमाइश भेजी है छत्तीसगढ़ देवरी भाटा पारा से गन्नूलाल रजक, KRS, अश्विनी कुमार और गणेश राम ने। साथ ही पुणे से पंकज बाड़ूदे, आर्या, प्रियंका, बीटी बाड़ूदे और चंद्र प्रभा बाड़ूदे ने भी कन्यादान के इस गीत को सुनना चाहा है। तो आप सभी की पसंद पर सुनते हैं गीत।

तो कुछ इसी तरह से खत हम तक पहुंच रहे हैं, आप सभी के मनचाहे गीत कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और आपकी फरमाइशें पूरी हो रही हैं आपके नाम के साथ। तो हमारे साथियों ने अलग अलग तो खत भेजे हैं अलग अलग जगहों से। एक ही गीत की जब फरमाइश आती है तो बड़ा ही अच्छा लगता है। हालांकि अगला जो गीत है वो अलग अलग फिल्म के गीत के लिए फरमाइश आई है और ये फरमाइश हमें भेजी है गुलाबरा छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से भाई राजू निखाड़े, अनिता निखाड़े, ऋषभ और सुरेश निखाड़े ने, और साथ ही बड़ा बाजार देवास से जाकिर हुसैन नजमी, तस्लीम नजमी, मुर्तजा नजमी ने भी अलग अलग फिल्म का यही गीत सुनना चाहा है। तो चलिए आप सभी की पसंद पर लता मंगेशकर की आवाज में सुनिए अलग अलग फिल्म से आनंद बख्शी के बोल से सजा ये गीत जिसे राहुल देव बर्मन ने संगीत से सजाया।

लता मंगेशकर की आवाज में अलग अलग फिल्म का ये गीत आपने सुना, राहुल देव बर्मन की तर्ज, आनंद बख्शी के बोल। कार्यक्रम मनचाहे गीत में अगला जो फरमाइशी गीत है वो भाभी फिल्म से है और इस गीत के लिए फरमाइश भेजी है आप सभी ने सांगवड़े कोल्हापुर महाराष्ट्र से जिनराव, पृथ्वीराज ऋतुराज पाटिल, प्राची प्राजक्ता प्रगति पाटिल, आप सभी की फरमाइश पर आपको सुनवा रहे हैं भाभी फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा, चित्रगुप्त का संगीत।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत, और कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम आ चुके हैं। कार्यक्रम का अंतिम गीत किनकी पसंद पर हम सुनवाने वाले हैं, आपको बता दें, ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकी पवार, मोहम्मद हसनैन पवार, बाजार चौक ग्राम दीवाल से शंकरलाल गंगराड़े, वनिता गंगराड़े, छोटू, पूजा, रोशनी, अजय और वामिका गंगराड़े, ग्राम छैगांव देवी जिला खंडवा से अशोक कुमार वाघे, वंदना वाघे, उपेंद्र वाघे, झवर वाघे, तनुश्री आरोही और कान्हा वाघे। आप सभी ने फरमाइश भेजी है वंदना फिल्म के गीत की। आप सभी की फरमाइश पर ये गीत सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज, असद भोपाली के बोल, रवि का संगीत।

वंदना फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में, असद भोपाली के बोल रवि का संगीत। इसके साथ ही आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। इसके साथ अपनी दोस्त नेहा शर्मा को भी दीजिए इजाजत। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। आज के इस कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं कटीला रास्ता, इस नाटक का पहला भाग। ये नित्यामूर्ति के मूल तमिल नाटक शोध नैत पाते का हिंदी रेडियो रूपांतर है। रूपांतर किया है ए शौर्य राजन ने। निर्देशक हैं वीपी दीक्षित बटुक।

0: डॉक्टर रतनगिरी, मेरी ओर से हार्दिक बधाइयां।
1: भारती,
0: अब मैं केवल आपकी भारती नहीं हूँ, समझे? अब मैं हूँ डॉक्टर भारती, MBBS।
1: फिर भी वो
0: जी, मैं आपके गांव की हम पेशा लेडी डॉक्टर हूँ।
1: भारती सुनो तो,
0: अब छिपाओ दोराओ अच्छा नहीं लगता डॉक्टर साहब। आपकी प्रेयसी और भावी पत्नी डॉक्टर उमा देवी मेरी परम प्रिय सखी हैं, कम से कम इस बात को मत भूलिएगा।
1: ओ भारती, कृपा करके मेरी बात तो सुनो।
0: उसकी कोई जरूरत नहीं, सब जानती हूँ। मंगल ललूर गांव के बड़े रईस श्रीमान मरुद नायकम के इकलौते सुपुत्र हैं आप, और मद्रास शहर के बहुत बड़े व्यापारी की इकलौती सुपुत्री है डॉक्टर उमा देवी। दोनों का शुभ।
1: लेकिन भारती, इसमें इसमें तुम्हारी भी गलती है।
0: मेरी गलती? बातें तो बड़ी ऊंची की थी आपने, कहाँ गई वो सब बातें?
1: मैं भूला नहीं हूँ। ये सही है, हमने निश्चय किया था कि हम एक साथ पढ़ाई पूरी कर जीवन साथी बनकर गांव लौट आएंगे और जनता की सेवा करेंगे।
0: लेकिन हमारा वो निश्चय, वो संकल्प अब कोरा सपना हो गया है।
1: कोरा सपना नहीं हो गया भारती, समय तथा युग के अनुसार थोड़ा बदल गया है बस।
0: समय और जमाने के मुताबिक पैंतरे बदलना, रंग बदलना किरकिटों का काम है, पढ़े लिखे उपाधिधारी और विचारवान व्यक्तियों का नहीं है, समझे?
1: इसीलिए तो मैं विदेश जाकर उच्चतम शिक्षा पाने की कोशिश में। अब
0: हाँ हाँ आप उसी कोशिश में हैं, मैं जानती हूँ आपकी कोशिशें। भावी ससुर साहब की सहायता

0: अमेरिका से विदेश जाकर उच्चतम शिक्षा पाने वाले हैं आप, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए।
1: भारती, भारती तुम मुझे अब भी समझने की कोशिश नहीं कर रही हो।
0: खूब समझ गई हूँ आपको डॉक्टर साहब। विदेश जाकर पढ़ना और बहुत बड़े रईस की इकलौती बेटी का चोलेरी डॉक्टर भी है पति बनना, ये दो बड़े लक्ष्य आपकी आंखों पर पट्टी बांध चुके हैं, की हुई प्रतिज्ञाओं को भुलवा चुके हैं।
1: भारती, केवल प्रेम को लेकर जिंदगी नहीं बना करती, जिंदगी बसर करने की बुनियाद है पैसा। प्रेम के साथ पैसा भी हमें चाहिए।
0: वाह, केवल प्रेम को लेकर जिंदगी नहीं बन सकती, खूब कहा आपने। दौलत की बुनियाद पर प्रेम का दुर्ग खड़ा करना चाह रहे हैं आप, कीजिए, शान से कीजिए।
1: भारती देखो, तुम्हारी पीड़ा समझ रहा हूं मैं। हम दोनों की शादी नहीं हो पाएगी इसी बात से तुम बहुत दुखी हो और मुझ पर अपना क्रोध उतार रही हो। देखो भारती, समझदारी इस बात में है कि हम कैसे अपनी जिंदगी बेहतर बना पाते हैं। जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश में रहना और उसी के अनुसार सोचना कोई गलत काम नहीं है। अच्छा तो ये है कि हम बीती बात भूल जाएं, वर्तमान के बारे में सोचें और भविष्य पर दृष्टि रखें।
0: अतीत को भूल जाएं, वर्तमान के बारे में सोचें, ठीक ही है। होशियारी से जिंदगी गुजारने की सोचना तो जरूरी है, क्यों ना सोचा जाए।
1: मुझे खुशी है कि तुम समझने लगी हो अब।
0: जी हाँ, समझने लगी हूँ।
1: रियली?
0: हाँ, जिंदगी चाहे जैसे नहीं गुजारनी है, गुजारनी है अपनी इच्छा और अपने लक्ष्य के अनुसार। जीवन के इस सच्चे सिद्धांत को समझ गई हूँ मैं।
1: भारती,
0: सिर्फ भारती नहीं, आई एम डॉक्टर भारती। डॉक्टर अदनगिरी, आपके शानदार जीवन और उज्जवल भविष्य के लिए मेरी शुभकामनाएं। मुझे आज्ञा दीजिए, बाय बाय।
2: भारती, ये क्या बात है?
0: मेरी शादी में नहीं आ रही हो? तुम्हारा बाहर जाना इतना जरूरी है क्या? अब क्या करूं उमा, मेरी इच्छा तो यही है कि तुम्हारी शादी के मौके पर जरूर रहूं, लेकिन कर्तव्य को भी नहीं डाला जा सकता ना।
3: हाँ हाँ हाँ, बढ़िया ही कर्तव्य निभाने वाली। तुम्हारे गांव में ऐसा क्या कर्तव्य आ पड़ा जिसे निभाना जरूरी हो गया, बताओ तो जरा।
0: भविष्य में वो तुम्हारा भी गांव होगा उमा। ससुराल का गांव पीहर से कम नहीं है, और फिर तुम्हारे पतिदेव तो मेरे गांव के हैं।
3: तो तुम उन्हें जानती हो?
0: क्यों नहीं, भली प्रकार जानती हूँ। मैं उसी गांव की हूँ और मेरे मामा वहां रहते हैं। अच्छा ये बताओ, हनीमून के लिए कहाँ कहाँ जाने का प्रोग्राम बनाया तुमने?
3: अब क्या बताऊँ भारती, पापा ने आगे की पढ़ाई के लिए सारा इंतजाम करा दिया है। उनके व्यापार उद्योग क्षेत्रों के मित्र तो सब जगह फैले हुए हैं ना।
0: तब तो विदेश में आगे की उच्चतम शिक्षा का इंतजाम करा दिया होगा। ठीक है, उसे ही एक तरह से हनीमून समझो।
3: अब शादी में सिर्फ 10 ही दिन तो रह गए हैं, तुम इस बीच बाहर जाने का इरादा छोड़ क्यों नहीं देती?
0: अब मेरी विवशता है उमा, हमारे गांव के डॉक्टर बहुत बूढ़े हो चुके हैं। उनका काम चलाने के लिए एक डॉक्टर की जरूरत है, उनका कार्यभार संभालने के लिए किसी ना किसी को तो जाना ही है। मैं ही वो काम संभालने जा रही हूँ।
3: तुम भी खूब हो भारती, शहर के डॉक्टर गांव में जाने से कतराते हैं, धंधा चले ना चले साइन बोर्ड लगाकर बैठ जाते हैं शहर में, और एक तुम हो गांव जाकर सेवा करने पर तुली हो।
0: इसीलिए तो जा रही हूँ, वरना आप लोग गांव चली जाओ कहकर भगा देंगे तो।
3: लेकिन फिर भी सिर्फ 10 दिनों की ही तो बात है।
0: आई एम सो सॉरी उमा।
3: ओफो भारती, तुम बड़ी हठी हो।
0: कुछ बातों में औरतों का हठीलापन अच्छा ही होता है और जरूरी भी है। अच्छा उमा, तुम्हारे सुखमय दाम्पत्य जीवन के लिए मेरी बहुत बहुत बधाइयाँ।
3: शुक्रिया।
0: मुझे आज्ञा दो।
3: तुम्हारे हट के आगे और चारा ही क्या है भारती।

0: भारती, उस हवाई जहाज को क्यों ताकती रह गई? खोई खोई सी क्यों खड़ी हो? अस्पताल नहीं जाओगी?
1: अभी जाती हूँ मामा, नर्स नागमणी के इंतजार में हूँ।
0: बुरा मत मानना भारती, तुम बड़ी डॉक्टर हो, तुम्हारे इंतजार में लोग रहे ये तो ठीक है, पर किसी और के इंतजार में तुम रहो ये जचता नहीं।

0: ये बात नहीं है मामा जी, मैं अपने काम की जरूरत के लिए इंतजार करती हूँ, किसी व्यक्ति के इंतजार में नहीं हूँ।
1: तुम ठीक अपने पिता की तरह हो, उन्हें राष्ट्र की स्वाधीनता, राष्ट्रीय संग्राम आदि के बारे में जितना लगाव था उतना ही लगाव तुम्हें

0: भक्ति ऐसी चीज नहीं है, वो तो सदा बहते रहने वाली धारा है।
1: मैं क्या जानूं बेटी, मैं ठहरा गंवार, खेत जोतकर रोजी चलाने वाला।
0: ऐसी बात नहीं है मामा जी, आपकी मेहनत और लगन की ही मेहरबानी है कि मुझे अनाथ लड़की को आपने पाल पोस कर बड़ा किया और पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया।
1: वो मेरा वचन पालन था जो मैंने अपनी बहन को दिया था। स्वतंत्रता आंदोलन में कूट पड़ते वक्त तुम्हारे पिता की उम्र 22 साल की थी। शादी के कुछ ही महीनों की बात है।
0: और माता जी?
1: उस समय यानी 30 साल पहले तुम्हारी माँ मेरे साथ रहती थी, तुम्हारे पिताजी जेल में थे।
0: फिर क्या हुआ?
1: देश के स्वतंत्र होने के बाद ही मैं घर में घुसूंगा, तब तक मेरे लिए घर गृहस्थी कुछ नहीं है, यही कहते थे तुम्हारे पिता।
0: और आजादी मिलने के बाद?
1: तुम्हें जन्म देने के बाद तुम्हारी माँ अपनी आजादी की खोज में चल बसी। शायद अधेड़ उम्र में प्रसव होने की वजह से यह हालत हुई होगी।
0: बेचारी दुखियारी माँ।
1: उसी व्यथा में तुम्हारे पिताजी भी खुल खुल कर मर गए। वे तुम्हारी माँ को बहुत प्यार करते थे।
0: स्वतंत्रता सेनानी के सम्मान में जो जमीन उन्हें भेंट की गई थी, उसको लेने से तो पापा जी ने इनकार कर दिया था ना?
1: और क्या, टुकड़ा भर जमीन मिलेगी इस अरमान से थोड़े ही उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी। खैर, उस बात को जाने दो, मैं तो दूसरी ही बात कहने आया था, भूल ही गया।
0: क्या बात है मामा जी?
1: हाँ, याद आ गई। इस बात का ख्याल रखना बेटी, यहाँ के सरपंच मरूद नायकम, बड़े मीरास्तार रईस कुमार सामी जैसे लोगों का मन रखना भी जरूरी है। उनसे झंझट मोल लेना ठीक नहीं होगा। इन लोगों के सहयोग से ही ये आम अस्पताल बना है और इन्हीं के सहारे ये चल रहा है।
0: काफी देर हो गई है, नर्स नागमणि अब तक नहीं आई। मैं चली जाती हूँ मामा जी।
1: ठीक है, मेरी बात याद रखना, तुम आखिर एक लड़की हो, ये मत भूलना।
0: हाँ, आप

0: डॉक्टर साहब, 4 दिनों से बुखार लगातार चल रहा है, बहुत बहुत कमज़ोर हो गया हूँ। ज़रा कह दीजिए बिना पानी मिलाए अच्छी दवा देने।
1: मिक्सचर वाली दवा तो पानी के बिना नहीं बन सकेगी। टिकिया लेंगे आप? ऐसा ही लिख कर दे देती हूँ, दुकान से खरीद लीजिएगा।
0: डॉक्टर जी, पैसा नहीं है डॉक्टर जी।
1: कोई बात नहीं, ये लीजिए पैसे।
2: डॉक्टर साहब, उस आदमी को दवा मत दीजिए, वो हमारे रईस जादे कुमार स्वामी जी के दुश्मन का आदमी है।
1: तुम आ गई नागमणि, इतनी देर कैसे हुई? इस आदमी को दवा देने से रोक क्यों रही हो?
2: एक एक करके पूछी ना।
1: कहो तो।
2: वो अपने पंचायत प्रेसिडेंट हैं, उनके घर जाना पड़ा, उनको बुखार है।
1: ठीक है, फिर
2: आपको तुरंत ले आने को कहा।
1: क्यों, वो यहाँ नहीं आ सकते?
2: इस गांव का यही दस्तूर है, आप नहीं जानती बड़े लोग अस्पताल में कैसे आएंगे।
1: अफसोस, बुखार को इतना ज्ञान तो होना ही चाहिए कि वो बड़े और छोटे लोगों को पहचान सके।
2: आप नई आई हैं, इसीलिए यहाँ के रीति रिवाज नहीं जानती, वरना ऐसा नहीं कहती।
1: मुझे अपने इस अस्पताल से ही मतलब है, मैं और कुछ नहीं जानती और जानना भी नहीं चाहती हूँ।
0: डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मैं चलूं?
1: हाँ, जा सकते हो भाई, पर देखो वो टिकियां जरूर खरीद लेना, रोज सुबह और शाम को खाना भोजन के बाद।
0: आप जुग जुग जिए डॉक्टर साहब, जुग जुग जिए।
2: डॉक्टर साहब, वो आदमी हमारे रईस साहब के दुश्मन का नौकर है, इसीलिए।
1: मरीज का ना कोई दुश्मन होता है ना दोस्त, डॉक्टर के लिए भी यही बात है।
2: ओफो, आप अभी छोटी उम्र की हैं, समझती नहीं हैं। मैं अनुभवी औरत कह रही हूँ, मेरी बात पर ध्यान दीजिए। अब तक कई डॉक्टर आ चुके हैं, जा भी चुके हैं।
1: नागमणि, तुम एक नर्स हो, तुम्हारा काम दूसरों को धमकाना नहीं है, समझ रही हो?
2: लगता है तब तो आप प्रेसिडेंट के घर नहीं जा रही हैं।
1: प्रेसिडेंट हो या उससे भी बढ़ चढ़कर कोई और, अस्पताल उनके यहाँ नहीं जाएगा। अगर वो चाहें तो किसी बड़े डॉक्टर को घर बुला लाएं, ऐसी औकात है उनकी।
2: याद रखिए, ये अस्पताल उन्हीं की मदद से चल रहा है।
1: नागमणि,
2: जाकर यही कह दूं उनसे कि डॉक्टर साहब का कहना है आप किसी

0: बड़े डॉक्टर को बुला लाए, अस्पताल आपके घर नहीं आएगा।
1: वेदाचलम, लगता है भारती को गांव का कायदा समझ में नहीं आया है। नई उमंग है ना। मैंने सुना है नर्स नागमणि को नौकरी से हटाने की बात कर रही है। किस भुलावे में है ये?
2: नायकम जी, मैं समझा देता हूँ उसे, इस बार माफ कर दीजिएगा, आखिर तो आपकी दया माया से बना हुआ अस्पताल है ये।
1: नर्स हो या डॉक्टर, उसे नौकरी में रखना हमारी मर्जी पर है, समझे? नागमणि की कितने ही सालों पुरानी सर्विस है, उसे भारती बर्खास्त कराएगी, ये मजाल है उसकी।
2: नायकम जी, ये अपने बाप पर गई है, उसी की तरह ये भी थोड़ी तेज तबीयत की है।
1: तब इसकी भी उसके ही जैसी हालत होगी। मेरे ही अस्पताल में काम कर रही है और मेरे ही घर आकर इलाज नहीं करेगी। ये सब नहीं चलेगा यहाँ।
3: चिंता ना कीजिए, मैंने अपना इस्तीफा लिखकर दे दिया है।
2: भारती, तुम?
1: अच्छा, तो ये बात है।
2: पर इस्तीफा क्यों दे रही हो बेटी?
3: क्योंकि इसी तरह मैं अपने अंतःकरण के अनुसार काम कर सकती हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ।
2: पर तुम्हें ये भी तो सोचना चाहिए था कि ये गांव के बड़े आदमी हैं।
3: मामा जी, मैं छोटी हूँ ना, बहुत छोटी हूँ, इसीलिए बड़े आदमियों के साथ सुलह कर चलना मुझे नहीं भाता, तभी तो इस्तीफा देकर बाहर आ गई हूँ।
1: सुना आपने?
2: इसके लिए मुझे खेद है साहब, मैं इस लड़की को समझा दूंगा।
1: ठीक है, देख लेंगे इसे भी, इस वक्त तो हम चले जाते हैं।
2: भारती, भारती, तुमने नागमणि के मामले में ज्यादती की है, ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें।
3: चुपचाप अन्याय को देखते रहना मेरे बूते की बात नहीं है मामा जी।
2: बिटिया, मैं बूढ़ा हो चला, मरीज भी हूं, इस दशा में गांव वालों से दुश्मनी मोल लेना ठीक नहीं। ओफ ओह, पता नहीं ये क्या कर बैठे।
3: दुष्टों धूर्तों के पल्ले ना पड़ूं, अपनी रक्षा कर सकूं, इतना होश मुझे है, आप चिंता छोड़िए मामा जी।
2: तुम भी अजीब लड़की हो। ओह, अरे, सीना दर्द कर रहा है।
3: क्या हुआ मामा जी? मामा जी, क्या हुआ? सीने में दर्द? अभी आती हूँ, थोड़ा अपने को संभालिए। अभी आई।
2: पानी, थोड़ा पानी, पानी। पसीना छूट रहा है।
3: ले जाइए, ये लीजिए पानी। दिल के दौरे के कारण इनकी हालत है। मामा जी, एक इंजेक्शन लगा देती हूँ, आप आराम से सो सकेंगे।

0: डॉक्टर भारती।
1: अरे उमा, तुम अचानक यहाँ कैसे टपक पड़ी?
0: देख लो,
1: क्या ससुराल की भूमि के दर्शन करने चली आई हो?
0: अरे भाई, पहले आसमान से नीचे तो उतरो।
1: गाड़ी को तुम आसमान कहती हो? ये लो, उतर आए तुम्हारी धरा पर। अरे ए उमा, ये अट्टहास कैसा? दे भाई, पागलों की तरह हंसी चली जा रही हो, आखिर बात क्या है?
0: तुम्हारा रूप देखकर पागल हुई हूँ। क्या बढ़िया वेश बना रखा है तुमने, एक मामूली वॉयल की साड़ी, हाथ में ये छोटा सा बक्स, सीधा कंघी किया हुआ सिर। वाह, ठेठ देहाती दाई माँ लगती हो।
1: ठीक ही तो है, लेडी डॉक्टर आखिर क्या है, दाई माँ का ही तो दूसरा रूप है।
0: तुम अपनी बात कभी काटने भी देती हो? बात बात पर काटने दौड़ पड़ने की तुम्हारी आदत गई नहीं आखिर?
1: मजाक वजाक छोड़ो उमा। अच्छा पहले ये बताओ, तुम कैसे इधर आई? जानम्मा
2: जी,
1: ऐसा करो, तुम ये बक्स लेकर घर चले जाओ। हाँ, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी।
2: जी बहुत अच्छा।
0: अच्छा पहले ये बताओ कि ये जानम्मा कौन है, तुम्हारी नई नर्स साहिबा?
1: हाँ उमा, मैंने अस्पताल से इस्तीफा देकर अपनी अलग डिस्पेंसरी खोल ली है।
0: वो सब तो मैं पहले ही सुन चुकी हूँ।
1: ये जानम्मा उसी डिस्पेंसरी की नई आया है, और इसी के साथ नया कंपाउंडर भी रखा है, अल्लाह बख्श।
0: अच्छा अच्छा,
1: भाई दोनों ही जान लड़ाकर काम करते हैं। ये नए लोग पुराने लोगों से ज्यादा वफादार हैं। अस्पताल के मरीजों की सारी भीड़ को ये दोनों ही संभालते हैं।
0: तुम्हारे मामा जी का क्या हाल है, तुम्हारी नई डिस्पेंसरी से बड़े खुश होंगे वो?
1: खुश तो हैं उमा, पर बेचारे हृदय रोग से पीड़ित हैं, दिन पर दिन निर्जीव से होते जा रहे हैं, और फिर दूसरे मरीजों के साथ उन्हें भी संभालना होता है, और यहाँ की कमी कमजोरियों को तो तुम जानती हो।
0: भारती, तुम सचमुच बड़ी ग्रेट हो, वरना इस मनहूस देहात में बिना किसी सुविधा सहूलियत के कैसे रह पाती? इतना बड़ा काम संभालना तुम्हारा ही हौसला है।
1: इसे मनहूस देहात मत कहो उमा।
0: तो
1: ये मेरी जन्मभूमि है, मैं इसकी कर्जदार हूँ, इस भूमि की सेवा से मुझे हौसला मिला है।
0: बस तुम जैसे तीन चार पागल जने और मिल जाएं।
1: अच्छा ये सब रहने दो, ये बताओ तुम क्या कर रही हो, तुम्हारे पति महोदय क्या कर रहे हैं?
0: मैं आराम से वक्त काट रही हूँ।
1: हाँ, अरे उमा ये क्या कह रही हो, विदेश जाकर पढ़ाई हो? और
0: मैं कहाँ पढ़ी थी, उन्होंने ही पढ़ा था, प्रशिक्षण पाया था, मैं सिर्फ साथ देने गई थी, डिग्री ले आई बस।
1: डिग्री ले आई हूँ, ऐसी डींग मारने भर से कोई फायदा नहीं है।
0: क्या बताऊं भारती, मेरे ससुराल वालों को भी मेरी पढ़ाई व नौकरी में कोई दिलचस्पी नहीं है।
1: उमा पहले तुम्हारा तो अपना एक इरादा होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए। अगर तुम्हें पैसा कमाने से कोई मतलब नहीं है तो सेवा भाव से ही तुम्हें इसमें लग जाना चाहिए था।
0: लेकिन मेरे पति भी ये चाहते हो तब तो?
1: ये बात है, डॉक्टर रतनगिरी की ये मानसिकता, सचमुच वो बधाई के पात्र हैं। अच्छा खैर छोड़ो इन बातों को, ये बताओ तुम्हारे पतिदेव डॉक्टर रतनगिरी आजकल क्या कर रहे हैं?
0: अरे तुम्हें नहीं मालूम, वो बहुत मशहूर हार्ट स्पेशलिस्ट हो गए हैं, मद्रास में बहुत बड़ा नर्सिंग होम बनवा लिया है, खूब प्रैक्टिस चल रही है।
1: तुम्हारी बात में एक छोटा सा सुधार है।
0: वो क्या?
1: बनवा नहीं लिया है, तुम्हारे पिताजी ने बना कर दिया है।
0: तुम आकर देखोगी तो दंग रह जाओगी, कितनी नई नई मशीनें, औजार, साधन सामग्रियां हैं, इतना सजाया दजाया गया है कि देखकर तबीयत खुश हो जाती है।
1: क्यों ना हो, बहुत बड़े स्पेशलिस्ट है ना,
0: अक्सर विदेश घुमाते हैं, हृदय रोग चिकित्सा संबंधी विश्व विशेषज्ञों की परिषदों, सभाओं व बैठकों में भाषण देने जाते हैं, बड़ा नाम है उनका।
1: हाँ हाँ जाना ही चाहिए, तुम साथ नहीं जाती? अच्छा क्या आजकल भी गए हुए
0: हैं?
1: तुम नहीं गई?
0: मैं जाने की स्थिति में नहीं हूँ।
1: ओह अरे कांग्रेचुलेशंस उमा, मेरी प्यारी उमा माँ बनने वाली है।
0: चुप रहना, कोई सुन लेगा तो मजाक उड़ाएगा, घर में चलो ना, नाश्ता करके जाना।
1: नहीं उमा प्लीज, देखो पहली बात तो यह है कि मैं डिलीवरी केस अटेंड करके आई हूँ, सब लोग छुआछूत मानेंगे, अंदर नहीं आने देंगे, और दूसरी बात तुम्हारे पतिदेव के आने के बाद ही आऊंगी, नव दंपति को एक साथ देखना ही अच्छा है।
0: श्योर, जरूर आना, मेरी शादी में तो बहाना बनाकर चली गई थी।
1: अरे अब क्या बहाना बनाना है, जरूर आऊंगी उमा, जरूर आऊंगी। अच्छा मैं चलती हूँ।
0: ओके बाय बाय।

0: बाप रे बाप, बारिश तेज होती जा रही है। डिस्पेंसरी के बंद होने के बाद इसको भी बंद हो जाना चाहिए।
1: क्यों कंपाउंडर साहब, अब तक घर नहीं गए आप?
0: कैसे जाएं डॉक्टर साहब, आप रोज बरोज रहम धर्म की कमाई ज्यादा हासिल कर लेती हैं, लिहाजा बरसात भी ज्यादा होती है।
1: आप भी खूब है, आपको हर बात में मजाक सोचता है।
2: अरे वो तो कोई लड़की दौड़ी आ रही है।
3: हाँ, अरे लगता है कहीं कुछ गड़बड़ी है।
1: बारिश में भीगती हुई दौड़ी चली आ रही है, कहीं कोई मुसीबत तो नहीं खड़ी हो गई?
3: अरे अरे, ये तो हमारी ग्राम सेविका शकुंतला है।
1: शकुंतला, क्या बात है बताओ।
4: डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब मुझे बचाइए, मेरा जीवन बर्बाद करके।
3: अरे अरे, ये तो बेहोश हो गई। हाय, इसकी तो साड़ी भी फटी हुई है, लगता है किसी ने इसके साथ ज्यादती की है। अब
1: पहले इस लड़की को अस्पताल के भीतर ले चलो, जल्दी करो।
3: चल चल कंपाउंडर,
1: वो बस ले आ जल्दी से।
5: बेटी, इस लड़की को पनाह देने से तुम खामखा झंझट मोल लोगी।
1: मामा जी, मैं इसको सिर्फ पनाह ही नहीं दे रही हूँ, इसे बर्बाद करने वाले को सजा भी दिलाकर छोड़ूंगी।
5: भगवान के लिए चुप रहो,

0: ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं है।
1: मुझे किसी का डर नहीं है।
0: बेटी, कभी कभी सच्चाई को झूठ के सामने चुप हो जाना पड़ता है।
1: ऐसी बात नहीं है मामा जी, सच्चाई की जबान साफ सुथरी और नेक होती है। वह दूसरी है कि वो देर में खुलती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि झूठ के आगे सच्चाई गूंगी हो गई है।
0: लगता है इसके साथ
1: बड़ी भयावह स्थिति हुई है। ये बेचारी पड़ोस के गांव से लौट रही थी, बीच रास्ते में 3-4 गुंडों ने इसे घेर लिया और उठा कर ले गए।
0: आगे मत कहो, प्राणों में एक आग सी लग जाती है, दिल दहल उठता है।
1: मामा जी, आपने दवा खाई थी? कल से आपका दिल दर्द कर रहा था ना, अब कैसे आप?
0: अब ठीक हूँ बेटिया, मैं काफी सावधानी बरतता हूँ।
1: मामा जी, अन्याय को आखिर मात खानी ही पड़ेगी।
0: भारती, तुम लड़की हो फिर अकेली भी हो।
1: मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा साथ देने वाला बड़ा शक्तिशाली है, वो है भगवान, और फिर मेरी चेतना भी मेरे साथ है, आप भी तो हैं। इतना ही नहीं मामा जी, गांव के गरीब लोग भी मेरे साथ हैं।
0: सुनने में तो सब अच्छा है, पर हकीकत यह है कि पूंजी और प्रभाव के धनी लोगों के सामने हम तिनके के बराबर हैं। मैं कहता हूं ये तुम्हारे बस की बात नहीं है।
1: क्यों नहीं है? डॉक्टर की हैसियत से मैं गवाह हूं, मैंने उसका इलाज किया है।
0: ये ना भूलो कि तुम मर्द नहीं हो।
1: काश मैं मर्द होती।
2: डॉक्टर अम्मा!
1: कोई दरवाजा खटखटा रहा है।
2: डॉक्टर अम्मा!
1: देखती हूँ कौन है।
0: रात के 10 बज चुके हैं।
2: डॉक्टर अम्मा!
1: अरे नागमणि, तुम क्या बात है? मुझे इतनी बेचैन क्यों हूँ?
2: मुझे माफ कर दीजिए, अभी मेरे साथ चलिए, मेरी छोटी बहन की जान बचाइए। डॉक्टर अम्मा, आपको बहुत पुण्य होगा, दया कीजिए।
1: तुम्हारी बहन को अचानक क्या हो गया है?
2: आपके बैल पड़ती हूँ, बाहर बैलगाड़ी तैयार खड़ी है, मेरी बहन प्रसव पीड़ा से तड़प रही है। आप चलकर नहीं देखेंगी तो वो बचेगी नहीं, बहुत नाजुक हालत है, जल्दी चलिए माई जी।
1: लगता है बहुत सीरियस केस है। मामा जी, मैं भी आती हूँ, एक सीरियस केस है।
0: जानम्मा, अल्लाह बख्श को भी साथ लेती जाना।
2: उनकी जरूरत नहीं है, मैं खुद नर्स हूँ, मैं संभाल लूंगी। आइए डॉक्टर अम्मा,
1: जल्दी चलो। नागमणि, आइए चलो।

0: नागमणि, ये हम कहाँ जा रहे हैं? तुमने तो कहा था कि घर नजदीकी है।
1: चुप रहो, बकझक करने की कोई जरूरत नहीं है।
0: क्या कहा?
1: मुझे डराती हो?
0: तब तो तुमने झूठ बोलकर मुझे धोखा दिया है। नागमणि, ऐसा क्यों किया तुमने?
1: जल्दी ही सब मालूम हो जाएगा।
0: छी, हंसती है, मक्कार कहीं की। ए, गाड़ी रोको। अरे रोकता है कि नहीं रोकता?
2: ए, नागमणि, धमकाती है, जानती है हम कौन है?
1: बेचारी डर जाएगी। आप इस तरह मत हंसिए, बता दीजिए कौन है।
2: अरे हम हैं, हम इस गांव के बड़े रईस कुमार सानी।
0: अच्छा, वो बहुत बड़े रईस ज़ादे आप ही हैं?
2: क्या कहा?
0: यही कि गांव की बेसहारा लड़कियों को बर्बाद करने वाले सूरमा आप ही हैं। एक को पकड़ने के लिए आपने गुंडों को भेजा, अब मुझे पकड़ने इस औरत जात को भेजा है। शर्म नहीं आई आपको?
2: डॉक्टर ने ज्यादा उछल कूद मत कर, हम गांव के बाहर आ गए हैं। ये देख, सामने नाला बह रहा है।
0: ये धमकी सब किस लिए दे रहे हैं आप?
2: तू पुलिस केस कराने वाली है ना, उससे बाज आ जा बस।
0: शकुंतला पर किए जुल्म की बात कर रहे हैं आप?
2: हाँ वही। और अगर तू बाज नहीं आएगी ना, तो समझ ले उस लड़की जैसी हालत तेरी भी होगी।
0: इससे पहले ही मेरे हाथ करारा जवाब दे देंगे।
2: अरे इस नाले में बहा दी जाएगी।
0: नाले के पास ही अगर मेरे रक्षक छिपे हुए हो तो? अरे कोई है?
3: अरे बचाओ, अरे भागिए भागिए मालिक, ऐसा ना हो कहीं लेने के तेरे।
0: कायर कहेंगे, छूट मूट का शोर मचाते ही भाग गए। अपनी गाड़ी तक ले जाने का होश नहीं रहा।
4: अभी आपने सुना नाटक कंटीला रास्ता का पहला भाग। ये नित्यामूर्ति के मूल तमिल नाटक शोध नैत्य पाते का हिंदी रूपांतर था। रूपांतरकार ए शौर्य राजन और इसके निर्देशक थे वीपी दीक्षित बटुक। यह हमारे केंद्रीय नाट्य एकांश दिल्ली की प्रस्तुति थी। इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग आप सुनेंगे कल इसी कार्यक्रम में दिन में 3:30 बजे।

0: अब नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
4: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
3: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: नमस्कार श्रोताओं, बॉम्बे टॉकीज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सुप्रसिद्ध गीतकार सुधाकर शर्मा से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आइए सुनते हैं इस बातचीत का पहला भाग।
2: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में सभी सुनने वालों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज स्टूडियो में हमारे सामने एक खास मेहमान बैठे हैं, फिल्मी दुनिया के जाने माने गीतकार। जी हाँ, आप हैं सुधाकर शर्मा, और जिन्होंने 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि 5,000 गाने अब तक लिखे हैं, और भी न जाने कितना काम इस फिल्मी दुनिया में उन्होंने किया है। तो आज उन्हीं से जानेंगे उनकी दुनिया का सफर। स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है सुधाकर जी।
3: मंदाकिनी जी नमस्कार। मेरे सभी उन श्रोताओं को जिन्होंने मेरे गानों को सुन सुन के मुझे विविध भारती के स्टूडियो तक पहुंचा।
2: तो सबसे पहले हम तो यही जानना चाहेंगे कि आप कैसे हैं।
3: मंदाकिनी जी, हुआ ये कि हर आदमी अपने बचपन से प्रेरित होता है किसी भी काम के लिए। तो मैं गांव में रहता था, पलवल के पास मेरा गांव है। वहां हमारे एक चाचा थे, वो हमेशा ट्रांजिस्टर बगल में लटका के रहते थे। बिना ट्रांजिस्टर उनको आप देख ही नहीं सकते कभी। तो वहाँ गाने बजते थे, जब आता था अनाउंसमेंट कि आप शंकर जयकिशन का संगीत बद्ध किया हुआ, हसरत जयपुरी का लिखा हुआ ये गीत सुनिए, तो मुझे वो साउंड जो है ना, ऐसा लगता था कि काश मैं भी कुछ ऐसा कर पाऊँ कि मेरा भी ऐसे नाम आए कि अब आप शंकर जयकिशन का संगीत बद्ध किया हुआ, सुधाकर शर्मा का लिखा हुआ गीत सुनिए। तो ये प्रेरणा स्रोत बना मेरा आपका ये माध्यम, और मैं वहाँ से सफर तय करने के मतलब तैयारी में मुंबई तक आया।
2: ये 1973 में, 1973
3: में
2: हरियाणा से मुंबई आ गए।
3: नहीं, मैं हरियाणा से दिल्ली में था।
2: हाँ।
3: दिल्ली से मुंबई आया।
2: अच्छा।
3: मेरे पिताजी दिल्ली में टीचर थे, तो मैं दिल्ली में ही रहता था, और वहाँ से मैं यहाँ आया। और यहाँ आने की भी एक अलग कहानी है। मैं कोई सोच समझ के नहीं आया, मतलब मुझे आना था ऐसा मेरे मन में था, लेकिन कब जाऊंगा और कैसे जाऊंगा इसकी व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि उतने पैसे मेरे पास नहीं थे और आने का कोई सोर्स भी नहीं था। मेरे एक दोस्त हैं विजय त्यागी
2: जी,
3: वो धर्म जी के फैन थे, तो उसने बोला यार मुझे तो धर्मेंद्र बनना है, तो उसने बॉडी वॉडी भी अच्छी बनाई।
2: अच्छा।
3: थी उसका आने का प्रोग्राम बना और मेरे को बोले कि चल तू भी चल, और मैं उनके साथ आ गया और यहाँ बम्बई में बम्बई का होके रह गया। मैं पहली बार जब यहाँ आया देहरादून ट्रेन से उतरा, देहरादून एक्सप्रेस दादर, तो मेरे साथ मतलब पहली घटना ऐसी हुई कि हम तीन थे, एक जो तीसरा था वो हमारा गाइड था।
2: अच्छा, तीन दोस्त आए थे।
3: तीन दोस्त आए थे, मेरे दोस्त का वो दोस्त था।
2: अच्छा।
3: तो उसने बोला कि मैं जहाँ रहता हूँ वो बहुत बड़ी जगह है, और उस जगह पे ये नहीं जा सकता।
2: कौन? आप?
3: सुधाकर।
2: अच्छा।
3: बोला ये तो शक्ल से ही चोर लगता है, तो वहाँ कुछ हो गया तो।
2: अरे।
3: तो मैं दादर स्टेशन प्लेटफार्म पे रात को सोया, ये लोग दोनों चले गए।
2: अच्छा।
3: मैंने कहा भाई आप तो जाइए, फिर मैं रुकता हूँ। तो ये एक कार्यक्रम इस तरीके से बंबई में मेरी पहली रात
2: हुई,
3: ओपनिंग हुई दादर एक नंबर प्लेटफार्म के बेंच पे सोया। कभी कभी उस जगह पे जाके मैं खड़ा होता हूँ अभी।
2: उस पल को महसूस करते हो जब आपको ऐसा किसी ने कहा था?
3: याद आता है वो।
2: जी, तो जब आपने कहा कि आप दिल्ली से यहाँ आए, तो क्या आप मुंबई गीतकार बनने ही आए थे या कुछ और विचार लेकर भी आए?
3: नहीं, मैं सिर्फ गीतकार बनने ही आया था, और मैं उस वक्त जो है ना बहुत बड़ा फैन था शैलेंद्र जी और हसरत जयपुरी साहब का और शंकर जयकिशन का।
2: अच्छा।
3: लेकिन मैं यहाँ जब आया तो मैं इन लोगों से कैसे मिलूं, क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आया। और कुछ दिनों बाद मेरे वो दोनों दोस्त भी चले गए। मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं यहीं कुछ ना कुछ करूंगा। इससे पहले रूटीन ये चल रहा था कि ये लोग घूमते थे, मेरे को ले लेते थे दिन में, और रात को वहाँ खाना खिला के छोड़ देते थे।
2: अच्छा।
3: पूरा खर्चा वही लोग करते थे। लेकिन फिर जब ये जाने लगे तो मैं रुक गया, और मैंने सोचा कि अभी मुझे कुछ करना है। ये 4-5 महीने के बाद मैंने एक जगह नौकरी की ग्रैंड रोड पे, और वहाँ उस नौकरी के मेरा ये था कि कुछ 4-5 बाल्टी पानी नीचे से सेकंड फ्लोर पे उनको पहुँचानी होती थी भर के, और उसके बदले में वो टेरिस पे मुझे सोने की जगह देते थे।
2: कोई पैसा नहीं देते
3: नहीं,
2: थे।
3: पैसा नहीं देते थे। फिर कुछ दिनों बाद वो कुछ और, भाई ये चाय ले आओ, फलाना डालो, ये लेटर डालो, और कुछ पैसे भी देने लगे। तो वहाँ काफ़ी मेरा कुछ 1-1.5 साल लगा इस तरह से, मुझे फिल्म लाइन का कोई रास्ता ही नहीं मिला।
2: अच्छा, मतलब 1 से 1.5 साल लगभग आप यही काम करते
3: यही
2: रहे,
3: काम
2: ये
3: करता रहा।
2: संघर्ष जो
3: अब इसको
2: था।
3: आप संघर्ष कहें या कुछ भी कहें, उस मंजिल तक ही नहीं मैं मुड़ा जहाँ के लिए आया था। अब वो ही रोज उसमें चलता रहा। तो वहाँ पे मुझे 2-2.5 रुपये रोज के मिलते थे। तो वहाँ पे एक मुस्लिम होटल था जहाँ बड़ी रोटी मिलती थी, दाल फ्री होती थी, तो
2: अच्छा,
3: एक टाइम हम आराम से खा लेते थे, कोई टेंशन
2: इतना
3: नहीं था,
2: पैसा मिल जाता था
3: इतना
2: आपको।
3: पैसा मिल जाता था। तो वहाँ उस कंपनी में एक अकाउंटेंट थे, उन्होंने एक दिन कहा कि यार तुम क्या बनने आए हो। मैंने कहा यार बनने तो बहुत कुछ आया, लेकिन कुछ होगा ही नहीं यहाँ पर, तो यहाँ तो काम ही कुछ और है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको एक जगह ले जाता हूँ, आप मेरे साथ चलिए। और मैं उनके साथ गया, और वो मुझे शंकर जी के म्यूज़िक रूम में लेके गए।
2: अच्छा।
3: और तब तक जय भाई तो नहीं रहे थे, शंकर जी थे। और वहाँ जब मेरा उनसे परिचय हुआ, मैं बता नहीं सकता उस पल की खुशी कि शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया हुआ, वही शंकर जयकिशन का रूम, वही शंकर जी, वही उनके स्टूडियो। तो मेरे लिए तो ऐसा था, मैं जन्नत में आ गया,
2: जी, सपने देखने जैसा।
3: सपने देखने जैसा। और यहाँ से इस पल से मेरे सपने साकार होने शुरू हुए फिल्म लाइन के।
2: तो आगे हम आपसे बात करेंगे, एक
3: जी,
2: गीत सुन लेते हैं पहले।
3: मैं मेरे उस्ताद जी का एक गाना सुनना चाहता
2: जी
3: हूँ,
2: बताइए।
3: और वो गाना है बहारो फूल बरसाओ मेरा
2: मेरा
3: महबूब
2: महबूब
3: आया
2: आया।
3: है।

0: माता पिता से बात होती रही क्या? उन्होंने पूछा? और वो जो दोस्त आपको छोड़कर फिर चले गए, आप कह रहे हैं मुंबई,
1: जी
0: क्या
1: जी
0: उनसे भी कभी सामना हुआ?
1: हाँ, वो हुआ, सब कुछ हुआ। वो भी मेरी खैर खबर लेते रहते थे,
0: हाँ
1: और माता पिता तो लेंगे ही लेंगे। तो मैंने उनको एक, अपने माता पिता को एक थोड़ा सा झूठ बोला था कि मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छे पैसे मिल रहे हैं, नौकरी मिल गई है, मैं यहीं रहूँगा और मुझे यहीं कुछ करना है। और उनको ये अंदेशा तो था कि फिल्म लाइन में कुछ करेगा। मेरे पिताजी ने एक ही बात करी कि भाई, अगर तुम कुछ ऐसा करना चाहते हो कि जो बम्बई में ही हो सकता है, तो ठीक है, आप करो, और जो भी आप कमा रहे हो मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप परेशान मत होना। जबकि कमाई वमाई कुछ थी नहीं, लेकिन एक एड्रेस था मेरे पास कि वहाँ से हम लोग बात कर सकते थे।
0: कुछ आपको उम्मीद भी बंधी कि मैं, मुझे कुछ करना है तो करना ही है।
1: जी जी जी
0: तो जैसा कि आपने कहा कि वो आपको शंकर जयकिशन के स्टूडियो में ले गए, जहां शंकर जी मिले, उसके बाद फिर क्या आपको पहला गीत मिल गया या
1: नहीं
0: आप
1: नहीं
0: शंकर
1: नहीं
0: जी के सानिध्य में रहे, कैसे
1: बस
0: क्या?
1: उनके सानिध्य में मैं उनके रूम में काम करता रहा। झाड़ू, कटका, पोछा, जो भी मेरे को मिला मैं काम करता रहा।
0: अच्छा।
1: तो मुझे काम तो नहीं मिला, लेकिन क्या है कि वो शंकर जी के यहाँ एक बड़ा अच्छा सिस्टम था कि वहाँ पे सब खाने पीने की बड़ी मौज थी। आपको जो खाना है कैंटीन में खाओ, खाली सिग्नेचर कर दो, तो कोई परेशानी नहीं थी, और सोने की कोई
0: दिक्कत
1: परेशानी
0: नहीं
1: नहीं
0: थी।
1: थी। तो मैं जो है वहाँ पे काफ़ी समय तक रहा, और एक दिन शंकर जी ने मुझसे पूछा कि भाई, यहाँ हर आदमी एक सपना लेके आता है, तो तेरा क्या सपना है? तो मैंने कहा मैं गीतकार बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, सुनाओ कुछ। अब वो इतनी बड़ी शख्सियत, उनके सामने मेरे से कुछ सुनाया ना गया। मैं बोला क्या सुनाऊँ, एक होता है ना, अभी अचानक उन्होंने बोल दिया।
0: तो क्या तब तक आपने कुछ गीत लिख लिए थे, कुछ कविताएं
1: लगभग
0: रच
1: दो
0: ली
1: ढाई
0: थी?
1: सौ गीत मैंने लिखे थे,
0: अच्छा।
1: गीत तो रोज लिखता था। लेकिन अब शंकर जी जैसी पर्सनैलिटी सामने हो तो सिट्टी भिट्टी गुम सुनाए
0: गुम,
1: क्या?
0: बिल्कुल।
1: वो भी समझ गए, और उन्होंने हसरत जयपुरी साहब से मुझे पहली बार मिलाया
0: अच्छा।
1: और कहा कि हसरत मियाँ, ये लड़का सोचता बहुत अच्छा है, इसको लिखना सिखाओ। ये उनके वर्ड थे।
0: तो ये किस वर्ष की बात होगी लगभग?
1: ये तो मतलब मेरा होते होते लगभग 78 की बात है, मतलब काफ़ी समय हो गया। इन बिटवीन मैं यहाँ आता था बम्बई, सबके घर देखता था, सब चारों तरफ ये बंगला दिलीप कुमार का है, ये फल

0: लाने का, ये सब देखते थे। उन बंगलों को देख देख के ही खुशी होती थी, उनसे मिल तो नहीं पाते थे लेकिन बस घर देख लेते थे तो उसमें
1: उसमें
0: खुश हो
1: भी
0: जाए।
1: ऊर्जा आ जाती थी, एक
0: हाँ लगता
1: मोटिवेशन
0: था,
1: मिलता था
0: मोटिवेशन
1: कि
0: होता
1: कभी
0: था
1: हमारा भी ऐसा
0: कि
1: घर
0: कभी हमारा भी होगा।
1: होगा।
0: दिलीप साहब के घर के सामने ना, जैसे आज अमित जी के घर के सामने भीड़ लगती है, उन दिनों दिलीप साहब के घर के सामने भीड़ लगती थी, कुछ लोग आते थे हमेशा। वहाँ का एक अलग ही चलन था। वहाँ एक चाय वाला आता था, सबको चाय पिला के चला जाता था और पैसे नहीं लेता था।
1: अच्छा,
0: अब वो पैसे क्यों
1: कौन
0: नहीं,
1: देता
0: कौन
1: था?
0: देता था वो, या वो क्यों नहीं लेता था, ये मुझे नहीं पता।
1: मतलब दीवानगी होगी दिलीप कुमार
0: हो
1: साहब के
0: सकता
1: प्रति,
0: है,
1: ना इस
0: हो सकता
1: दीवानगी
0: है,
1: में भी लोग कितना काम कर जाते
0: करते हैं।
1: हैं।
0: तो दिलीप साहब आते थे बालकोनी में, हाथ हिलाते थे, बस इतना ही था। लेकिन मैं अक्सर जो है ना, हम लोग वो चाय पीने के लालच में ज़्यादा जाते थे, क्योंकि
1: जी
0: भूख प्यास भी होती है ना आदमी
1: जी
0: को।
1: जी जी
0: तो वो दौर पाली हिल का मुझे याद है अभी तक, कैसे वहाँ पे जाते थे।
1: जी
0: जब हसरत साहब ने मुझे कहा कि मैं कैलाश बिल्डिंग में रहता हूँ खार, आप वहाँ आइए, तो मैंने वहाँ उनके पास जाना शुरू किया। और पहले पहले तो क्या ऐसी बातें होती रहीं उनसे, बातचीत में वो मुझसे बात करते रहे, पूछते रहे सब कुछ। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हजरत साहब एक फरिश्ता बन के मेरी ज़िंदगी में आए।
1: जी
0: उन्होंने वाकई में मुझे लिखना सिखाया। मुझे मुझे लगा कि जो मैंने लिखा वो सब बकवास है, और अभी भी मैं उतना अच्छा नहीं लिख पाता हूँ जितना अच्छा हजरत साहब लिखते थे।
1: जी खैर, ये तो
0: कहीं ना
1: आप
0: कहीं मुझे एक रहता है, और शायद यही मलाल मुझे जिंदा रखे हुए है, शायद कभी कुछ ऐसा लिख पाऊं
1: जो हसरत साहब जैसा होगा।
0: उनके जैसा, हो सकता है
1: जी
0: लेकिन उनसे बढ़िया नहीं हो सकता।
1: ये एक बहुत अच्छी ख्वाहिश होती है किसी
0: जी
1: कलाकार की कि मैं उन जैसा बन जाऊं, क्योंकि
0: जी
1: आपने उनको अपना उस्ताद माना हजरत
0: जी जी
1: साहब
0: जी,
1: को।
0: जी बिल्कुल
1: बहुत अच्छा लग रहा है आपकी कड़वी सच्चाइयों को सुनकर,
0: जी
1: है ना
0: जी
1: सुधाकर जी। तो आगे हम आपसे बात करेंगे, एक
0: जी
1: गीत सुन लेते हैं पहले।
0: जी एक गीत मैं आपको ऐसा सुनाना चाहता हूँ कि जिस गीत की बहुत अहमियत है मेरी ज़िंदगी में, और वो गीत है परदेसी बाबू का,
1: जी
0: क्या है प्यार बताओ ना।

0: सुधाकर जी, बहुत ही सुंदर गीत हमने सुना। आप ही का लिखा वही गीत था?
1: जी, मेरा ही लिखा हुआ।
0: अब अभी मैं ये आपसे तो नहीं पूछना चाह रही हूँ कि ये गीत आपने कैसे लिखा, लेकिन
1: नहीं नहीं आप जरूर पूछिए। हाँ। मैं ये बताना चाहता हूँ ये गीत मुझे मिला कैसे।
0: अच्छा, ये बताना चाहते हैं?
1: जी जी
0: बताइए।
1: क्योंकि ये मेरे कैरियर का मैं समझता हूँ सबसे बड़ा गीत था। इससे पहले लगभग मेरे 240-245 गाने रिकॉर्ड हुए जो बड़े बड़े सिंगरों ने गाए और बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टरों के साथ किए, लेकिन कोई गाना मेरा बाहर नहीं आया।
0: अरे, इतने सारे गाने करने के बाद भी?
1: हाँ, और नहीं आया तो मुझे ये मिला ऐसे कि मुझे आनंद राज आनंद जी मेरे मित्र थे और उनके साथ मेरा काफ़ी आना जाना था, तो मैं हमेशा उनको बोलता था यार मेरे से भी कुछ लिखवा लो। ये गीत मिलने से पहले मैं स्टैब्लिश डायरेक्टर हो चुका था
0: फिल्मों की,
1: लेकिन वो चली नहीं, मैं भी चला नहीं। तो लेकिन ये गीत जब उन्होंने मुझे बुलाया तो मेरे पास उस वक्त 2-व्हीलर था और बारिश हो रही थी, और उस बारिश में ये था कि 50 रुपये मैंने अपनी मिसेज को कहा कि पड़ोस से कहीं से लाओ, वो लेके आई, पेट्रोल डाला और मैं सहारा स्टूडियो आया। और सहारा स्टूडियो में आया तो वहाँ पे मुझे ये गीत लिखने के लिए मिला। उनके डायरेक्टर, उन्होंने मुझे सिचुएशन बताई और मैंने ये गीत लिखा, और ये गीत लिखा और ये गीत मुझे लगा कि जैसे और गीत नहीं आए ये भी नहीं आएगा, क्योंकि मेरे को कुछ वो नहीं था। तो मुझे बहुत अच्छे पैसे मिले इस गीत के, पहली बार इतने पैसे मिले मुझे।
0: तो हम ये माने कि जो पहला गीत सामने आया दुनिया के वो ये था?
1: नहीं,
0: वो कोई और था। जी, बड़ा उलझा हुआ मामला है।
1: जी,
0: तो बात चल रही थी कि आप हसरत साहब से मिले, आप शैलेंद्र जी से भी मिले, शंकर जयकिशन से मिले, तो हमारे मन में ये बात आ रही कि उनके साथ, क्योंकि आप 1973 में आ गए थे और आपने कहा कि लगभग 1978 के आसपास ये सब मुलाकातें शुरू हो गई थी, तो ये सफर कैसा रहा? किस तरह से आपने फिर गीत लिखना शुरू किया, या इन लोगों के साथ आपने वक्त को कैसे बिताया? इतना आसान तो नहीं होता इतने बड़े लोगों के साथ।
1: बहुत मुश्किल होता है। इस सफर में मेरा अफसोस सिर्फ इतना ही रहा कि मैं शैलेंद्र जी से मिल नहीं पाया, वो उससे पहले उन डेथ हो गई थी।
0: अच्छा।
1: लेकिन मैं चूंकि उनका फैन था, हसरत साहब में ही मुझे शैलेंद्र जी भी मिल गए और हसरत जयपुरी भी मिल गए। वो मुझे मिल गए और उन्हीं दौरान मेरी जो मुलाकात हुई वो पंडित नरेंद्र शर्मा जी से हुई।
0: अच्छा।
1: और पंडित नरेंद्र शर्मा जी और शैलेंद्र जी एक ही गली के राइटर थे।
0: अच्छा।
1: वो मतलब उनकी थॉट, उनका सोचना, तो उनसे मेरी काफ़ी मतलब मुलाकातें रहीं। और हसरत साहब के यहाँ जब मैं जाता था तो हम गीतों को जो डिस्कस करते थे, उनके सिखाने का सबसे अच्छा तरीका ये था कि वो कभी भी मेरे लिखे हुए गीत को रिजेक्ट नहीं करते थे।
0: अच्छा।
1: वो कहते थे ये लाइन तुमने लिखी है ना, इसमें तुम क्या कहना चाहते हो? तो मैं बोलता था मैं ये कहना, तो उसको ऐसे लिखो, इसको ऐसे कर लो, इस लाइन को यहाँ से निकाल दो, इसकी जगह ये ले आओ। मतलब मेरे ही गीत को वो सुधारते थे। वो कभी उन्होंने ऐसे नहीं कहा कि ये क्या लिखा है, तो ऐसा मतलब उन्होंने कभी नहीं किया। वो हमेशा मुझे सिखाते थे, मैं करता था। और ये सफ़र एक ऐसा था कि मुझे एक दिन, मैं रात को पाली हिल पे घूम रहा था और हसरत साहब के यहाँ आने के बाद जो है ना, मेरे को ये था कि सोने का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी जब आना जाना मेरा लगा हुआ था, लेकिन ये मैंने एक झोंपड़ा ले लिया था खेरवाड़ी में, और मेरी तब तक शादी भी हो गई थी, तो हम लोग मियाँ बीबी रहते ही थे वहाँ पे। तो वहाँ मेरी मुलाकात बहुत ही मशहूर कॉमेडियन मारुति साहब से हुई।
0: अच्छा।
1: तो

0: मारुति साहब जो ना वो रात का समय था और अपने बरांडे में टहल रहे थे, तो मैंने उनको पहली बार टहलते हुए देखा तो उन्होंने मुझे बुला लिया और मैंने उनसे बातचीत की और उन्होंने भी वही क्वेश्चन पूछा, क्या करते हो, क्या करना चाहते हो, ये सब। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम कोई गीत सुनाओ, तो मैंने उनको सुना दिया, तो बोले कि तुम कल आओ। तो मैं नेक्स्ट डे पहुंचा, तो उन्होंने कहा बेटा ये गीत वीत तो ठीक है, तुम टेक्निकल कुछ काम करो। मैंने कहा जी वो क्या होता है? बोले कल आओ, हम तुमको बताएंगे। और वो मतलब मेरे को अपने साथ उन्होंने रखना शुरू कर दिया। और उनके साथ रहने से क्या है, मेरे को थोड़ा सा इंडस्ट्री का देखने को मौका मिला और उनके ही द्वारा मुझे किशोर कुमार साहब मिले।
1: अरे वाह।
0: मारुति साहब मुझे वहाँ लेके गए और वहाँ उन्होंने मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर बनाया
1: अच्छा।
0: जी, और मैं किशोर दा के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर लग गया।
1: क्या बात है। तब तो किशोरदा तो गाने गा ही रहे थे, बहुत
0: वो
1: शानदार
0: तो
1: और लेजेंड से थे
0: उनका
1: वो
0: तो
1: तो।
0: क्या कहना है
1: बहुत सुंदर। आगे हम आपसे बात करेंगे, एक
0: जी।
1: गीत सुन लेते हैं पहले।
0: तो मंदाग्नि जी, एक गाना जोड़ी नंबर 1 का टाइटल ट्रैक मुझे सुनाइए
1: चलिए सुनते हैं आपकी
0: जी।
1: पसंद का ये गीत।

0: जोड़ी है नंबर वन।
1: तो मतलब इतना संघर्ष हुआ और संघर्ष के बाद कुछ राहत की सांस आपको तब मिली जब आप किशोरदा से जुड़े।
2: किशोरदा के जुड़ने के बाद मुझे लगा कि अब तो मेरा कुछ ना कुछ हो ही जाएगा।
1: हाँ, क्योंकि एक लंबा जुड़ाव रहा था किशोर कुमार के साथ आपका।
2: जी जी जी।
1: तो उनके साथ काम करने का अनुभव क्या रहा और किस तरह से फिर आपको सफलता मिलनी क्या शुरू हुई इस दौरान?
2: जी जी, मैं किशोरदा

0: के साथ काम करने का मतलब ये हुआ कि मैं उस काम को काम नहीं कहता, एक ऐसी यूनिवर्सिटी में प्रवेश मिला मुझे जहाँ सीखना ही सीखना था। वो आपके ऊपर है कि आप क्या सीखना चाहते हो, क्योंकि वो हर विधा में पारंगत थे। लिखना उन्होंने भी सिखाया, उन्होंने डायरेक्शन सिखाई, एडिटिंग सिखाई, उन्होंने कैसे किस सिचुएशन में कैसे हैंडल करना
1: करते
0: चाहिए
1: थे
0: वो सब मैंने
1: वो तो
0: वहीं से
1: खरपन
0: सीखा
1: वाला थे
0: बहुत बहुत।
1: किशोर
0: और मैं उनको हमेशा साहब बोलता था, आज भी
1: कुमार।
0: बोलता हूँ। उस घर के बहुत बड़े एहसान है मेरे ऊपर। वहाँ जाने के बाद ही मुझे लगा कि अब मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा, और उसी घर से मुझे पहली डायरेक्शन की पिक्चर भी मिली। वो भी शायद इसी कारण मिली कि मैं उनका असिस्टेंट था, तो प्रोड्यूसर ने फेथ किया कि मैं कुछ कर सकता हूँ, और पहली फिल्म की डायरेक्शन मुझे वहीं से मिली।
1: जी, तो वो कौन सी फिल्म थी?
0: वो फिल्म थी गोरी,
1: गोरी।
0: और मेरे ये उसी दोस्त ने बनाई थी जो मुझे बंबई लेके आया था, विजय विजय
1: अच्छा,
0: त्यागी।
1: विजय त्यागी।
0: उन्होंने बहुत पैसे कमा लिए थे, तो एक दिन बोले चल यार कोई और नहीं तो मैं फिल्म बनाता हूँ, और मुझे उन्होंने डायरेक्टर लिया। और इसमें किशोर दा ने भी गाना गाया, और इस पिक्चर को करने के लिए मैं शंकर जी के पास गया, और मैंने उनसे कहा कि शंकर जी मैं एक फिल्म डायरेक्ट कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप उसमें म्यूजिक दें। तो उन्होंने कुछ इतना पहचाना नहीं, क्योंकि फासला काफ़ी हो चुका था, तो
1: हाँ
0: मैंने उनको याद दिलाया कि मैं कौन हूँ। तो बोले अच्छा, जो कल तक हमारे यहाँ नौकरी करता था आज हमको नौकरी पे रखने आया है।
1: अरे
0: मैंने कहा जी नहीं, मैं कल भी नौकर था आज भी नौकर हूँ, मैं कल भी आपको मालिक समझता था आज भी हैं, बस ये फिल्म आप करेंगे तो मेरा थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि कितने पैसे लाए हो? अभी हमारी हिम्मत नहीं हुई कि उनसे ये पूछें कि लोगे कितना, कैसे करोगे, ये सब बातें तो हुई नहीं। उन्होंने पूछ लिया कितने लाए हो, तो हमने उनको कहा कि 21,000 हैं शगुन के, कहीं उनको ऐसा ना लगे कि टोटल इतने ही हैं। तो हम डरे हुए बहुत थे, तो उन्होंने कहा 1 रुपया और रखो इस पे। तो 1 रुपया रखा, उन दिनों कागज़ का चलता था, उन्होंने 21 छोड़ के 1 रुपया उठा के हमारी पिक्चर का, इसी में पूरी पिक्चर करूंगा,
1: अरे क्या बात है
0: और उसी में उन्होंने की।
1: ये होते हैं महान
0: जी जी
1: संगीतकार, और उन्होंने समझा आपकी परिस्थिति को,
0: जी
1: और बहुत बड़ी बात। तो उसके बाद उस फिल्म में भी आपको कोई गाना था या केवल डायरेक्शन ही
0: नहीं,
1: था?
0: मेरे गाने थे उसमें, मेरा पहला गाना उस फिल्म में मन्ना डे ने गाया था।
1: अच्छा।
0: हाँ, मन्ना डे साहब ने वो गाना गाया था, और गाना था दुल्हन सेज है फूलों की, दहेज गमों के खार, दूल्हे का दहेज है जीवन में दुल्हन का सच्चा प्यार।
1: क्या बात है। यहाँ जब बात चल रही है गीत की, तो कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आप?
0: देखिए आप मेरा एक गीत सुना दीजिए, फिर उस गीत की कहानी मैं आपको बताऊंगा।
1: अच्छा, कौन सा गीत?
0: मेरा वो गीत जिसने मुझे सुधाकर शर्मा बनाया, और पहला गाना जो रिलीज हुआ वो था ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम
1: क्या बात है
0: का।
1: ये गीत तो हर एक के दिलो
0: जी जी
1: दिमाग में है,
0: जी
1: और
0: जी
1: अगर कहीं शादी ब्याह के या किसी फंक्शन में हम जाते हैं तो इस गीत पर तो बहुत सारे डांस क्रिएट किए
0: इस
1: जाते
0: गीत
1: हैं।
0: ने मेरी जिंदगी बना दी। मतलब
1: अच्छा।
0: ये गीत पहला गीत था जो मेरा रिलीज हुआ,
1: हाँ।
0: और उसके बाद जो है ना लोगों ने मुझे पहचानना शुरू किया। एक्चुअल में हुआ ये कि हिमेश रेशमिया साहब जो आज के टॉप म्यूजिक डायरेक्टर हैं, इनके पिताजी मेरे दोस्त थे विपिन भाई रेशमिया,
1: अच्छा।
0: और एक फिल्म में वो मेरे म्यूजिक डायरेक्टर भी थे, मैं डायरेक्टर था। तो उन्होंने मेरे को कहा कि यार अभी हिमेश जी सीरियल बना रहे हैं तो आप इनके साथ लग जाइए। मेरे पास उन दिनों कुछ काम वाम था नहीं, क्योंकि उससे पहले मैं डायरेक्टर ये वो सब बन के सब फ्लॉप हो चुका था, एकदम बेकार। मतलब उस लायक था कि अब मैं काम मांगने भी कहाँ जाऊँ, क्योंकि लोग, मैं डायरेक्टर बन गया, 2-3 पिक्चरें मैंने कर ली, लेकिन चला नहीं। तो अब शर्मिंदगी भी थी कि मैं काम कहाँ जाऊँ। तो मैं हिमेश जी के साथ जो ना उनके जितने सीरियल थे उनके सबके टाइटल मैंने ही लिखे।
1: अच्छा।
0: हाँ, ओके, लगभग उन्होंने 40-45 कुछ ऐसे सीरियल उनके थे, लेकिन सबके मैं गाने मैंने लिखे, और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे ढंग से अपने साथ ज्वाइंट किया। हमारा उम्र में बहुत फ़र्क था,
1: जी
0: तो एक दिन हिमेश जी बोले कि सर वो क्या है? मैंने कहा भाई तुम मुझे सर बोलो, मैं तुमको सर बोलूँ, बस इसी में कहानी ख़त्म हो जाएगी। तो ये सलमान भाई ने ये गाना हिमेश जी को दिया लिखने के लिए, प्यार किया तो डरना क्या
1: डरना
0: का
1: क्या।
0: टाइटल सॉन्ग था,
1: जी जी
0: और हिमेश जी ने ये गाना मुझे
1: आपको
0: दिया,
1: दिया? हाँ
0: और उन्होंने कहा कि सर ये पिक्चर अगर हमको मिली मिली है, अगर ये

0: गाना आप लिखोगे तो गाना सुपर डुपर हिट होगा और ऐसा होगा वैसा होगा।
1: तो
0: अब
1: हिमेश जी की ये पहली फिल्म थी?
0: पहली फिल्म थी उनकी, ये पहली फिल्म थी, तो मैंने कहा भाई लिख देंगे। लेकिन एक सवाल है हिमेश इसमें कि प्यार किया तो डरना क्या, कि सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि जितनी उन्होंने अच्छी लिखी होंगी वो तो सब आ गई, तो हम लोग फंस जाएंगे यार। बोले नहीं नहीं सर, लेकिन वो तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि टाइटल ही वो है। तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। तो उस गाने को हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली
1: ठीक है।
0: और कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, सेकंड लाइन आप लिखो ही मत, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। तो फिर मैंने लिखा तेरे प्यार में डूब गए हम खुद को ही, वो जैसा वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम
1: तेरे
0: की,
1: नाम की।
0: और वो ऐसे नाम की चुनरिया ओढ़ी के उसके बाद फिर ये गाना गुलशन जी ने सुना तो उन्होंने कहा कि एक गाना इस टीम का और ले लो। फिर हमको वो एक गाना मिला और वो गाना था तुम पे हमें अटके आ रहा दिल भी मारे झटके
1: क्योंकि तुम वो हटके।
0: हटके। तो ये दो गाने मेरे पहले रिलीज हुए और बहुत मज़ा आया। मैं और हिमेश बहुत नर्वस थे कि पता नहीं गानों का क्या होगा। तो लिबर्टी में हम लोग पिक्चर देखने गए थे, तो हम लोग पिक्चर में इतना इंटरेस्ट नहीं था, हमको इंटरेस्ट था कि अपना गाना कब शुरू होता है और जैसे ही अपना गाना शुरू हुआ और लोगों ने, मैंने पैसे बरसते हुए पहली बार देखे
1: अच्छा,
0: अपने गाने पे,
1: क्या बात है।
0: दोनों बहुत खुश हुए और हमें लगा कि अब हमारी लाइफ बन गई, और वाकई में उस गाने ने हमारी लाइफ बनाई।
1: बन गई।

0: मैं देखो क्या होगा,
1: पर
0: लेकिन
1: ये
0: मैं
1: गाना तो मतलब आज भी सबकी जुबान पर है और सुनते ही एक अलग किस्म की थ्रिलिंग हो जाती है। इतना खूबसूरत तरीके से आपने लिखा है और हिमेश जी ने उसको संगीत में
0: बहुत
1: ढाला है
0: सुंदर
1: और
0: इसमें,
1: पिक्चराइजेशन भी बहुत सुंदर है इस फिल्म
0: सबसे
1: का।
0: बड़ा क्रेडिट इसमें मैं हिमेश जी को ही दूंगा,
1: जी
0: क्योंकि उन्होंने वो जो प्यार किया तो डरना क्या की ट्यून बना के जो मुझे बचाया सेकंड लाइन लिखने से, ये बस ऊपर वाले ने
1: बहुत
0: उनके
1: बड़ी बात,
0: दिमाग
1: बहुत
0: में
1: बारीक
0: डाली,
1: काम था
0: बहुत
1: ये, बारीक
0: बारीक काम
1: काम था।
0: किया। और हिमेश जी जितना भी काम करते हैं वो बहुत बारीकी में करते हैं
1: बिल्कुल
0: और बहुत धैर्य से करते
1: धैर्य
0: हैं।
1: से। मुझे एक बात बताइए सुधाकर जी, आपका एक इंटरव्यू सुन रही थी, आपने कहा कि इस गीत में मैंने एक पैंतरा डाला था, मैंने हिमेश जी से कहा था कि इसमें एक पैंतरेबाजी करनी पड़ेगी,
0: जी
1: तो
0: जी
1: ये पैंतरा क्या था और किस
0: देखिए
1: तरह से आपने इसको निभाया, हमारे श्रोता
0: पैंतरा
1: जानना चाहेंगे।
0: क्या है कि एक्चुअल में हसरत साहब बोलते थे कि जब कभी ऐसी जगह पे फंस जाओ तो उसमें पैंतरेबाजी से काम लेना चाहिए।
1: हाँ।
0: वो पैंतरा क्या होता है कि मतलब अब जैसे कि प्यार किया तो डरना क्या कि सेकंड लाइन मैंने नहीं लिखी, तो पैंतरा ये था कि गाने को ऐसी जगह से शुरू करो कि लोगों को ये पता ही नहीं लगे कि कहना क्या चाहते हैं। अब हम कह रहे हैं तेरे प्यार में डूब गए हैं, हम खुद को ही भूल गए हैं, दुनिया चाहे जो, यहां से शुरू हो रहे तो उनको क्या मालूम ये क्या कहने वाले हैं। और ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की, जब प्यार किया तो डरना क्या, हिमेश भाई ने इसकी ट्यून बनाई, और जब प्यार किया तो डरना क्या, ओढ़ली डरना क्या के बाद लोग खटके, तो हमने दूसरा ही रंग दे दिया, ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की, ये
1: बहुत
0: ओडली पैंतरा
1: खूब बहुत सुंदर, मतलब एक बहुत बारीक काम था ये,
0: जी
1: जिसे
0: जी
1: हर एक को समझना आसान नहीं था।
0: जी जी
1: तो जब ये गीत आपने रिकॉर्ड किया, आपने अलका याग्निक और कुमार सानू को इस गीत
0: जी
1: से
0: जी
1: में गवाया,
0: जी
1: तो क्या कोई दिक्कतें आपको पेश आई और किस तरह से ये गाना, क्योंकि गाना मिल तो गया लेकिन रिकॉर्ड किस स्थिति में हुआ उसकी भी
0: ये
1: कहानी होती है।
0: हाँ ये दिक्कत तो इसमें बहुत बड़ी आई, और दिक्कत सबसे बड़ी ये आई कि हिमेश जी ये चाहते थे कि ये गाना अलका याग्निक और कुमार शानू गाएं, तो चूंकि उनका ये पहला गाना था और उनका ये था कि अगर ये दोनों गाएंगे तो सुपरहिट होगा, तो दादा को लाने में को मैंने कहा ठीक है मैं लेके आता हूँ, क्योंकि मेरा रिश्ता था, हम लोग काम कर रहे थे, तो मैं गया तो दादा को तो इतना प्रॉब्लम नहीं था, मैंने दादा को बोला दादा एक फिल्म मिली है और उसमें आपको ये गाना गाना है, तो दादा बड़ा वाकई में वो टाइगर ही हैं
1: कुमार
0: वो,
1: सानू के
0: हाँ वो जो हैं बस वही हैं,
1: जी।
0: वो कभी कुछ बनावटी बातें नहीं करते हैं, उसमें कभी कभी ऐसा भी लगता है कि ये कुछ नाराज हैं, वो नाराज वाराज भी कुछ नहीं होते, उनको खुद ही नहीं मालूम कि वो क्या उनको बोलना चाहिए और क्या बोल गए, बड़े भोले और बड़े डैशिंग आदमी है, तो मेरे को बोले हाँ ठीक है गा दूंगा गा दूंगा, कौन है म्यूजिक डायरेक्टर, तो मैंने कहा आपने एक दो गाने सीरियल में गाए हैं उसके, हिमेश भाई का म्यूजिक है, हाँ अच्छा अच्छा वो करता है वो, करूंगा करूंगा। प्रॉब्लम आई अलका याग्निक की,
1: अच्छा
0: उनका अप्रोच नहीं हो पा रहा था,

0: मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं, अब हमारी दूसरी सभा आरंभ होती है। श्रोताओं, आप सभी का पुनः स्वागत है। सभा का आरंभ करते हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण के साथ। ये प्रसारण हम आकाशवाणी भोपाल से करेंगे।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रस्तुत हैं इस घंटे की खास खबरें।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर आज उपराष्ट्रपति CP Radhakrishnan ने कहा कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर आज प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भोपाल के रविन्द्र भवन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एमएसएमई इकाइयों को 225 करोड़ 19 लाख और स्टार्टअप को लगभग 39 लाख रुपए की राशि अंतरित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 दिन की राजकीय यात्रा पर सेशल्स रवाना हो गए हैं। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात में गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। संचार और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से गुना जिले के 3 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान वे कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 29 जून को नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ करेंगे। और US ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारत की देविका सहवाग और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। कैलिफोर्निया के फुलटर्न में महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में देविका ने जापान की रिको गुंजी को हराया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें। मीडिया वेव DTH और न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन पर यह प्रसारण है आकाशवाणी मध्य प्रदेश का। अब प्रस्तुत है युवा धड़कनों को तरंगित करने वाला कार्यक्रम युववाणी।

दोस्तों, शुरुआत करते हैं आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी की। मैं आपकी रेडियो दोस्त इशिका, नमस्कार। दोस्तों, हम हर साल जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी परिणामों के साक्षी हैं, जो विश्व भर के समाजों को तबाह कर रहे हैं। नदियां घरों को बहा ले जाती हैं, फसलें नष्ट हो जाती हैं और लोग वर्षों की मेहनत से अर्जित संपत्ति को खो देते हैं। यानी जलवायु परिवर्तन हमारे अस्तित्व के लिए खतरा बन गया है। इसकी गति को धीमा करने के लिए टिकाऊ जीवन शैली की आवश्यकता है। इस टिकाऊ जीवन शैली के प्रति जागरूकता में हरित कौशल महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। दोस्तों, हरित कौशल का तात्पर्य उन ज्ञान, क्षमताओं और दृष्टिकोणों से है जो पर्यावरण के संरक्षण और एक स्थायी संसाधन कुशल अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए आवश्यक है। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को ऐसे व्यवहारिक और तकनीकी

शिक्षण देना है, जिससे वो पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता से जुड़े क्षेत्रों में रोजगार या स्वरोजगार प्राप्त कर सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण के तहत वनों की रक्षा, वन्य जीव संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और अपशिष्ट प्रबंधन जैसे कार्य आते हैं। हरित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ऊर्जा की बचत करना, नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा के उपयोग और कम कार्बन उत्सर्जन वाली तकनीकों को बढ़ावा देना। दोस्तों, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कौशल भारत मिशन के तहत हरित कौशल विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। दोस्तों, हरित कौशल विकास के लिए कई कोर्सेज भी कराए जाते हैं। इसमें युवाओं को पौधों की पहचान, वन अग्नि प्रबंधन, जैविक खेती और जल बजटिंग जैसे अल्पकालिक कोर्स कराए जाते हैं। दोस्तों, अब करते हैं थोड़ा सा मनोरंजन और सुनते हैं ये गीत सिर्फ तुम फिल्म से उदित नारायण की आवाज में।

0: दोस्तों आइए अब हम हरित विकास के विषय में जानते हैं युवा श्रोता राहुल द्विवेदी से।
1: हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल। अक्सर जब भी हम तरक्की या विकास की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, गाड़ियां और कंक्रीट के जंगल आने लगते हैं। सालों से हमें यह लगता आया है कि अगर प्रगति करनी है तो प्रकृति की बलि देनी ही पड़ेगी, लेकिन आज हरित कौशल यानी ग्रीन स्किल्स इस पुरानी सोच को पूरी तरह बदल रहा है। ग्रीन स्किल्स का मतलब है एक ऐसी सोच और ऐसा हुनर विकसित करना जहां विकास भी हो और हमारी नदियां, हवा और मिट्टी भी सुरक्षित रहे। आज सस्टेनेबल आर्किटेक्चर से लेकर इको फ्रेंडली कोडिंग तक हर फील्ड में इसकी भारी डिमांड है। अगर हम आज ग्रीन स्किल्स नहीं सीखेंगे तो हमारे पास डिग्रियां तो होंगी लेकिन जीने के लिए एक साफ सुथरी हवा नहीं होगी। जी हाँ, आज पूरी दुनिया हरित कौशल की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी का क्षेत्र हो, वेस्ट मैनेजमेंट यानी कचरा प्रबंधन, या फिर सस्टेनेबल फार्मिंग। इन सभी क्षेत्रों में एक्सपर्ट्स और कुशल युवाओं की भारी कमी है। कंपनी अब सिर्फ युवाओं को ढूंढ रही है जो ना सिर्फ अपने काम में माहिर हो बल्कि यह भी जानते हो कि कार्बन फुटप्रिंट को कैसे कम किया जाए। एक युवा होने के नाते अगर हम हमारे इन स्किल्स को सीख लेते हैं तो हम ना सिर्फ अपने करियर को एक नई ऊंचाई देंगे बल्कि अपने इस खूबसूरत पृथ्वी के प्रति अपना फर्ज भी निभाएंगे। सिर्फ नौकरी पाने का एक जरिया नहीं है बल्कि भविष्य को सुरक्षित करने का एक आंदोलन है। असली समझदारी इसी में है कि हम ऐसी तकनीक सीखें जो हमारे बिजनेस को बढ़ाए और हमारे पर्यावरण को भी। याद रखिए, प्रगति वही है जो प्रकृति को साथ लेकर चले, वरना वो प्रगति विनाश में बदलते देर नहीं लगाती। इस बारे में जरूर सोचिए। शुक्रिया
0: दोस्तों, अब सुनते हैं ये गीत गुरु फिल्म से श्रेया घोषाल की आवाज में।

बापू मैं जा रही हूँ, जो मेरी मर्जी है वो आपको पसंद नहीं। अब देश आजाद है तो आपकी बेटी क्यों नहीं? मुझे मेरा साथी मिल गया है, चिंता मत करना, मैं खुश रहूंगी। आपकी सुजाता।

दोस्तों, भारत सरकार की एक ऐसी महत्वाकांक्षी पहल है जिसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश को अनुसंधान विकास और नवाचार में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाना है। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ

राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के विषय में। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा संचालित ये मिशन सुरक्षित संचार, उन्नत कंप्यूटिंग और सटीक नेविगेशन के विकास पर केंद्रित है। ये एक 8 वर्षीय मिशन है, 2023 से 2030-31 तक। क्वांटम तकनीक के 4 प्रमुख क्षेत्रों क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम संचार, क्वांटम सेंसिंग और क्वांटम सामग्री में अनुसंधान के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान और विभिन्न IIT संस्थानों में विशेष हब स्थापित किए गए हैं। 5 से 8 वर्षों में 50 से लेकर 1000 भौतिक क्यूबिट तक मध्यम स्तरीय क्वांटम कंप्यूटर विकसित करने का लक्ष्य है। इसका उद्देश्य उपग्रहों के माध्यम से 2000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक भारत के भीतर ग्राउंड स्टेशनों के बीच पूरी तरह से सुरक्षित क्वांटम संचार स्थापित करना है। दोस्तों, वर्तमान में पारंपरिक एन्क्रिप्शन सिस्टम क्वांटम कंप्यूटरों के हमलों से असुरक्षित हो सकते हैं। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और बैंकिंग प्रणाली को हैक प्रूफ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दोस्तों, आप सुनते हैं ये गीत नमक हलाल फिल्म से आशा भोसले की आवाज में।

दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारे अगले स्तंभ रोजगार सूचना की ओर। भारतीय नौसेना ने एसएससी अधिकारी के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रस्तुत किए हैं। ये भर्ती 275 पदों के लिए है। प्रारंभिक तिथि 25 जून 2026 और आखिरी तिथि 27 जुलाई 2026। उम्मीदवारों का जन्म 2 जुलाई 2002 से 1 जुलाई 2008 के बीच का होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता बी या बीटेक 60% अंकों के साथ। अगली भर्ती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में प्रोबेशनरी ऑफिसर के पद के लिए। कुल 1500 पद हैं। आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि 18 जून 2026, आखिरी तिथि 8 जुलाई 2026। न्यूनतम आयु 21 वर्ष, अधिकतम आयु 30 वर्ष। शैक्षणिक योग्यता है किसी भी स्ट्रीम में स्नातक। दोस्तों अब सुनते हैं ये गीत आंधी फिल्म से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में।

0: दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन चलने से पहले आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है हमें जरूर बताइएगा। आप अपनी शिकायतें और अपने सुझाव हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है yuvvaniriva@gmail.com। तो फिर मिलने के वादे के साथ अपनी रेडियो दोस्त इशिका यानी मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ संध्या।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे युवाओं के लिए कार्यक्रम युववाणी, प्रस्तुति आकाशवाणी रीवा की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश
2: मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं।

मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। लीजिए पेश है फिल्म संगीत। उम्मीद फिल्म का गीत है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। बोल शकील बदायूनी के हैं और धुन रवि की।

कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म अजनबी से, जिसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। गीत और संगीत है आर डी बर्मन का।

लीजिए आप सुनिए आनंद बख्शी और इंदिवर की शब्द रचना बीजू शाह के संगीत निर्देशन में। स्वर पंकज दास और साधना सरगम का है। फिल्म का नाम है मोहरा।

आपकी कसम कार्यक्रम का अगला गीत है इस फिल्म से। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत से सजाया है आर डी बर्मन ने। स्वर लता मंगेशकर और किशोर कुमार का है।

और श्रोताओं, अब कार्यक्रम का अंतिम गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीत आनंद बख्शी का है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। फिल्म का नाम है जीने की राह।

मीडियम वेव 374.5 मीटर पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम विवरण। पहले सभा के शेष कार्यक्रमों की प्रसारण रूपरेखा।

अखिल भारतीय विज्ञान पत्रिका कार्यक्रम विज्ञान भारती रात 9:30 पर, संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रात 10 बजे और स्पॉटलाइट कार्यक्रम होगा रात 9:15 पर। ये सभी कार्यक्रम हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। आकाशवाणी भोपाल से हम रिले करेंगे कार्यक्रम सुर्खियों में रात 8 बजे। शाम 6:30 पर लोक संगीत में सुनिएगा राजाराम विश्वकर्मा से बुंदेली लोकगीत और सुगम संगीत में शाम 6:45 पर स्वाति चौधरी की आवाज़ में आप सुन सकते हैं सुगम रचनाएं।

दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत होगा शाम 7:21 पर। और श्रोताओं, एक नज़र हमारे केंद्र से कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। वंदना सुनिएगा 6:05 पर। प्रकाश किरण में कल का विषय है महाभारत में क्षमा का महत्व। समय होगा 6:30 का। और श्री रामचरित मानस गान का प्रसारण किया जाएगा 6:35 पर। परवल की खेती विषय पर जानकारी सुनिएगा कृषि सामिकी के अंतर्गत 6:45 पर। और कार्यक्रम गुड मॉर्निंग जबलपुर लेकर हम हाजिर होंगे रोजाना की तरह 7:20 पर। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी श्रोताओं से अपने मन की बात साझा करेंगे कार्यक्रम मन की बात में 11:00। इस कार्यक्रम का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी दिल्ली से करेंगे। आकाशवाणी भोपाल से हम रिले करेंगे 9:30 पर कार्यक्रम सिंधियत जी सुरहान और 10:00 जिले की चिट्ठी। बुंदेली लोकगीत सुनिएगा लोक रसधार कार्यक्रम में 9:30 पर। कलाकार होंगे रामचरण अहिरवार और खेदू सिंह। वंदे मातरम गौरवगान की 1.5 सदी 10:05 पर और विश्व दर्पण कार्यक्रम 10:10 पर। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। 10:20 पर होगा कार्यक्रम सारंगा। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रमों का प्रसारण हम आकाशवाणी भोपाल से करेंगे 12:30 से हमारी प्रथम सभा के समापन यानी 3:00 तक। कल की दूसरी सभा में 5:00 आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम का प्रसारण हम आकाशवाणी भोपाल से करेंगे। 6:30 पर ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप प्रतियोगिता के अंतर्गत इंग्लैंड में भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेले जाने वाले मैच का आंखों देखा हाल हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। श्रोताओं, इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण अब समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में यानी शाम 6 बजे समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमेनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमेनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। प्रधानमंत्री ने हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए प्रवासी भारतीय समुदाय को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि प्रवासी समुदाय ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति को जिस तरह से विदेशों में संरक्षित और संजोए रखा है वो सराहनीय है। प्रधानमंत्री सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे। इस बीच सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोर ने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले 2 वर्षों में देश भर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
1: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस उद्यमी भारत कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने देश में एमएसएमई को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म, पोर्टल और प्रकाशनों का भी विमोचन किया। इनमें पीएमईजीपी 2.0 पोर्टल, समाधान 2.0 पोर्टल, पीएमएस पोर्टल, एमएसएमई ग्लोबल मार्ट 2.0 पोर्टल, एमएसएमई टेस्टिंग पोर्टल और एमएसएमई आइडिया हैकाथॉन 6.0 शामिल हैं। केरला में प्रवेश परीक्षा आयुक्त ने आज इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मेडिकल परीक्षा की रैंक सूची जारी कर दी है। इंजीनियरिंग श्रेणी में कुल 89,717 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है, जबकि फार्मेसी श्रेणी में 26,943 उम्मीदवारों को स्थान मिला है। इंजीनियरिंग श्रेणी में रोशन राजू और फार्मेसी श्रेणी में विनायक नारायण ने पहला स्थान हासिल किया। उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। महाराष्ट्र में कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा TET का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद परीक्षा स्थगित कर दी गई है। राज्य परीक्षा परिषद ने बताया कि ठाणे के भिवंडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी मिली थी। परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेलंगाना के

0: लीजिए अब सुनिए आंखें फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीत लिखा है साहिर लुधियानवी ने और संगीत बद्ध किया है रवि ने।
1: उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की सरहद की

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में संस्कृत भाषा में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। सुगम संगीत में अब सुनिए स्वाति चौधरी की आवाज में सुगम रचनाएं। इनसे पहले सुनिए डॉक्टर पुरुषोत्तम चक्रवर्ती की ये रचना।

इस रचना के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे स्वाति चौधरी से रचनाएं। मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। अब समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशेल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशेल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने भारत और सेशेल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। प्रधानमंत्री ने हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए प्रवासी भारतीय समुदाय को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि प्रवासी समुदाय ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति को जिस तरह से विदेशों में संरक्षित और संजोए रखा है वह सराहनीय है। प्रधानमंत्री सेशेल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। वे सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस उद्यमी भारत कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने देश में एमएसएमई को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म, पोर्टल और प्रकाशनों का भी विमोचन किया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले 2 वर्षों में देश भर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
1: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख साथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज ने आज इस मामले में बयान जारी किया। बयान में कहा गया कि इस्तीफों पर अगली बैठक में चर्चा की जाएगी। ट्रस्ट ने पुष्टि की है कि दान से जुड़े मामले में एसआईटी जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी से संबंधित प्रश्नपत्र लीक की बड़ी साजिश का भिवंडी में निर्धारित परीक्षा से 1 दिन पहले ही पर्दाफाश कर दिया गया। प्रश्नपत्र लीक रैकेट के 3 कथित सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों की पहचान बिहार के राजीव साव और आकाश कुमार तथा हरियाणा के धीरज सिंह के रूप में हुई है। बहरीन ने आज ईरान पर आरोप लगाया है कि उसने देश पर ड्रोन से हमले किए। बहरीन के विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया कि ईरान के कई ड्रोनों ने देश को निशाना बनाया, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इससे पहले ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने कहा कि उसने अपने दक्षिणी तट पर अमरीकी हवाई हमलों के जवाब में अमरीकी सेना से जुड़े ठिकानों पर हमला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, न्यूज वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। देविका सिहाग ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi has arrived in Victoria for a three-day visit to Seychelles. He was given a warm welcome by the President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, at the airport. Appreciating the gesture, Prime Minister Modi reiterated that Seychelles is a valued maritime partner and a close friend in the Indian Ocean. Mr. Modi said he is looking forward to a productive visit aimed at further strengthening India and Seychelles' long-standing ties and enhancing cooperation for the benefit of the people of both the nations. Prime Minister Modi also thanked the Indian diaspora for the warm welcome at the airport. He said the manner in which the Indian diaspora has preserved and celebrated culture from different parts of India is appreciable. Prime Minister Modi will be the guest of honour at celebrations marking the historic 50th anniversary of independence of Seychelles. US Secretary of State Marco Rubio has praised Prime Minister Narendra Modi's leadership, saying India has made significant economic progress and is playing a bigger role on the global stage. In an interview with a news agency at the White House, Mr. Rubio said the Trump administration views India as one of the US's closest strategic partners. He said Prime Minister Modi has led a country that is making strong economic gains and becoming an increasingly influential global power. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the Mann Ki Baat program on Akashwani tomorrow at 11 a.m. in the morning. It will be the 135th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across the entire Akashwani and Doordarshan network, the AIR news website and the news on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashwani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. The Sri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust has officially acknowledged the resignations of General Secretary Champat Rai and Trustee Anil Mishra. Treasurer of the Sri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra, Swami Govind Devgiri Maharaj, today issued a statement on this issue. The statement says that the resignations will be discussed in the next meeting. It also showed that the silver bricks and jewellery donated by devotees are accounted for. The trust in this letter said that it is deeply saddened, hurt and extremely distressed by recent incidents at the Ayodhya Ram Temple. It also confirmed an FIR has been registered in the donation-related case based on the SIT's interim report with legal proceedings underway. In Tamil Nadu, the MDMK party led by Vaiko has ended its 9-year alliance with the DMK. The party general secretary Vaiko led a general council meeting in Chennai today, during which a general resolution was passed for withdrawal from the alliance. The MDMK alleged that attempts were made to weaken the party. The MDMK has two MLAs in the assembly. The India Meteorological Department has predicted heavy to very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim during the next 2 days. The weather agency also forecast heavy rainfall over Bihar, Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh, coastal Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and in some parts of northeast India today. In US Open Badminton, India's Devika Sehag, Kidambi Srikanth and Ronak Chahan have reached the semi-finals at the Titan Gym in the California State University. Devika caused a major upset, defeating third seed Riko Gunji of Japan in straight games, winning 20-20, 21-19 in the women's singles quarterfinals. In men's singles, Srikanth defeated Chinese Taipei's Liao Zhufu 21-9, 12-21, 21-8 to stay on course for a possible All-India final. Ronak Chahan also advanced, beating Israel's Misha Zilmaben 23-21, 21-11. India have reached the quarterfinals of the Badminton Asia Junior Mixed Team Championships with a convincing 2-0 victory over Kazakhstan in their opening Group C match at Yatsushiro, Japan. The girls' doubles pair of Durga Isha Kundarapu and Kirti Manchala gave India a strong start. Puneet Suresh and Deepti Raj Aditi then extended India's lead. The Indian team went on to dominate the remaining matches and comfortably seal the tie. And that is the end of this news bulletin.
3: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
4: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राणा शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंचे। सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में होंगे शामिल। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर आज प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित। मुख्यमंत्री ने कहा, मध्य प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में अपनी पहचान करेगा स्थापित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से अपने विचार साझा करेंगे। और राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत कल 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। सेशल्स की राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी ने उनका हार्दिक स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा का उत्सुकता प्रकट की। प्रधानमंत्री सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। वह सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर आज प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविन्द्र भवन भोपाल में आयोजित सशक्त उद्यमी समृद्ध मध्य प्रदेश समिट में सहभागिता की। इस अवसर पर उन्होंने एमएसएमई इकाइयों को लगभग 225 करोड़ रुपए की विभिन्न स्टार्टअप्स को लगभग 39 लाख तथा वृद्ध उद्योगों के लिए 1274 करोड़ की प्रोत्साहन राशि अंतरित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश विदेश की अग्रणी कंपनियां मध्य प्रदेश में लगातार निवेश कर रही हैं। हमें विश्वास है कि आने वाले कुछ वर्षों में मध्य प्रदेश देश के शीर्ष 3 अग्रणी राज्यों में अपनी सशक्त पहचान स्थापित करेगा।
1: आने वाले पूरे 5 साल के होते होते हम निश्चित रूप से 3 प्रमुख राज्यों में से शामिल होंगे। जिस प्रकार से हमारी गति चल रही हर एक क्षेत्र में, और केवल यहाँ नहीं, कनाडा, यूके, जापान, दक्षिण कोरिया, ये सबको मिला लो तो जो हमने एमओयू किए थे और वो लगभग 9300 करोड़ से अधिक का निवेश अब ग्राउंड ब्रेकिंग में पहुंच। हमारे पास कनाडा की मैकमैन फूड कंपनी आगर मालवा में 3800 करोड़ का काम कर रही, ये एग्रीकल्चर के सेक्टर में बड़ा काम कर रही।
0: केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले 2 वर्षों में देशभर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। आज गुजरात के गांधीनगर में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी के उद्घाटन सत्र में श्री शाह ने इस पहल को सहकारी क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने कहा कि इससे चालकों को उनके पारिश्रमिक का अधिक से अधिक हिस्सा मिलेगा और यात्रियों को भी सुरक्षित तथा किफायती यात्रा का लाभ मिल सकेगा।
2: मैं आज इस मंच से कह देना चाहता हूं, हम तो 1.5-2 साल में 500 से ज्यादा शहर में पहुंच जाएंगे, कुछ बचेगा ही नहीं। हर जगह हम पहुंच जाएंगे। हम नागपुर पहुंचेंगे, पुणे पहुंचेंगे, मुंबई पहुंचेंगे, लखनऊ, चंडीगढ़, जयपुर, कोलकाता, 31-7 के पहले 7 स्थान पर भारत टैक्सी पहुंच जाएगी। और 2 साल के अंदर छोटे बड़े मिलाकर हम 500 शहरों के अंदर, कस्बों के अंदर हमारे 2-व्हीलर, ऑटो और 4-व्हीलर का कंसेप्ट लॉन्च करने जा रहे हैं।
0: संचार और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से गुना जिले के 3 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान वे कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री सिंधिया ने आज सर्किट हाउस में लोगों से भेंट कर उनकी शिकायतें सुनी। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत कंजा गांव में पौधरोपण किया। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज उज्जैन में सिंहस्थ 2016 के अनुभव 2028 का संकल्प विषय पर आधारित कार्यशाला का शुभारंभ किया। कार्यशाला में सिंहस्थ 2028 के सफल एवं सुव्यवस्थित आयोजन के लिए अधोसंरचना विकास, विभिन्न विभागों की कार्ययोजना व समन्वित तैयारियों पर व्यापक मंथन किया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंहस्थ 2028 को भव्य, दिव्य और सुव्यवस्थित बनाने के लिए उज्जैन में विकास कार्य निरंतर जारी है। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत कल 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया कि जन समुदाय में इस अभियान के प्रति जागरूकता के लिए आज विशाल रैली आयोजित की गई। कटनी जिले में भी कल राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का व्यापक आयोजन किया जाएगा। अभियान के दौरान जिले के 5 वर्ष आयु वर्ग के सभी 1,73,700 से अधिक बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। भिंड जिला टीकाकरण अधिकारी ने बताया कि इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसमें 5 वर्ष तक के लगभग 2,70,000 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। शिवपुरी जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा पल्स पोलियो अभियान को लेकर आज जन जागरूकता रैली निकाली गई। नरसिंहपुर जिले में इस अभियान के अंतर्गत 1,58,945 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। मंदसौर में अभियान के प्रति जागरूकता के लिए शहर के प्रमुख मार्गों से रैली निकाली गई। प्रदेश में मानसून की दस्तक के बाद इसकी रफ्तार फिलहाल थम गई है। अगले 2 से 3 दिनों में इसके फिर सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर, शहडोल और सागर संभागों के कई जिलों में बारिश होने का अनुमान जताया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर में पंचायत सांवेर की ग्राम पंचायत कदवाली बुजुर्ग में जल गंगा संवर्धन अभियान 2026 का समापन समारोह आयोजित किया गया। मंदसौर में राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। जबलपुर के 2 प्रमुख कृषि उत्पाद मटर और सिंगाड़ा को भारत सरकार की ओर से भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस के अवसर पर खंडवा जिले के ग्राम बलखड़ में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिवपुरी जिले में कल श्रमायुक्त संदीप GR ने माधव चौक का भ्रमण कर श्रमिकों से सीधे संवाद किया। आयरलैंड और भारत के बीच 2 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का 2रा और अंतिम मैच कल खेला जाएगा। राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा ICJS कार्यान्वयन और डिजिटल एकीकरण विषय पर कल 1 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन कुशाभाऊ ठाकरे सभागार भोपाल में किया जाएगा। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य अंतर संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली के तहत पुलिस अभियोजन न्यायालय, जेल, फॉरेंसिक एवं स्वास्थ्य विभाग के मध्य डिजिटल समन्वय और डेटा इंटर ऑपरेबिलिटी को सुदृढ़ बनाना है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

मीडियम वेव 374.5 मीटर पर यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

कृषि जगत कार्यक्रम सुनबे बारे सभी किसान भैया बहनों से प्रभा बहन की राम राम। किसान भैया हरो, उद्यम करके मान कमाबे, अपने भाग जगाबे, हुनर हाथ में धर के भैया नई पहचान बनाबे, लघु उद्यम शुरुआत करें फिर ऊंचे धाम पे जावे, मेहनत लगन भरोसा धर के सपनों सच कर जावे, भैया अपने भाग जगावे, गांव शहर के नौजवान सब रोजगार अपनावे, उद्यम करके मान बढ़ावे। सो भैया देखो, अब अपन चौपाल में आ गए हैं, गम्मत शुरू हो गई है। और किसान भैया बहनों, आप और सबका बताएं, मन भैया चर्चा तो करने ही है, कछु न कछु बातें तो मनोरंजन की, कछु जानकारियों की, कछु अटका बुझाऊ लेके आए, और गम्मत सजावे शनिचर को देना है आज। सुमनो आप और बातचीत करवे के पहला हूँ, हम आप और बा बात बता रहे हैं जोन बात हमरी और फुआ भाई के बीच में भाई। अब आप और कहो कौन फुआ भाई लो, भग्गो फुआ भाई को कौन नहीं जानत भला बताओ, हमरे पुरा की भग्गो फुआ भाई वही तो। सो भैया का भाव भी भारी उदासी बैठी, हमें ऐसी दिखानी के भारी उदास बैठी, कछु गुनी गुन तारों से लगा रही, मनो भी तो कर रही थी अनुलोम विलोम और बड़ी शांति से ध्यान मगन बैठी थी। सो हमें उन हमने उन्हें टेरो, फुआ भाई राम राम, फुआ भाई राम राम, मानो उनने हमारी आवाज़ कि जो आप ही नहीं लगा, उन्हें कछु झाई न पारी, वे ध्यान में इतनी मगन आती कि योगा के ध्यान में बिल्कुल ध्यानस्थ आती। सो हमने तनक लिंगा जाक है उन्हीं के जोरे बैठ कर उनसे पूछी, फुआ भाई ऐसी का बेजा बात हो गई जिन तुमरो ध्यान मोरी राम राम पहलो नहीं गवाए। सो वे चट्ट से बोली, अरे प्रभा बिन्ना तुम भली मिली, आज मोरो जी भारी दुखी है वो हरिया के दद्दा की बातों पर। हमने कही कि का होगा जुन, सुबह बतान लगी कि अरे वो हरिया को का दोष है वो मैं भला बताओ, लड़कपन से खूब ही मेहनत करी, उन्हें हमेशा हर क्लास में पास हो गओ और वो मैट्रिक लो पास हो गओ, अब उसे वो के दद्दा का कहते हैं कि आगे नहीं पढ़ावे पैसा नहीं है, अब बताओ भला वह पूरी पढ़ाई नहीं हुई है तो वह सरकारी नौकरी कैसे लागे वो की। सो वो के दद्दा का कहने लगे कि हाँ हाँ पढ़ने हुए तो पढ़त रहे मनो एक टाइम दुकान से ही समारे। सो हरिया कहन लगो के मैं तो दुकान पे न बैठूं भलाई, मैं तो अपनो उद्योग धंधो खोलूं, कई बन्नी चीज़ें इकट्ठी करके ऑनलाइन भलाई वो ऑनलाइन सो काम करवे को नहीं कहो जात बताऊ थे तो वो खोल हूँ कहत। तो मैंने कही भैया

या खुलवा दो कि ऑनलाइन दुकान, तो वो हरिया चट्ट से बोलो कि ऑनलाइन दुकान खोलने नहीं पड़त, चलाऊ न पड़त। सो किसान भैया हरो, जा बात फूआ भाई की सुन के मोरी सुई समझ में नहीं आई थी कि कैसी ऑनलाइन दुकान और काय को उद्यम का। मानो मैंने फिर से फूआ भाई से पूछी के वे बतान लगी सो के अरे मोबाइल पे ग्राहकों से बात करके अपनो सामान बेचवे के लाने, उनके घर लो सामान पहुँचावे के किया थे ऑनलाइन शॉपिंग। सो हमने कही कछु सामान तो रखवे के लाने दुकान डलिया तो जरूरी हुए मनो। सो फूआ बाई कहन लगी कि वो हरिया कह तो कि मैं तो अपने खेत में एक गौशाला बने हूँ और दूध घी मक्खन दही मही और इनके संगे संगे गोबर मूत्र लो को व्यापार कर हूँ। तो हमने कही के का बता रही फूआ भाई गोबर को और मूत्र को? तो कहने लगो गोबर से खाद बने और मूत्र से स्वाद वो स्वास्थ्य अच्छो रहते है। तो वे आगे बता लगी कि मोबाइल से बात करके एक दो लड़का सप्लाई के लाने लगा दे हैं लोगों हैं और घर बैठे सामान मिल है, शुद्ध मिल है, सो ग्राहक की बाढ़ है। और कछु जनो है काम सो ही मिल जाए, कछु जन है मुर्गी पालन करवे में लगा दे हूँ, कछु जनो है मछली पालन में, कछु जनो है फल की फूल की सब्जी की खेती में लगा दे हूँ, कछु जनो है मशरूम की खेती करवे में, सो सब के काम मिल है और हमारे ग्रह उद्योग चल है ऑनलाइन सुई और घर बैठे सुई फायदा मन माफिक। सो किसान भैया हरो, हमने फूआ भाई से पूछी कि तुम काय को गुंतारो लगा रही थी और चिंता से मैं डूबी हो? सो वे बोली कि अरे वो हरिया ने मुँह से कही है कि फूआ भाई तुम गांव के पढ़े लिखे बेरोजगार लड़का लड़कियों की सूची बना के देओ, जो लो हम बैंक से कर्ज लेवे की तैयारी कर हैं। सो हम वो ही गुंतारा लगा रहे थे कि अपने गाँव में 10-12 तो मोड़िए हैं, उम्दा 8वीं 10वीं 12वीं लो की पढ़ी लिखी, और लड़का तो कुल के हैं मुत के लो पढ़े लिखे घूम रहे हैं, मानो उनके हाथ में कछु राज रोजगार नहीं है, न वे नौकरी पेशा में आए, बस दिन भर मोबाइल को खेल सो खेलत रहते हैं। सो मुहे उन सब के नाम या लिखने हैं, हरिया है देने हैं, आज जे मैं वो भुनसरा से अपने काम को लक्ष्य बना के करवे की तैयारी शुरू कर देवे। सो किसान भैया हरो, हम आपसे बता रहे हमने तो अपनो नाम सुई लिखवा दो सिलाई बुनाई ड्रेस डिजाइनिंग के लाने। फूआ बाई से कही कि हमरो नाम सुई लिख लो। सुबह फूआ बाई चट्ट से बोली कि प्रभा बिन्ना मैं अपनो नाम सुई नहीं लिखवा दूंगा, चार मुरब्बा बनाबो पापड़ बरी बनाबो, मेरे लाने तो डेरे हाथ को काम है। तो हमने कही जा बात तो ऐसी है कि नी की और पूछ पूछ ऐसे उमदा और का हो सकत। सो भैया हमरो सुई चौपाल से जोई कहबो है कि जुन भैया बहनों की नौकरी नहीं लगाता है और वे परेशान रहते हैं, तो उन्हें सुई सबको अपने हाथ के हुनर को बढ़ाने चाहिए और मिलखे नौकरी मिल जाए तो उम्दा बात, और न मिले नौकरी तो न हो उदास, हुनर जगाओ काम बढ़ाओ उद्यम में छुपी उन्नति खास। तो भैया जय के संग हम तो जय के हैं कि छू छोटी

0: मेहनत साहस धीरज से तो बदले भाग्य विधान, उद्यमिता की गेल चले से नित मिल है सम्मान, पगले समय बड़ा बलवान। तो हमें समय के संग चलत भाई, अपने हुनर को आगे बढ़ाना चाहिए। और अब तनक रुकत हैं।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रा के दौरान अगर टीसी टिकट मांगे तो दिखा दीजिए, लेकिन कोई भी ओटीपी पिन या पासवर्ड मांगे तो उसे तुरंत भगा दीजिए।
2: RBI कहता है ओटीपी या पिन के लिए कॉल या मैसेज आए तो थोड़ा ध्यान से।
0: हाँ तो किसान भैया हरो, देखो आज जुन अटका शामिल होवे की बारी है वो है अपनो 13 जून 2026 को अटका, और अटका है तो उजली धरती काला बीज ज्ञान बांटवे बारी चीज। तो भैया ये को उत्तर है किताब, और जो अटका भेजो है जुन्ने भेजो आओ तो जुन्ने वे हमारे नियमित श्रोता हैं सुमित कुमार जैन पिंडरई मंडला से। सो जो उनको भेजो भाव अटका शामिल भाव तो 13 जून 2026 में, और उनकी चिट्ठियाँ सोई आउत रहती हैं हमेशा, और ये चिट्ठिया में जवाब सोई ये अटका कुदाव है भैया। सबसे पहले हम उन्हीं की चिट्ठिया शामिल कर रहे हैं जो किताब के संगे संगे ज्ञान बांटवे को काम स्वीकारत हैं। जे हैं लिखवे बारे हैं योगेंद्र सिंह यादव, प्रणव यादव, प्रियांश गौरव, छोटे राजा यादव, भूपेंद्र, सबको गौरी महिमा साधना, संध्या दीक्षा, तुलसा यादव, कमल किशोर यादव और समस्त यादव परिवार मिडली वर्मान से जे लिख रहे हैं कि श्रीमान लखन भैया, प्रभा बिन्ना, मधुबंती बिन्ना और सबई जनों से, भैया बहनों से, गवैया बजैया सुनवैया भैया से, सबसे मिडली से सबई जनों के यादव परिवार से सादर दोई हाथ से जोड़ के राम राम पहुँचे। और हम गम्मत के नियमित श्रोता आए सुनबे वाले और चिट्ठियां लिखवे बारे बड़ी लगन से ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को सुनत हैं, और ज्ञानवर्धक मनोरंजक कार्यक्रम गम्मत सोचवे समझवे विचार के लाने मौका देते हैं। और अटका में दिनांक 13 जून 2026 गम्मत प्रस्तुति लखन भैया ने करी थी। अटका को उत्तर है धरती यानी काला बीज और ज्ञान बांटवे वाली चीज, तो किताब एक उत्तर भी लिख रहे हैं, और किताब ज्ञान बढ़ावे की चीज़ है। और जे आगे जो चाह रहे कि विवाह गीत, जोनारी गीत, बन्ना बन्नी गीत सुनवावे की कृपा करें, तो भैया हम बिल्कुल देर नहीं कर रहे हैं, इनकी बिल्कुल बात सुन लेते हैं और जो ब्याह से संबंधित गीत हम सुनवा रहे हैं।

हाँ तो भैया जे मुन्ना लाल अहिरवार को गाओ भाओ अपन ने गीत शामिल करो, और आज की गम्मत में अपन शादी ब्याह के गीत शामिल कर भी कराने बैठे हैं। सो देखो हमारे संग जे गवैया बजैया भैया सुई बैठे हैं सब जने, और बड़े मगन हैं, बिल्कुल तैयारी से बैठे, मानो हम तनक चिट्ठी बाँच लें। जा चिट्ठी सोई योगेंद्र यादव भूपेंद्र यादव श्रेयांश छोटे राजा प्रदमन सिंह गौरव दीक्षा साधना श्रीमती तुलसा यादव सुरभि सुषमा।

ऐसी कामना कराते हैं। प्रभु से दिनांक 9 मई 2026 की गम्मत अच्छी लगी, प्रस्तुति प्रभा विन्ना की रही, तो भैया आप और जा गम्मत अच्छी लगी, एकला ने आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे लिख रहे हैं, अटका है तो 4 परदेसी 16 नारी अलग अलग है नाव, हमरो अटका बूझ बताइयो फिर जाइयो तुम गाँव। तो भैया एक उत्तर इनने लिखो है, 2 हाथ पाँव की 4 अंगूठा और 16 उंगारियाँ, जिनके नाम भी अलग अलग होते हैं। तो जे नाम सो इनने लिखे हैं, तर्जनी यानी पहली उंगली, मध्यमा यानी बीच की, अनामिका यानी मुंदरी पहरवे वाली उंगली, और कनिष्का यानी छिंगली उंगली। तो जे अंगूठा भाई 4 परदेसी और 16 हो गई हाथ पांव की सबकी मिला के उंगलियाँ। सो जो उत्तर तो बिल्कुल सही है भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद चिट्ठी लिखवे के लाने। और अब आगे लिख रहे हैं जी कि हमें गम्मत में धार्मिक भजन और लोकगीत सुनवावे की कृपा करें, शादी ब्याह के गीत भी शामिल करें, और हमें नियमित श्रोता हैं हम तो लगभग कई वर्षों से सुनते आ रहे हैं, गम्मत कार्यक्रम बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसके हमेशा जारी रखें। तो भैया बहुत अच्छी आपकी चिट्ठी है, और देखो आज को अटका हम भूल न जाएं, आप और लिख लो, आप और तो पहले उनसे बैठे हुए हो कागज पेन डायरी लेके अपनी। तो आज को अटका जो है, जो 15 दिनों में आपके एक उत्तर पहुंचाने हैं, दिन में भरी और रात में खाली, रात में भरी और दिन में खाली। तो भैया जाको अटका को उत्तर आपको 15 दिन के भीतर भीतर लिख कर पहुँचाने हैं। अब हम आप औरों के फिर से सुनवा रहे जो ब्याह को गीत।

हाँ तो किसान भैया रोहितोमदा जो विदाई गीत गा रही हैं अपनी शिवानी राजपूत, और देखो हम अटका आप और हमें फिर से दोहराए दे रहे हैं, लिख लो। दिन में भरी और रात में खाली, रात में भरी और दिन में खाली, ये अटका को उत्तर आप औरों के 15 दिन के भीतर भीतर लिख के पहुँचाऊने हैं चिट्ठिया में गम्मत के पता पे। और जो चिट्ठिया जो आई है भेजवे बारे हैं शंभू प्रसाद लोधी, मुकाम पोस्ट पड़ार भट्टा, थाना सलीमनाबाद, तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी से। और इनके घर परिवार के लोगों के नाम हैं महेंद्र, सुरेंद्र, सपना, रश्मि, राजा, सजक और भरत छोटू। तो जी लिख रहे हैं भैया, आदरणीय कृषि जगत उद्घोषक टीम को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका नियमित श्रोता शंभू प्रसाद लोधी एवं मुन्नी बाई लोधी। आप सबका कार्यक्रम सुनने में बहुत अच्छा लगता है। मैं लखन भैया, प्रभा बिन्ना, मधुवंती बिन्ना, सरला बिन्ना, आकांक्षा बिन्ना को मेरा चरण स्पर्श। आपने तारीख 30 मई 2026 में दिन शनिवार को एक अटका बोला था, पांच कबूतर पांच ही रंग, महल के अंदर एक ही रंग। तो इसका उत्तर है पान, पान का पत्ता, चूना, कत्था, सुपारी, पेपरमेंट, ये हैं पांच कबूतर। मुंह में एक जाके एक ही रंग में हो जाते हैं, यानी लाल रंग का हो जाता है मुंह के अंदर जाके। तो भैया ये उत्तर आपने बिल्कुल सही लिखो है, और ये सही उत्तर लिखवे के संगे संगे एक ठो अटका भी लिखो है जे हम समय पे आपको जो अटका जरूर शामिल कर हैं। अबे तो आज हमने जो अटका बोलो है वो आप और लिख लो, मिला लो। दिन में भरी और रात में खाली, रात में भरी और दिन में खाली, ये अटका को उत्तर आपको 15 दिन के भीतर भीतर सुना उन्हें लिख के पहुंचाने हैं। और अब हम सुनवा रहे हैं जो बैठे हैं जुन, इनको समूह स्वर को उमदा ब्याह को गीत गारी।

हाँ तो भैया कितो उम्दा जो अपन ने गारी गीत सुनो समूह स्वर में, और जे जो चिट्ठिया हमारे हाथ में है इनकी जई फरमाइश है, ग्राम बिछुआ राजमार्ग से लिख रहे हैं, यहाँ कुशल सब भात भलाई वहाँ कुशल राखे रघुराई, आप सभी को सादर वंदन नमन राधे राधे की मिले। और भैया एक बात कहूँ तो सुनो, आप हम सभी शादियों में खूब मिठाई खा रहे होंगे, गर्मी का मौसम है तो भैया आप भी खान पान पर ध्यान जरूर देना, धूप में कम निकल ना, और अपने नन्हे मुन्ने बच्चों का विशेष ध्यान देना, बूढ़े माँ बाप पिताजी की माताजी की भी ध्यान देना, और साथ में जो शादी ब्याह के गीत हैं वे रेडियो से सुनबे की बहुत इच्छा है, तो जे हमारी इच्छा जरूर पूरी होवे। और जे आगे लिख रहे हैं के माता पिता और गुरु की वाणी बिना ही विचार करहु सब जानी, जानते सब हैं परंतु अमल करें तब जानो, गम्मत के प्रसारणकर्ताओं को सभी को राधे राधे, शादी पर एक विवाह गीत जरूर सुनवाना। तो भैया अब भी हमने सुनवाओ है गीत, और देखो हमारी जो आज की अटका की बारी है, अटका हम फिर से दोहरा देवे, आप और लिख लो, बहुत बड्डो नहीं है छोटो सो है, मनो आपन औरों है, ज्ञान लगाने पर है दिमाग लगाने पर है, उत्तर देवे के लाने के, दिन में भरी और रात में खाली, रात में भरी और दिन में खाली। तो भैया देखो जो अटका को उत्तर आप औरों के, 15 दिन के भीतर भीतर कृषि जगत कार्यक्रम गम्मत द्वारा केंद्र उपनिदेशक आकाशवाणी कटंगा जबलपुर पोस्ट बॉक्स नंबर 14 कटंगा जबलपुर पिन कोड 48201 मध्य प्रदेश के पता पर लिख कर पहुँचाने हैं चिट्ठिया में। और हम आप औरों से जो बात कह रहे हैं वो के बाद हम आप औरों के एक और गम्मत गीत सुनवाउत हैं कि गांवन में उद्योग बढ़ावें दोनों लाभ कमावें, ताल तलैया पोखर भर के मछली पाल बिकावें, मधुमक्खी के बक्सा धर के मीठो मधु उपजावें, और गैया भैंसन की सेवा कर दूधन धार बहावें, बकरी मुर्गी पालन करके सुख के फूल खिलावें, गोबर खाद बनावें घर में बिजली सोई बनावें, खेती के संग चक्की चलावें, प्रसंस्करण अपनावें, भैया लघु उद्योग चलावें। और अब अपन गम्मत की तरफ चलाते हैं।

तो किसान भैया हरो जो तो अच्छो गीत अचरज समझ पड़ो हेमरा चढ़ार की आवाज में अपन और सुन रहे थे। और आज को जो अटका है एक उत्तर आप और को भेजने हैं, दिन में भरी और रात में खाली, रात में भरी और दिन में खाली। पता है कृषि जगत कार्यक्रम गम्मत द्वारा केंद्र उपनिदेशक आकाशवाणी कटंगा जबलपुर, पोस्ट बॉक्स नंबर 14 कटंगा जबलपुर, पिन कोड है 4800 मध्य प्रदेश। और अब भाई चलवे की बेरा, तो सबसे प्रभा बहन की राम राम और जय जवान जय किसान।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल से।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री की सेशल्स यात्रा विजन महासागर के अंतर्गत सुदृढ़ द्वीपक

0: द्विपक्षीय सहयोग और समुद्री सुरक्षा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार और पत्रकार विशाल दहिया।
1: नमस्कार, सुर्खियों में आपका स्वागत है, मैं हूं विशाल दहिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 दिन की राजकीय यात्रा पर सेशल्स पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मेनी ने उनका स्वागत किया और एक शीर्ष वार्ता वहां के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। लेकिन इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के गोल्डन जुबली नेशनल डे समारोह में भी गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर शामिल होंगे, जो कि ऐसा पहला मौका किसी भारतीय प्रधानमंत्री के लिए होगा। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की यह सेशल्स की पिछले 12 साल में दूसरी यात्रा है। इससे पहले सन 2015 में प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स गए थे। भारत और सेशल्स के संबंध बहुत ही मधुर रहे हैं और दोनों ही देश 50 वर्ष भी मना रहे हैं अपने राजनयिक संबंधों को लेकर। तो आज हम चर्चा करेंगे ना केवल भारत और सेशल्स के संबंधों की, बल्कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा के महत्व की भी, खासतौर पे जो इस वक्त वैश्विक स्थिति है उसके चलते, और भारत के लिए सेशल्स कितना महत्वपूर्ण है और सेशल्स के लिए भारत की क्या अहमियत है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं एम्बेसडर अशोक सज्जनहार। एम्बेसडर सज्जनहार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
2: बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए।
1: सबसे पहला सवाल जो मन में आता है जब हम सेशल्स की बात करते हैं, और मैं सीधा वहीं से शुरुआत करूंगा, वो है मैरिटाइम सिक्योरिटी को लेकर। हालांकि भारत और सेशल्स के जो संबंध हैं उसमें कई और पहलू भी हैं, लेकिन सबसे पहले मैरिटाइम सिक्योरिटी से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जब नई दिल्ली से रवाना हुए थे तो उन्होंने अपने वक्तव्य में इस मुद्दे को लेकर काफी जोर शोर से अपनी बात रखी थी। कहा था महासागर जिसकी हम बात करते हैं मिस्टर सज्जनहार, तो महासागर से क्या इंडिकेशन मिलती है और उसमें सेशल्स का क्या महत्व है?
2: देखिए, आपने बिल्कुल ठीक जगह से शुरू किया है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं जो सेशल्स का क्या महत्व है महासागर के परिपेक्ष में, क्योंकि हमें देखना है न केवल भारत और सेशल्स के द्विपक्षीय संबंध कैसे हैं, परंतु इसको अंतर्राष्ट्रीय परिपेक्ष में देखने की बहुत आवश्यकता है। और हम देख रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय परिपेक्ष ऐसा है, बहुत बदलाव आया है, बहुत उथल पुथल हो रही है। और अगर हम इंडियन ओशन का क्षेत्र देखें तो उसमें भी हम देखते हैं बहुत ही, भारत तो कहता है ये भारत यहाँ पर मेजर सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, परंतु और भी यहाँ पर बहुत सारे एक्टर्स हैं जो कि आने लगे हैं और बहुत ही अपना यहाँ पर प्रभुत्व वो जमाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी ने पहले 2015 में जब वो मॉरिशस गए थे तो उन्होंने सागर का जो इनिशिएटिव है उसको लॉन्च किया था, जिसका मतलब है सागर है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो मतलब सभी की सुरक्षा, सभी का जो वृद्धि है, जो भी उनका आगे ले जाना है, ग्रोथ है, प्रगति है, सभी को साथ में लेकर यहाँ पर चलने की आवश्यकता है। परंतु उसका परिपेक्ष केवल इंडियन ओशन था। फिर उसके बाद पिछले साल उन्होंने महासागर को भी मॉरिशस में ही लॉन्च किया, और उसका है म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स। मतलब इसको और ज्यादा व्यापक बना दिया गया है। अगर सागर केवल इंडियन ओशन भारतीय भूसागर से ही मिलता जुलता था, उसके परिपेक्ष में आता था, तो महासागर है, इसका जो दायरा है कहीं और बढ़ गया है। और सेशल्स इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, क्योंकि जो हमारे सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जो ट्रेड है, जो कनेक्टिविटी है, उसमें बहुत ही उसका ज्यादा महत्व हो गया है। और इसी पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है जो आगे चलते हुए दोनों देश एक दूसरे की सहायता करेंगे। तो मैरिटाइम सिक्योरिटी है, मैरिटाइम डिफेंस है, सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मेनी से, और इसके ऊपर पहले भी दोनों देशों में बहुत अच्छी सहमति है। जब डॉक्टर पैट्रिक हार्मेनी भारत आए थे इस साल फरवरी में, तब भी इसके बारे में बहुत बातचीत हुई थी। तो अब इसको आगे इसमें ले जाया जाए।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने एम्बेसडर सज्जनहार, क्योंकि जो भारत है उसने सेशल्स के कई मुख्य द्वीपों पर कोस्टल सर्वेलेंस राडार सिस्टम भी स्थापित किए हैं, यानी कि तटीय रक्षा प्रणाली जो है उसको मजबूत करने में दोनों देशों के बीच जो मधुर संबंध हैं, जो गहरे संबंध हैं, वो काम आते हैं। उसके अलावा अगर हम पायरेसी की बात करें, यानी कि जिन जिन शिपिंग लेन्स की आपने बात की, समुद्री सुरक्षा की बात की, तो एंटी पायरेसी जो स्टेप्स हैं, जो एंटी पायरेसी कैंपेन जो है उसमें भी दोनों देशों के बीच काफी समझौता है, और संयुक्त सैन्य अभ्यास भी गाहे बगाहे कई बार दोनों देश

0: कर चुके हैं। तो ये इतिहास से देखा जाए तो पहले सागर और उसके एक दशक बाद अब महासागर, यानी कि एक और कदम हम आगे बढ़ रहे हैं सेशल्स के साथ जो हमारे संबंध हैं और हमारा जो समझौता है खासतौर पे तटीय सुरक्षा को लेकर और जो समुद्री सुरक्षा जिसे कहा जाए उसको लेकर भी। लेकिन इसके अलावा एक और पहलू है मिस्टर सज्जनहार और हम उस पर भी चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि भारत ने बड़ा दिल रखते हुए कई बार कई तरह से सेशल्स की मदद की है। चाहे हम अगर COVID-19 के दिनों से देखें, जिस तरह से हमने पेंडेमिक के दौरान कई और देशों के साथ साथ सेशल्स की भी मदद की, हमने वैक्सीन्स पहुंचाई, उसके अलावा खाद्य सामग्री पहुंचाई, और हाल फिलहाल में कुछ महीने पहले एक $175 मिलियन का आर्थिक पैकेज भी सेशल्स को दिया गया था। तो वहां सेशल्स में इसको किस तरह से देखा जाता है, भारत की जो इमेज की अगर हम बात करें तो किस तरह की इमेज भारत की है?
1: देखिए, भारत की इमेज मैं कहूंगा बहुत ही अच्छी है, क्योंकि जैसे आपने शुरुआत में ही बताया है, जो भारत के संबंध हमारे बहुत ही ऐतिहासिक हैं, बहुत ही पुराने हैं। वहां पर 1770 में हमारे 5 वहां पर जिसे कहा जाए वर्कर्स गए थे, लेबर गए थे, काम करने के लिए गए थे। कोई फ्रेंच कॉलोनियलिस्ट उनको वहां पर ले गए थे और वो पहले भारतीय लोग थे जो वहां पर हैं, और हमारा बहुत ही तब से बहुत ही संबंध उनके साथ बहुत अच्छे रहे हैं। इस समय देखा जाए तो करीब 6,000 हमारे पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन है, हमारा जो डायस्पोरा है उसमें भारतीय मूल के जो लोग हैं करीब 6,000 हैं, करीब 10-11,000 वहां पर प्रोफेशनल्स हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं वगैरह। आपने बिल्कुल ठीक कहा, देखिए भारत ने हमेशा सेशल्स की मदद की है, सहायता की है, और इसके लिए बहुत ही आभारी है, सेशल्स अपने को मानता है। क्योंकि पहले हम सुरक्षा की बात कर रहे थे, मैरिटाइम सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, उसमें अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं ये भी कहूंगा, जो देखिए हमने बहुत वहां पर पेट्रोल वेसल्स दिए हैं उनको, जिससे कि वहां पर अपनी वो पेट्रोलिंग कर सके। आपने रेडार सिस्टम्स का तो बताया ही है, जो कोस्टल तटीय इलाकों में हमने उनको स्थापित किया है। अभी हमने 6 वहां पर तटीय इलाकों पर हमने ये एस्टैब्लिश किए हैं, स्थापित किए हैं, जिससे कि जो कोई वहां पर अगर उनकी संप्रभुता के ऊपर कोई वहां पर आते हैं तो उनको पहले ही पता चल जाए उसके बारे में। फिर दूसरी बात है, हमने 2 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट भी दिए हैं उनको। इस प्रकार के बहुत सारे उनको हमने सामान दिया है, जिससे कि अपनी सुरक्षा को वो बड़ी अच्छी तरीके से निभा पाए। उसके साथ हमारी एक्सरसाइजेस चलती हैं, चाहे वो ट्रेनिंग हो, चाहे वो लिमातीय एक्सरसाइजेस हर 2 साल में एक बारी होती हैं। तो मैं कहूंगा बहुत वहां पर काम किया गया है। हमारी जो नेवल शिप्स हैं, INS सुनैना है, INS शारदा है, उन्होंने वहां की उसके एरिया के लिए, तटीय इलाकों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए उन्होंने बहुत वहां पर पेट्रोलिंग वगैरह की है। तो बहुत काम दोनों देश एक साथ करते हैं, और इसमें वहां के जो लोग हैं वो भारत के बहुत ही आभार मानते हैं। हमारा व्यापार भी बहुत अच्छा है, हालांकि उसको और बढ़ सकता था तो, परंतु आपने जो अभी जिक्र किया है $175 मिलियन का, वो जब डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी आए थे यहाँ पर फरवरी में,
0: जी बिल्कुल,
1: तो तब उन्होंने उस समय ये पैकेज लोन भी है और ग्रांट का पैकेज है जो कि दिया था हमने उन्हें, और उसमें जो बहुत सारे अग्रीमेंट्स भी साइन हुए थे वहां पर कैपेसिटी डेवलपमेंट के लिए, वहां पर स्वास्थ्य क्षेत्र में, वहां पर शिक्षा क्षेत्र में, ऐसे बहुत से क्षेत्र थे जिसमें दोनों देशों ने कहा जो वहां पर काम किया जाएगा। आपने COVID-19 का विशाल जी अभी जिक्र किया
0: जी।
1: और वो बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव था दोनों देशों के बीच के संबंधों को आगे ले जाने के लिए, क्योंकि सेशल्स मेरे विचार से दुनिया में करीब सबसे पहला देश रहा होगा जहां पर कि हमने 50,000 अपने वैक्सीन डोजेज वहां पर भेजे, क्योंकि हमारे यहाँ आपको याद होगा करीब 2021 में बिल्कुल शुरुआत में जनवरी में 16 जनवरी को हमने अपना टीकाकरण शुरू किया, और फिर 21 जनवरी 4-5 दिन बाद ही हमने सेशल्स के लिए भी करीब 50,000 डोजेस भेज दिए थे। उनकी जनसंख्या ही अगर देखा जाए तो करीब 1,00,000 के आसपास है, छोटा देश है, छोटी जनसंख्या है
0: जी,
1: परंतु भारत उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा ध्यान देता है, अपने संबंधों को बहुत ध्यान से उसको आगे लेकर जाता है, क्योंकि हमारे लिए

0: बहुत ही महत्वपूर्ण मैरिटाइम पार्टनर है और उस क्षेत्र में सुरक्षा के लिए, जैसे हम बात कर रहे थे पायरेसी की, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन की, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत करीब 90% हमारा जो व्यापार है वो
1: जी
0: हम इन्हीं समुद्र से ही हम उसको आगे लेकर चलते हैं।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने मिस्टर सज्जनहार। केवल सुरक्षा के लिहाज से नहीं, केवल सैन्य उपकरण नहीं, बल्कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर में भी जो बुनियादी ढांचा है उसको विकसित करने में भारत का काफ़ी योगदान रहा है सेशल्स में, चाहे वो वहाँ की मजिस्ट्रेट कोर्ट बिल्डिंग हो, वहाँ पर ऊर्जा संयंत्र हो, या फिर और कम्युनिटी डेवलपमेंट की जो स्कीम्स हैं जिनका आपने जिक्र किया। एक आखिरी सवाल और मिस्टर सज्जनहार, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी वहां मौजूद हैं, उनका 50वां स्वतंत्रता दिवस है यानी कि गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन है, उसके बाद वो नेशनल असेंबली को भी संबोधित करेंगे और शीर्ष स्तर पर वार्ता भी होगी, तो इस यात्रा से आपको क्या लगता है कि दोनों देशों के लिए क्या वो दो या तीन बड़ी बातें हैं जो उभर कर सामने आ सकती हैं?
0: देखिए, एक तो मेरे विचार से भारत न केवल सेशेल्स को अपने द्विपक्षीय संबंधों के लिए, परंतु पूरे जो इंडियन ओशन रीजन है, जो इंडो पैसिफिक रीजन है, उसमें ये एक संदेश भेज रहा है जो भारत का यहाँ पर जो संबंध है, जो प्रभुत्व है, वो बिल्कुल ही बरकरार है और उसको वो बिल्कुल भारत जो है उसको पूरी तरीके से प्रिजर्व करके रखेगा। तो कोई ये जैसे हम देख रहे हैं चीन की तरफ से इतना ज्यादा यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है, चाहे वो मालदीव के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ा रहा हो, श्रीलंका के साथ आगे बढ़ा रहा हो, तो किसी को ये शक, चाहे वो ग्वादर में आ गया हो, जिबूती में आ गया हो, तो किसी को ये शक शुभ नहीं होना चाहिए जो भारत और देशों को यहाँ पर अपने इस क्षेत्र में आकर किसी ना किसी प्रकार की कुछ ऐसी कार्रवाई करने का की अनुमति देगा। तो इसका भारत के यहाँ पर जो भी देश हैं उनके साथ संबंध बहुत ही प्रगाढ़ है, बहुत ही अटूट है, बहुत ही पुराना है, बहुत ही गहरा है।
1: जी
0: एक तो ये संदेश बिल्कुल सीधा है। दूसरा है, चाहे देश छोटे हों परंतु भारत उनके साथ, जो भारत के मित्र हैं उनके साथ वो बिल्कुल मिलकर काम करेगा और उनकी सब पूरी तरीके से सहायता करेगा। आखिर में यही कहना है, जब भारत बढ़ता है, भारत की प्रगति होती है, भारत समृद्धिमान बनता है, तो ये केवल भारत के लिए फायदा नहीं है, परंतु जो हमारे क्षेत्र के देश हैं इन सभी के लिए फायदा है और भारत सभी के साथ मिलजुल के काम करना चाहता है। उसी को हमने सागर का पहले रूप दिया और उसी को हमने फिर और बढ़ाकर महासागर का रूप दिया है।
1: जी
0: विशाल जी,
1: बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मिस्टर सज्जनहार। जो प्रधानमंत्री की जो यात्रा है सेशल्स की और भारत और सेशल्स के बीच जो प्रगाढ़ संबंध रहे हैं पिछले 50 सालों से, उनकी समीक्षा करने के लिए और श्रोताओं को ये बताने के लिए कि किस मार्ग पर यानी कि किस दिशा में भारत और सेशल्स के संबंध अब आगे बढ़ने वाले हैं और क्यों दोनों देश एक दूसरे के लिए महत्व रखते हैं।
0: बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री की सेशेल्स यात्रा विजन महासागर के अंतर्गत सुदृढ़ द्विपक्षीय सहयोग और समुद्री सुरक्षा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार और पत्रकार विशाल दहिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: सुर्खियों में
4: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में।
5: मीडियम वेव 374.5 मीटर पर यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। सबसे पहले सुनिए अंदाज फिल्म में किशोर कुमार को। गीत है हसरत जयपुरी का और संगीत शंकर जयकिशन का।

सर अनवर सागर और संगीतकार थे जतिन ललित। हमसे है मुकाबला। लीजिए अब सुनिए इस फिल्म का गाना जिसे गाया है AR रहमान, शंकर और नोएल जेम्स ने। गीत है पीयूष मिश्रा का और संगीत AR रहमान का।

फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत है बॉम्बे फिल्म से, स्वर जोजो का है, गीत महबूब का और संगीत ए आर रहमान का।

0: कार्यक्रम का अंतिम गीत है फरीदा खानम की आवाज़ में। फिल्म का नाम है आज जाने की जिद ना करो।
1: आज जाने

0: 나 때로.
1: श्रोताओं, अब फिल्म संगीत से इजाजत दीजिए।

मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। अब समाचार संध्या हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने कथित दान चोरी मामले में नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया। अमेरिका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हर्मिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हर्मिनी की मौजूदगी में कोकोडीमर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। यह भारत और सेशल्स की पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे 2 कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। इससे सेशल्स के विकास और सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्याना, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। ये पोत सामुदायिक संपर्क पहल भी करेगा जिसमें चिकित्सा शिविर लगाना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज ने आज इस मामले में बयान जारी किया। इसमें कहा गया है कि इस्तीफों पर अगली बैठक में चर्चा होगी। उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि दान की गई चांदी की ईंटों और गहनों का पूरा हिसाब किताब मौजूद है। ट्रस्ट अयोध्या राम मंदिर में हाल की घटनाओं पर बेहद दुखी, आहत और परेशान है। ट्रस्ट ने ये पुष्टि की है कि दान से जुड़े मामलों में SIT जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में MSME दिवस उद्यमी भारत कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है और उच्च गुणवत्ता के मानक बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि MSME क्षेत्र भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में सबसे सशक्त स्तंभ बन गया है।
2: It is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress. MSME become the strongest pillar of our collective journey towards Viksit Bharat by 2047.
0: इस अवसर पर MSME मंत्री जीतन राम

0: मांझी ने कहा कि केंद्रीय बजट से इस क्षेत्र के लिए सरकार की प्राथमिकता और प्रतिबद्धता का पता चलता है।
1: आपने देखा होगा जो 2024-25 का बजट था और 25-26 का बजट था, एमएसएमई के बारे में जितनी चिंताएं की गई है उस बजट में, उसके पहले हमारे सेंट्रल बजट में चिंताएं नहीं हुई थी। ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी एमएसएमई को आगे ले जाना चाहते हैं।
0: उपराष्ट्रपति ने देश में एमएसएमई को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म, पोर्टल और प्रकाशनों का भी विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने आज बेंगलुरु के ज्ञान ज्योति सभागार में नाद प्रभु केम्पगौड़ा की 517वीं जयंती के समारोह का उद्घाटन किया। समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि केम्पगौड़ा के दूरदर्शी नेतृत्व से 5 शताब्दियों बाद भी समाज लाभान्वित हो रहा है। उन्होंने कहा कि केम्पगौड़ा द्वारा निर्मित झीलें आज भी पेयजल के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गांधीनगर में उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी की मौजूदगी में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने केंद्र की कई प्रमुख योजनाओं के लागू होने की समीक्षा की। गृहमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर 3 से 4 गांवों के लिए क्लस्टर स्कूल बनाएं ताकि लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर को कम किया जा सके। गृहमंत्री ने प्रशासन को आदेश दिया कि 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत कार्ड बांटे जाएं। श्री शाह कल गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे। तमिलनाडु में वाइको के नेतृत्व वाली एमडीएमके पार्टी ने डीएमके के साथ 9 वर्ष पुराना गठबंधन तोड़ दिया है। चेन्नई में आज पार्टी महासचिव वाइको की अध्यक्षता में आम परिषद की बैठक हुई, जिसमें गठबंधन से अलग होने का प्रस्ताव पारित किया गया। पार्टी ने गठबंधन से अलग होने का कारण बताते हुए आरोप लगाया कि एमडीएमके को कमजोर करने के प्रयास किए गए थे। एमडीएमके के 2 विधायक हैं। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी से संबंधित प्रश्न पत्र लीक की बड़ी साजिश का भिवंडी में निर्धारित परीक्षा से एक दिन पहले ही पर्दाफाश कर दिया गया। प्रश्न पत्र लीक रैकेट के 3 कथित सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार लोगों की पहचान बिहार के राजीव साव और आकाश कुमार तथा हरियाणा के धीरज सिंह के रूप में हुई है। आरोपी टीईटी के प्रश्न पत्र को कथित तौर पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए में बेचने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने मोबाइल फोन, नकदी और अगले दिन होने वाली परीक्षा के लिए टीईटी प्रश्न पत्रों के 4 सेट बरामद किए हैं। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद के अधिकारियों ने जब्त किए गए प्रश्न पत्रों की जाँच की और पुष्टि की कि वे मूल प्रश्न से मेल खाते हैं। सत्यापन के बाद भिवंडी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस कथित 1.5 करोड़ रुपए के सौदे से जुड़े वित्तीय लेनदेन की भी जांच कर रही है। इस घटना के बाद महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने रविवार को होने वाली टीईटी परीक्षा स्थगित कर दी। परीक्षा की नई तारीख बाद में घोषित की जाएगी। मुंबई से माधुरी पंगे की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: केरल में प्रवेश परीक्षा आयुक्त ने आज इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मेडिकल KEAM परीक्षा की रैंक सूची जारी कर दी है। इंजीनियरिंग श्रेणी में कुल 79,717 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है, जबकि फार्मेसी श्रेणी में 26,943 उम्मीदवारों को स्थान मिला है। इंजीनियरिंग श्रेणी में रोशन राजू ने राज्य में पहला और ध्यान तेज ने दूसरा स्थान हासिल किया। फार्मेसी श्रेणी में विनायक नारायण पहले और साय जेस्टिन दूसरे स्थान पर रहे। उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच 2 सप्ताह पहले हुए संघर्ष विराम को गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 48 घंटों में अमेरिका और ईरान के बीच कई जवाबी हमले हुए हैं। बृहस्पतिवार को हॉर्मूज जल डमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर ईरानी हमले के बाद अमेरिका ने ईरान के दक्षिणी तट पर हमले किए। इसके बाद ईरान ने आज क्षेत्र में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। ये कार्रवाई राजनयिक प्रयासों के लिए खतरा पैदा कर रही है।
3: ब्रिटेन के UKMTO ने बताया कि आज एक टैंकर पर हुए हमले में उसके पुल को नुकसान पहुंचा है। हालांकि चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। संयुक्त

0: केंद्रीय सुरक्षा केंद्र ने हाल की घटनाओं के जवाब में सुरक्षा खतरे का स्तर बढ़ा दिया है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का दावा है कि उन्होंने ईरान द्वारा निर्धारित मार्गों का उल्लंघन करने वाले जहाजों पर गोलियां चलाई। इससे संकेत मिलता है कि ईरान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा जलमार्ग गलियारों पर फिर अपना नियंत्रण हासिल कर रहा है। इस तनाव के बढ़ने का मूल कारण आपसी अनुपालन में आई कमी है। ईरान ने अमरीका पर युद्ध विराम का पालन न करने और लेबनान में किए गए वादे के अनुसार संयम न बरतने का आरोप लगाया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: वहीं बहरीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान के कई ड्रोन ने देश को निशाना बनाया, हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेलंगाना के हैदराबाद में अपने नाम पर सड़क का नामकरण करने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू के नामकरण का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वो अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके सम्मान में भारत में सड़क का नाम रखा गया है। अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में आज शाम भारतीय समयानुसार 7:04 पर 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। भारत, पाकिस्तान, चीन, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में इसके झटके महसूस किए गए। उत्तर भारत में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में भी झटके महसूस किए गए। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसक क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागरकोटी ने कहा कि अब तक कुल 2 व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने आज कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ पोस्ट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण को गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। रक्षा मंत्री ने ये भाषण पिछले वर्ष 28 जुलाई को संसद में दिया था। मंत्रालय ने कहा कि इन पोस्ट में रक्षा मंत्री के भाषण के चुनिंदा अंशों को गलत ढंग से फैलाया जा रहा है। इन पोस्ट में कहा गया है कि श्री सिंह ने दावा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भी भारतीय सैनिक की जान नहीं गई। देविका सिहाग, किदाम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। देविका सिहाग ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। वहीं पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत ने चीनी ताइपे के लियाओ जुओफू और रौनक चौहान ने इसराइल के मिशा जिल्मरमैन को हरा कर सेमीफाइनल में जगह बनाई। और एवीसी मेंस वॉलीबॉल कप के सेमीफाइनल में भारत और इंडोनेशिया के बीच मुकाबला जारी है। अहमदाबाद में खेले जा रहे सेमीफाइनल मुकाबले में ताजा समाचार मिलने तक दोनों टीमों ने 2-2 सेट अपने नाम कर लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। अमेरिका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदाम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Seychelles to attend its 50th independence anniversary celebrations as guest of honour. India gifts fast patrol vessel, ambulances, utility vehicles and laser radial boats to Seychelles for its development and security. Prime Minister Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat programme on Akashvani tomorrow. Sri Ram Janmabhoomi Mandir Trust General Secretary Champat Rai and Trustee Anil Mishra resign on moral grounds following the donation embezzlement case. Ceasefire between the US and Iran under pressure after a series of retaliatory strikes between the two sides. And in US Open Badminton, India's Devika Sihag, Kidambi Srikanth and Ronak Chauhan reach

0: नमस्कार, आकाशवाणी की राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ प्रियंका जेना। विज्ञान भारती के माध्यम से हम विज्ञान से जुड़े विभिन्न विषयों, पहलुओं, उपलब्धियों और समाचारों को आप सबके साथ साझा करते हैं। आज के विज्ञान भारती के संक में भी विज्ञान से जुड़े हुए विषयों को आप तक पहुँचाएंगे। रहिए हमारे साथ। आज के कार्यक्रम में सबसे पहले प्रस्तुत है भेंट वार्ता, भूकंप का विज्ञान, भूकंप क्यों आते हैं। इन विषयों पर वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून के निदेशक डॉक्टर विनीत गहलोत विज्ञान की इस घटना भूकंप के बारे में बातचीत कर रहे हैं रमेश चंद्रा।
1: डॉक्टर विनीत गहलोत, भूकंप है क्या? क्या भूकंप आने से पहले कुछ विशेष सिग्नल्स मिलते हैं जो भूगर्भवेत्ता है उन्हें, जिनके द्वारा हमारे लोग हैं उन्हें मैसेज हो सके?
2: जो हमारी प्रकृति है उसमें कई सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो नेचुरल हैं, ना तो उनके ऊपर आपका

कंट्रोल है और ना आपको उस पर कोई कंट्रोल कर सकते हैं और ना आपको करना चाहिए। उनमें से एक प्रक्रिया है जिसको हम इंग्लिश में प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं, और वो प्लेट टेक्टोनिक्स ही है जिसकी वजह से आप जितना भी भूखंड देखते हैं, जितने भी महाद्वीप देखते हैं या जितने भी द्वीप देखते हैं समुद्र के अंदर, जो कुछ भी आप देखते हैं, जो भी संरचना देखते हैं आज की तारीख में, वो केवल प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से है। और वही एक प्लेट टेक्टोनिक्स है जिसकी वजह से भूकंप आते हैं। जो भूकंप है वो प्राकृतिक आपदाएं हैं, प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसको आप ना तो रोक सकते हैं और ना इसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। और ये भी बात सच है कि अगर भूकंप नहीं होंगे तो प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं होगी, और प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं होगी, धरती को आप जीवित प्लैनेट कहते हैं, धरती को हम जो कहते हैं जीवित प्लैनेट, उसकी जो डेफिनेशन है वो खत्म हो जाएगी। ये प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं, इनको तो चलना ही है और ये चलती ही रहेंगी। प्लेट टेक्टोनिक्स जो है एक सबसे बड़ा कारण है कि जो प्लेट टेक्टोनिक्स जो प्रक्रिया है जिसके चलते ये सारे कॉन्टिनेंट बने हैं, हिमालय बना है, महासागर में जो आयलैंड बेल्ट है जिसे द्वीप कहते हैं वो बने हैं, वो सब कुछ प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से बना है। और वही प्लेट टेक्टोनिक्स है जो कि अर्थक्वेक को मिलाती है। तो भूकंप का सबसे बड़ा कारण प्लेट टेक्टोनिक्स है। उसके अलावा हमारी कुछ अपनी गतिविधियां हैं, जैसे माइनिंग की एक्टिविटी, खनन का काम करते हैं, उसकी वजह से भूकंप आते हैं। कई बार हम लोग आजकल जैसे ऑयल और गैस निकाल रहे हैं हम लोग, उसकी वजह से भूकंप आते हैं। तो कई बार कोई डैम बना दिया, उसकी वजह से भी कभी कभी भूकंप आते हैं। लेकिन जो सबसे बड़े भूकंप और सबसे असंख्या जो होती है वो प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से ही होती है। पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर है, उसके चारों तरफ के जितने कॉन्टिनेंट हैं उनको अगर आप ध्यान से देखें, वहां पे पैसिफिक प्लेट एक सिंगल प्लेट है, उसके चारों तरफ फिर ये कई सारी प्लेट है। जब भी दो प्लेट के बीच की बाउंड्री होगी उसको कहते हैं हम लोग कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन या डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन। जो कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन जैसे कि हिमालय है, वहां जो कि सबडक्शन जोन जिसे कहते हैं, वहां पे बड़े बड़े भूकंप आते हैं। तो जो रिंग ऑफ फायर है वहां पे कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन चारों तरफ है, यानी कि चारों तरफ आपके पास वहां पे बड़े बड़े भूकंप आने की जगह है। अगर हिमालय के उसमें कहें तो चारों तरफ आपके वहां पे हिमालय जैसी संरचनाएं हैं जिसकी वजह से वहां बड़े बड़े भूकंप आते हैं, जिसको हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं। हमारा जो हिमालय है वो रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में नहीं आता है। हमारा जो हिमालय है उसको हम लोग अल्पाइड हिमालयन साइस्मिक बेल्ट कहते हैं, यानी कि आल्प्स शुरू होके फिर वो जैग्रोस यानी कि ईरान इराक और फिर सुलेमान किरथार पाकिस्तान में होके फिर उसके बाद हिंदू कोश और उसके बाद फिर हिमालय, फिर उसके बाद अराकान योमा और उसके बाद फिर अंडमान सुमात्रा बांदा, ये वाली जो चेन है उसमें भी हिमालय आता है। जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो प्लेट टेक्टोनिक्स जो है वो कहती है कि सारी प्लेटें गतिमान है। अब उस प्लेट को चलाना कैसे है ये इस पर डिपेंड करेगा कि आपके जो प्लेट है जब रगड़ रही है आपस में तो क्या वो आसानी से एक दूसरे के अंदर समा जा रही है या वो रुक रुक के जा रही है। अगर वो प्लेट रुक रुक के जा रही है तो यानी कि रुक रही है, इसका मतलब उसमें ऊर्जा संचित हो रही है और उसके बाद जब वो ऊर्जा बहुत ज्यादा जाती है तो वो ऊर्जा निकल जाती है, तो उसको हम अर्थक्वेक कहते हैं। तो जब भी कोई भी छोटा हो या बड़ा भूकंप हो इसका मतलब वो अपने अंदर जो ऊर्जा संचित हुई थी जिसका कि मेन कारण प्लेट टेक्टोनिक्स है उसको रिलीज कर रहा है। तो यानी कि जो छोटे भूकंप होते हैं उसमें बहुत छोटी ऊर्जा जो है निकलती है और जो बड़े भूकंप होते हैं उसमें बड़ी ऊर्जा निकलती है। लेकिन यही वो ऊर्जा है जिसकी वजह से जब हम इसको लिविंग प्लैनेट या डायनामिक प्लैनेट कहते हैं कि मतलब ये इसमें सारी प्लेट गतिमान है और जो वो गति है वो अर्थक्वेक की वजह से ही होती है। अगर किसी इलाके में बहुत सारी ऊर्जा निकल रही है छोटे छोटे भूकंप के रूप में, हालांकि वो रिलेशन इतना लीनियर नहीं है, लेकिन हाँ वो दो चीजों को बता रही है कि एक तो ये कि ये इलाका भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ पे भूकंप आ सकते हैं, कोई बड़ा भूकंप आ सकता है, लेकिन अगर उसकी ऊर्जा इतनी निकल पा रही है जितनी कि उस प्लेट मोशन में जरूरत थी तो फिर इसका मतलब बड़ा भूकंप आने की संभावना कम हो जाएगी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसको बहुत ही लोग कैजुअली लेते हैं जो कि एकदम गलत है। छोटे भूकंप का आना ये नहीं बताता है कि बड़ा भूकंप नहीं आएगा। छोटे भूकंप का आना ये बताता है कि ये इलाका भूकंप प्रभावित है और यहाँ पे बड़ा भूकंप आ सकता है। अभी हमारे साथ समस्या क्या है कि हम लोग भूकंप के हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं, हम लोग कौन से इलाके हैं वो कहाँ पे भूकंप आ रहे हैं, वहाँ पे कैसे भूकंप आते हैं, वहाँ पे कितना बड़ा भूकंप आ सकता है और अगर वहाँ पे बड़ा भूकंप आएगा तो उससे क्या हानि हो सकती है, वो कौन से इलाके हैं जहाँ पे की हानि ज्यादा होगी या हानि कम होगी। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जो आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं क्या इससे हम भविष्यवाणी कर पाएंगे, वो एक पार्ट है जो हमारे साइंस का जो अभी भी अछूता है, जिसके बारे में हम लोग अभी भी प्रयास कर रहे हैं, हम ही नहीं सारे विश्व उसके बारे में प्रयास कर रहा है। एनडीएमए की वेबसाइट पे जाएं तो जो आपका साधारण मकान जो घर का बनाना है, साधारण स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं, उसके बारे में आपको क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए वो वहां पे मौजूद है। जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं ये हमारे पास एक टेबल है, तो मैं जरा देख लूं इसको कि ये टेबल कितनी मजबूत है। अगर ये टेबल मजबूत है तो अच्छा होगा कि मैं इसके नीचे घुस जाऊं बजाय इसके कि बाहर भागूं और उसके बाद अनेस्टली और कोई रिस्क लूं, तो अच्छा होगा कि मैं इसके टेबल के नीचे घुस जाऊं।

0: सबसे बड़ा जो उनका मोटो है वो ये है कि ड्रॉप कवर एंड होल्ड, ये तीन वर्ड वो यूज करते हैं कि ड्रॉप यानी कि आप जहां भी हैं वो नीचे गिर जाएं, किसी सुरक्षित जैसे पलंग है, बेड है, बेड बहुत मजबूत होता है, आप उसके नीचे घुस जाएं, आप किसी टेबल के नीचे घुस जाएं, तो वो सबसे अच्छी जगह है। ड्रॉप हो गया, कवर उस अपने आप को कवर कर लें, सिर को कवर कर लें आप ऐसे करके, क्योंकि सबसे जो आपका जो नाजुक चीज है वो सिर है आपका, तो सिर को आप कवर कर लें और होल्ड और वहां रहें जब तक कि वो कंपन बंद नहीं हो जाए। तो ड्रॉप कवर एंड होल्ड वाला जो सिद्धांत है वो काफी आजकल सब लोग इसको फॉलो करते हैं और स्कूल में यही सिखाया जाता है, ड्रॉप कवर एंड होल्ड। जो पूर्व तैयारी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आप उसके लिए तैयार नहीं है तो जब आपके सामने इतनी भयंकर कोई विपत्ति आती है तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो आपकी केवल पूर्व ट्रेनिंग ही काम आती है जो आपको बचा सकती है। तो इसलिए पूर्व ट्रेनिंग पे हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। अक्सर लोग भूकंप को लेके काफी अजीब अजीब तरह से बात भी करते हैं, अफवाह भी फैलाते हैं और कहते हैं कि साहब भूकंप इसलिए आ गया या उसलिए आ गया, तो अफवाहों पे ध्यान ना दें, सबसे पहला काम तो यही है। और दूसरा ये है कि भूकंप लोगों को नहीं मारता, जो कमजोर बिल्डिंग है वो लोगों को मारती है। आज तक का इतिहास अगर उठाकर देखें तो किसी एक भूकंप ने, खाली भूकंप ने किसी आदमी को नहीं मारा है, जो हानि हुई है वो केवल इसलिए कि जब हम लोग असुरक्षित घरों में थे और वो घर हमारे पर गिर गए और फिर डेथ हो गई। तो घरों को सुरक्षित बनाए, पहले से तैयारी रखें, जैसे अगर हम उत्तराखंड में रह रहे हैं तो हमें मालूम है कि ये भूकंप वाला क्षेत्र है, तो हमें पहले से हमारे पास तैयारी होनी चाहिए कि अगर भूकंप आएगा तो हम कहां जाएंगे, कहां भागेंगे, कैसे भागेंगे और क्या करेंगे। अब कम से कम जितने हमारे पास आंकड़े हैं या जितनी विज्ञान ने तरक्की कर ली है तो हमें मालूम है कि भूकंप कैसे आते हैं, हमें मालूम है कि भूकंप क्यों आते हैं। हाँ, बस एक ही समस्या जो हमारे साथ है वो ये है कि अगला भूकंप कहाँ आएगा ये हमें पता है, लेकिन कब आएगा इसके बारे में थोड़ी समस्या है। इसके बारे में अभी भी शोध जो है वो पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, तो उसके बारे में थोड़ी अभी भी परेशानियां हैं, लेकिन भूकंप कैसे आता है इसके बारे में हम लोगों को कोई संदेह नहीं है कि ये एक प्राकृतिक क्रिया है जिसको प्लेट टेक्टोनिक्स से कंट्रोल होती है।
1: अभी आप सुन रहे थे भूकंप का विज्ञान विषय पर डॉक्टर विनीत गहलोत, निदेशक वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून से भेंट वार्ता। अब सुनिए उत्तराखंड रत्न से सम्मानित ICAR विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा के निदेशक डॉक्टर लक्ष्मीकांत के विचार। डॉक्टर लक्ष्मीकांत हमें बता रहे हैं कि कृषि के विकास में आकाशवाणी की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण रही है और किस प्रकार रेडियो आज भी किसानों का विश्वसनीय साथी बना हुआ है। बातचीत कर रहे हैं इनसे रमेश चंद्रा।
2: डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें आकाशवाणी की और भारतीय कृषि की, दोनों ने एक लंबा सफर साथ साथ तय किया है, क्या भूमिका रही है आकाशवाणी की भारतीय कृषि के विकास में?
3: ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपने चुना है आज के लिए, और मैं ये कहूंगा कि अगर आप थोड़ा सा पीछे की तरफ मुड़ करके देखें तो आकाशवाणी और कृषि दोनों बिल्कुल हाथ बांधे साथ साथ इनका सफर रहा है। 1936 में जब ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई, और आपको ये भी ज्ञात होगा कि आजादी के बाद देश में जो अनाज था उसका एक बड़ी कमी थी, और जो 1964 में जो डॉक्टर बोरलॉग जो नोबल लॉरेट थे, उनका जब जो गेहूं का जो जनन सामग्री थी जब वो यहाँ पर ला करके जब टेस्ट की जा रही थी, तो उससे जो पैदावार में बढ़ोतरी हुई तो वो एक जिसको हम आधुनिक कृषि कहते हैं, जिसमें आपके उन्नत बीज का प्रयोग किया गया, खाद पानी इन सब आगतों का जो प्रयोग किया गया, और उससे जो जिसको हम लोग हरित क्रांति कहते हैं, जो हरित क्रांति आई, तो ये जो हमारे किसान थे उनके लिए नई चीजें थी
2: जी।
3: और आज का समय तो बहुत सारे प्रसार के साधन आ गए हैं, तो उस समय सबसे प्रभावी जो साधन था वो रेडियो था, क्योंकि रेडियो की पहुंच जगह जगह थी और सुदूर क्षेत्रों में भी रेडियो की पहुंच थी। तो इसलिए ये सोचा गया, जो उस समय भारत के जो कृषि मंत्री थे, तत्कालीन कृषि मंत्री भारत रत्न सी सुब्रमण्यम साहब
2: जी,
3: उन्होंने देखा कि जो अमेरिका है इसमें रेडियो की सफलता कृषि के प्रचार प्रसार में काफी हुई है, तो उन्होंने सात आकाशवाणी के जो केंद्र थे उस पर फार्म एंड होम यूनिट जो है शुरू करवाए
2: जी।
3: तो इससे भारत में जो कृषि प्रसारण के एक नए युग की इसकी शुरुआत हुई। इसने बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो कृषि तकनीकों को आम जो कृषक है हमारे सुदूर क्षेत्रों में उन तक पहुंचाने में और उनकी जीवन शैली को सुधारने में और उनका जो कृषि से संबंधित ज्ञान है उसको बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इस कार्यक्रम ने निभाई। मैं तो पहाड़ में ही रहा हूं, तो मैंने देखा है कि हम लोग रेडियो को अलग अलग जगह पे ले जा करके उसको रखते थे कि कहाँ पे साफ सुनाई दे रहा है, तो कई बार वो साफ नहीं सुनाई देता था। उस समय ये आकाशवाणी लखनऊ से ट्रांसमिशन होता था और नजीबाबाद उसको रिले करता था
2: जी,
3: और वो सुनाई नहीं देता था। और ये भी युग था कि टीवी तो था नहीं
2: जी,
3: मोबाइल भी नहीं था, और

0: रेडियो ही एक होता था, और शाम को जब कृषि जगत उस पर लगता था तो उसको एक जगह पे लगा के गांव के सारे लोग सुनते थे उस टाइम
1: जी।
0: तो आज क्या हो गया है कि जो डिजिटल युग आया उससे ये स्पष्ट सुनाई देने लगा। आज तो हर किसी के पास में स्मार्टफोन, अधिकतर गाँव में भी स्मार्टफोन है। जहाँ पे नेटवर्क की समस्या है वहां तो अभी

0: अब हमने उसमें सुना था ऐसा ऐसा फला वैज्ञानिक ने ऐसा बताया था और उसको हमने प्रयोग किया
1: जी।
0: तो अभी भी ये लोग इसमें रुचि लेते हैं और सुनते हैं, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है आकाशवाणी का, क्योंकि जो हमारी पॉपुलेशन है इस सब तक पहुंचना, इंडिविजुअल आदमी को पहुंचना बड़ा मुश्किल काम है। रिपोर्टर्स हैं वो जब जाकर के किसानों के खेत पे जाकर के उसकी जो सक्सेस स्टोरी को लेकर के आते हैं, और किसान जो है ना जब वो अपने साथी किसान के जुबान से सुनता है कि सफलता की कहानी, तो उसको ज्यादा भरोसा होता है
1: जी।
0: तो और उसके अंदर एक ये विश्वास होता है कि भाई इस आदमी ने ये किया है तो मैं भी इसको कर सकता हूँ
1: जी।
0: कृषि में एक्चुअली सारा कुछ आ जाता है, पशुपालन भी, मत्स्य पालन भी, रेशम पालन भी, ये सारी चीजें आ जाती हैं, या मुर्गी पालन है, बागवानी है, ये सब कृषि के ही अंग हैं। अभी भी अगर गांव का भ्रमण करेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारी योजनाओं के बारे में किसानों को जानकारी नहीं है
1: जी।
0: तो इन चीजों को लगातार इस पर समसामयिक कार्यक्रम होते रहे, इन योजनाओं की जानकारी किसानों को मिलती रहे, तो उससे किसान भाई जो है लाभान्वित होंगे। क्योंकि अगर आप देखें तो उनकी दशा बहुत सुधार की जरूरत है उसमें
1: जी।
0: तो उसमें ये जो आकाशवाणी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है और उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ किसानों को मिल पाएगा।
2: आकाशवाणी का कृषि के विकास में योगदान विषय पर जानकारी साझा कर रहे थे उत्तराखंड रत्न से सम्मानित डॉक्टर लक्ष्मीकांत, निदेशक ICAR विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा। कार्यक्रम के अगले खंड में अब बातचीत कर रहे हैं ऊर्जा संरक्षण पर और ऊर्जा संरक्षण के इस विषय पर पेट्रोलियम विश्वविद्यालय देहरादून के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राजेश त्रिपाठी हमें बता रहे हैं कि ऊर्जा संरक्षण क्यों आवश्यक है और भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा में हमारी क्या भूमिका हो सकती है। बातचीत कर रहे हैं इनसे रमेश चंद्रा।
3: डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि भारत जैसा जो देश है, जो विकसित हो रहा देश है, इसमें ऊर्जा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? अगर आज के समय की बात करें तो जो हमारा देश है इसमें चुनौतियां क्या आप समझते हैं ऊर्जा को लेकर?
4: समाज के लिए ऊर्जा हमेशा से आवश्यक रहा है, चाहे आप व्यक्तिगत जिंदगी में देखें तो भी ऊर्जा की आवश्यकता है, शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, तो ऊर्जा का तो महत्व हर जगह है। हमारे देश में ऊर्जा इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि किसी भी समाज को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, चाहे ऊर्जा के स्रोत के रूप में आप पेट्रोलियम को देखें, चाहे और स्रोत हैं जैसे हाइड्रो है, थर्मल है, विंड है, विभिन्न प्रकार के ऊर्जा के स्रोत हैं। हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम अभी भी ऊर्जा के मामले में, खास तौर से पेट्रोलियम पदार्थों के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है। सभी जानते हैं कि भौगोलिक जो अवस्था है जो हमारे देश की, उसमें पेट्रोलियम उत्पाद उतने प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं है इन कंपैरिजन ऑफ बाकी देशों में, जैसे आपका अमेरिका है, रशिया है, ईरान है, मिडिल ईस्ट नेशन है, जहां पर पेट्रोलियम उत्पाद काफी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो इसीलिए हमारे लिए एक चिंतनीय विषय भी हो जाता है, क्यों? क्योंकि समाज के विकास के लिए ऊर्जा की आवश्यकता तो पड़नी है। लॉजिस्टिक्स पार्ट्स में अगर देखें, यानी परिवहन है, उद्योग को चलाने के लिए है, तो कहीं ना कहीं ऊर्जा का इम्पोर्टेंस है, महत्व है, और इससे हम इसको इनकार नहीं कर सकते। सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि ऊर्जा के मामले में हम अभी भी संपन्न नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है
3: जी।
4: आप जानकर हैरत करेंगे कि करीब हमारे जो विदेशी मुद्रा कोष है वो उसका करीब 70-75% हम सिर्फ पेट्रोलियम उत्पाद को खरीदने में लगा देते। अब उसकी वजह से क्या है कि वो हमारे ऊपर काफी बड़ा बोझ रखता है, और जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे ऊर्जा के मामले में, तो ये जो विदेशी मुद्रा कोष से जो निकास है, आगत और निकास, हम ये दो प्रबंध की भाषा में बात करते हैं, तो निकास ज्यादा है, तो उससे कहीं ना कहीं हमारे ऊपर आर्थिक बोझ भी पड़ता है, और इसीलिए जो है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम इस पर चर्चा करें, इसके नए विकल्पों की बात करें, नवीनीकरण की बात करें, ये बात जिसको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। हमारे यहाँ आप मान के चलें कि करीब 9-10 महीने प्रचुर मात्रा में प्रकाश मौजूद है, तो उस प्रकाश को हम कैसे प्रयोग कर, क्योंकि आजकल वैज्ञानिक काफी काम कर रहे हैं कि सूर्य की ऊर्जा को कन्वर्ट करके हम बिजली बना सकते हैं और भी ऊर्जा स्रोत बना सकते हैं, तो सौर ऊर्जा हो गया, सोलर पैनल्स पे काम हो ही रहा है, सरकार आपको सब्सिडी दे रही है, इसके अलावा हम बायोफ्यूल की बात करते हैं, हाइड्रो ऊर्जा की बात करते हैं, इसके अलावा हम विंड ऊर्जा की बात करते हैं, भारत में हवा की अवस्था ठीक है, तो इस तरीके की वैकल्पिक ऊर्जाओं पे हमें काम करना पड़ेगा।
2: ऊर्जा संरक्षण महत्वपूर्ण क्यों है? डॉक्टर राजेश त्रिपाठी, एसोसिएट प्रोफेसर पेट्रोलियम विश्वविद्यालय देहरादून से जानकारी साझा कर रहे थे। आइए अब जान लेते हैं जून महीने में जन्मे महान वैज्ञानिकों की उपलब्धियां और विज्ञान जगत को दिए गए उनके योगदान, साथ ही

0: महीने में जिन वैज्ञानिकों की पुण्यतिथि आती है उनके जीवन और वैज्ञानिक योगदान को भी हम याद कर रहे हैं। आइए जान लेते हैं जून के इस महीने में जन्मे और दिवंगत हुए विज्ञान जगत के महान व्यक्तित्व के बारे में। विज्ञान का इतिहास उन महान व्यक्तित्वों की प्रेरणादायक गाथा है जिन्होंने अपनी खोजों और विचारों से मानव सभ्यता को नई दिशा दी। जून माह विज्ञान जगत के लिए विशेष महत्व रखता है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ महान वैज्ञानिकों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं जेम्स क्लर्क मैक्सवेल की, जिनका जन्म 13 जून 1831 को स्कॉटलैंड में हुआ था। उन्होंने विद्युत, चुंबकत्व और प्रकाश के बीच संबंध स्थापित करते हुए प्रसिद्ध मैक्सवेल समीकरण प्रस्तुत किए। उनके सिद्धांतों ने रेडियो, टेलीविजन और आधुनिक वायरलेस संचार तकनीक की नींव रखी। अब बात करते हैं एलन ट्यूरिंग की। उनका जन्म 23 जून 1912 को इंग्लैंड में हुआ था। उन्हें आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक माना जाता है। ट्यूरिंग मशीन की अवधारणा और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एनिग्मा कोड को समझने में उनकी भूमिका आज भी इतिहास में अमूल्य मानी जाती है। जून माह में हम नोबेल पुरस्कार विजेता रसायन वैज्ञानिक जेरोम कार्ले को भी स्मरण करते हैं, जिनका निधन 6 जून 2013 को हुआ। उन्होंने एक्सरे क्रिस्टोग्राफी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे वैज्ञानिकों को अणुओं की संरचना समझने में सहायता मिली। इसी क्रम में केनेथ जी विल्सन, जिनका निधन 15 जून 2013 को हुआ, उन्होंने पदार्थों के व्यवहार और फेज ट्रांजिशन के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके कार्य के लिए उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त सूचना प्रौद्योगिकी के अग्रणी विचारक जेम्स मार्टिन का निधन भी 24 जून 2013 को हुआ था। उन्होंने तकनीकी शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। श्रोताओं, इन महान वैज्ञानिकों का जीवन हमें ये सिखाता है कि ज्ञान, जिज्ञासा और निरंतर प्रयास से मानवता के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोले जा सकते हैं। अब सुनिए एक विशेष वार्ता ऑप्टिकल फाइबर डिजिटल भारत की रीढ़। गढ़वाल विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर उमेश चंद्र नेथानी सरल भाषा में समझा रहे हैं कि ऑप्टिकल फाइबर तकनीक ने संचार और डिजिटल क्रांति को किस प्रकार नई गति दी है।
1: ऑप्टिकल फाइबर का हिंदी अर्थ प्रकाशिक तंतु होता है। यह कांच, सिलिका या प्लास्टिक से बना एक बहुत ही पतला और लचीला तार होता है। इसका उपयोग प्रकाश के संकेतों के माध्यम से बहुत तेज गति से डेटा भेजने के लिए किया जाता है। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब इसमें प्रकाश प्रवेश करता है तो यह तार की दीवारों से टकराकर बिना बाहर निकले आगे बढ़ता रहता है। इस तरह यह बाल के समान पतला तना प्रकाश की तरंगों के रूप में डेटा संचरित करने के लिए तरंग मार्ग का काम करता है। यह आधुनिक उच्च गति इंटरनेट और दूर संचार का आधार है, जो विशाल बैंडविड्थ और लगभग तात्कालिक संचार को विशाल दूरी तक प्रदान करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन फाइबर की संरचनात्मक परतों के कारण संभव होता है। इसकी बनावट में मुख्य अवयवों में प्रथम कोर होती है, जो भीतरी अत्यधिक पारदर्शी कांच या प्लास्टिक का तार होता है, जहाँ से प्रकाश वास्तव में गुजरता है। द्वितीय अवयव आवरण होता है, जो प्रकाश के कोर के चारों ओर लिपटी हुई एक बाहरी परत होती है। इसका अपवर्तनांक बहुत कम होता है। घनत्व में यह अंतर दर्पण की तरह कार्य करता है, जिससे प्रकाश कोर के अंदर ही रुक जाता है। तीसरा अवयव बफर कोटिंग और जैकेट होता है। यह बाहरी सुरक्षात्मक प्लास्टिक और रबर की परतें, जो नाजुक कांच को किसी भौतिक नुकसान, नमी और झुकने के तनाव से बचाती हैं। परंपरागत तांबे के तारों की तुलना में ऑप्टिकल फाइबर कई महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है। कुछ मुख्य लाभों को अगर देखें तो यह विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप EMI या रेडियो आवृत्ति हस्तक्षेप RFI से प्रभावित नहीं होता है। चूंकि प्रकाश पूरी तरह से कोर के अंदर समाहित होता है और विकिरण नहीं करता है, इसलिए ऑप्टिकल फाइबर को तोड़े बिना उसमें सेंध लगाना बेहद मुश्किल है, जिससे यह अत्यधिक सुरक्षित हो जाता है। प्रकाश लगभग तात्कालिक गति से यात्रा करता है, जिससे केबलों को हाई डेफिनेशन वीडियो स्ट्रीम करने, AI क्लाउड नेटवर्क चलाने और वैश्विक डेटा को रूट करने की लगभग असीमित क्षमता मिलती है। ऑप्टिकल फाइबर के सामान्य अनुप्रयोगों में इंटरनेट और दूरसंचार शामिल हैं। ये आधुनिक वैश्विक नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी हैं, जो फाइबर टू द होम, FTTH, ब्रॉडबैंड, समुद्र के नीचे बिछी संचार केबल और उच्च क्षमता वाले टेलीफोन

0: और मोबाइल नेटवर्क प्रदान करते हैं। सोचिए, यदि इंटरनेट न हो तो जीवन कैसा होगा? सब जगह अंधेरा ही अंधेरा होगा। और हम विज्ञान में और मेडिकल के क्षेत्र में आजकल के युग में किसी भी कंपटीशन के लायक नहीं रहेंगे। मेडिकल इमेजिंग में लचीले ऑप्टिकल फाइबर डॉक्टरों को एंडोस्कोप और लेप्रोस्कोप जैसे गैर आक्रामक उपकरणों के माध्यम से मानव शरीर के अंदरूनी हिस्से को रोशन करने और देखने की अनुमति देता है। इस तरह शरीर के अंदर क्या क्या घटित हो रहा है, इससे डॉक्टर स्पष्ट रूप से देख लेते हैं और तदनुसार बीमारी देखकर इलाज करना आसान और सटीक हो जाता है। स्थिति चिकित्सा जगत में यह एक चमत्कार की तरह प्रयुक्त होता है। रक्षा और एरोस्पेस में इसका उपयोग अत्यधिक सुरक्षित डेटा ट्रांसमिशन, विमान वायरिंग और मिसाइल मार्गदर्शन प्रणालियों के लिए किया जाता है, क्योंकि प्रकाश संकेतों के आसानी से रोका या जाम नहीं किया जा सकता। आधुनिक लड़ाइयों में इसका उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। इससे दुश्मनों के क्षेत्रों की सही और सटीक जानकारी मिल जाती है। अतः किसी भी देश के लिए रक्षा एवं एरोस्पेस में इसकी भूमिका निर्णायक होती है। औद्योगिक सेंसर, फाइबर ऑप्टिक सेंसर का उपयोग पुलों, इमारतों और तेल पाइपलाइनों में तापमान, दबाव और संरचनात्मक अखंडता की निगरानी के लिए किया जाता है। इस तरह मानव द्वारा निर्मित फाइबर से आधुनिक तरीके से मानव रहित प्रणाली से बड़ी चालाकी से कार्य किया जाता है।
1: अभी आपने सुनी ये वार्ता ऑप्टिकल फाइबर डिजिटल भारत की रीढ़ विषय पर प्रोफेसर डॉक्टर उमेश चंद्र नैथानी, सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष, भौतिक विज्ञान विभाग, जी गोपाल रेड्डी कैंपस, गढ़वाल विश्वविद्यालय, पौड़ी से। चिकित्सा के क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों और उनके प्रभाव पर महत्वपूर्ण भेंटवार्ता पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एवं AIG अस्पताल हैदराबाद के निदेशक डॉक्टर जीवी राव इनसे बातचीत कर रही हैं सीमा कुमारी।
2: डॉक्टर जीवी राव जी, चिकित्सा के क्षेत्र में के उल्लेखनीय योगदान ने लाखों लोगों के जीवन को एक नई दिशा दी है। चिकित्सा क्षेत्र में आपका सफर जो है वो कई दशकों से फैला हुआ है। आप यहाँ के जाने माने डॉक्टर माने जाते हैं और अब आप उस शीर्ष स्थान में पहुँचे हैं जहाँ आप दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। गैस्ट्रिक के जो पेशेंट्स हैं आजकल, उनके लिए कौन कौन सी आधुनिक चिकित्सा पद्धतियां जो हैं वो उपलब्ध हैं अपने भारत में?
3: भारत तो इतना आगे जा चुका है कि दुनिया में कोई टेक्नोलॉजी आना ना हो भारत पे आ जाता है, और ये टेक्नोलॉजी प्राइम मिनिस्टर साहब की दुआई से अभी इंडिया में भी बन रही है। अभी तो इसके पहले जो टेक्नोलॉजी खाली मेन सिटीज में रहता था, अभी तो गांव-गांव फैल चुका है। अभी ये गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी जो स्पेशलिटी है, बोथ मेडिकल और सर्जिकल जो स्पेशलिटी है, इसमें जो उन्नति हुई ये एंडोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी, रोबोटिक सर्जरी, ये तीन स्पेशलिटीज के वजह से सर्जरीज बहुत मिनिमली इन्वेजिव हो गए और रिकवरी बहुत हो गया। समझो आज एक्चुअली मेजॉरिटी इंडिया में जो फैमिली जो रहते हैं उनका फैमिली में एक ब्रेडविनर रहता है। अगर ये आदमी कोई बीमारी से काम पे ना जाए तो सारी के सारी फैमिली अफेक्ट हो जाती है। तो ये मिनिमली इन्वेजिव जो एंडोस्कोपी हो, लैप्रोस्कोपी हो या रोबोटिक सर्जरी हो, इसके वजह से जो भी चिकित्सा करे आदमी जल्द से जल्द रिकवर होकर अपने काम पे लग जाता है। तो इससे वो बहुत आसान हो गया कि द फैमिलीज आर नॉट गेटिंग अफेक्टेड नाउ बाय दिस। वी गो थ्रू रेगुलर मेडिकल चेकअप और जो भी डेटा है, मैं तो एक आदमी हूँ, मैं तो मेरा पूरा डेटा, इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ मेरा एक डिजिटल ट्विन है हॉस्पिटल में, सिस्टम में जो भी मेरा डेटा है पूरा उसमें रिकॉर्डेड है। तो दैट टेक्स केयर ऑफ माई दिस थिंग एक्चुअली।
2: थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर जीवी राव, सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, निदेशक AIG अस्पताल हैदराबाद से चिकित्सा क्षेत्र में तकनीक और नवाचार विषय पर हमारे साथ जानकारी साझा कर रहे थे। श्रोताओं, अब बात करते हैं जून 2026 में विज्ञान और अंतरिक्ष जगत की कुछ प्रमुख घटनाओं की जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। सबसे पहले बात नासा के बहुप्रतीक्षित नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप की। 21 जून 2026 को ये अत्याधुनिक दूरबीन अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर पहुंच गई। इस दूरबीन को हबल स्पेस टेलीस्कोप की उत्तराधिकारी माना जा रहा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये हबल की तुलना में लगभग 100 गुना अधिक क्षेत्र का अवलोकन कर सकेगी। इसके माध्यम से डार्क एनर्जी, दूरस्थ आकाशगंगाओं तथा हमारे सौर मंडल के बाहर स्थित ग्रहों यानी एक्सोप्लैनेट्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होने की उम्मीद है। अब बात यूरोप की एक बड़ी अंतरिक्ष उपलब्धि की। 17 जून 2026 को फ्रेंच गायना के कुरु प्रक्षेपण केंद्र से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के एरियन 6 रॉकेट ने एक ही मिशन में 36 इंटरनेट उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया। इस सफलता से वैश्विक इंटरनेट कनेक्टिविटी और अंतरिक्ष उद्योग को नई गति मिलने की उम्मीद है। वहीं चीन ने अंतरिक्ष में खाद्य उत्पादन की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। चीन के त्यांगुगोंग स्पेस स्टेशन पर वैज्ञानिक सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण यानी माइक्रोग्रेविटी वातावरण में धान की खेती के प्रयोग कर रहे हैं। ये शोध भविष्य में चंद्रमा और मंगल ग्रह पर मानव बस्तियां स्थापित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यदि अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक खाद्य उत्पादन संभव हो जाता है तो लंबी अवधि के अंतरिक्ष अभियानों को नई दिशा मिल सकती है। अब रुख करते हैं मंगल की ओर। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के मार्स एक्सप्रेस यानी के जून 2026 में मंगल ग्रह पर अनेक विशाल धूल के बवंडरों जिन्हें डस्ट डेविल्स कहा जाता है की तस्वीरें भेजी। इन चित्रों के अध्ययन से वैज्ञानिक मंगल ग्रह के वातावरण, मौसम और जलवायु को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास कर रहे हैं। भारत भी अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है। जून 2026 के दौरान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो ने क्रायोजेनिक इंजन परीक्षणों, माइक्रोग्रेविटी अनुसंधानों तथा महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन की तैयारियों में हुई प्रगति की जानकारी साझा की। ये उपलब्धियां भारत के भविष्य के मानव अंतरिक्ष अभियानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और अब बात करते हैं जून माह के आकाशीय नजारों की। 21 जून 2026 को उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे बड़ा दिन यथार्थ ग्रीष्म अयनांत मनाया गया। इसके अलावा जून माह में शुक्र और बृहस्पति ग्रहों का सुंदर संयोजन खगोल प्रेमियों के आकर्षण का केंद्र रहा। वहीं बुध ग्रह का सायंकालीन दर्शन भी आकाश प्रेमियों के लिए विशेष अवसर लेकर आया। निसंदेह जून 2026 विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में नई उपलब्धियों, नई संभावनाओं और नई खोजों का महीना साबित हुआ। तो ये थी हमारी आज की विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगली बार फिर मिलेंगे आपको नए विचारों के साथ, नवीन जानकारियों के साथ। आज के विज्ञान भारती की प्रस्तुति आकाशवाणी देहरादून की थी। वाचन स्वर प्रियंका जेना का, प्रस्तुति संकल्प मिश्रा। मिलते हैं विज्ञान भारती के अगले एपिसोड में। नमस्कार।
4: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अखिल भारतीय पत्रिका कार्यक्रम विज्ञान भारती।

0: ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है प्रभात मुखोपाध्याय का संतूर वादन। समृद्ध संगीत परंपरा वाले परिवार में जन्मे प्रभात ने संतूर की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। आपने सबसे पहले श्री दुलाल रॉय से संगीत की शिक्षा प्राप्त की। इससे पहले आपने लंबे समय तक उस्ताद साबिर खान से तबला सीखा, जिससे आप में लय और ताल की गहरी समझ विकसित हुई। आपने संतूर की विधिवत शिक्षा पंडित तरुण भट्टाचार्य और पद्मश्री पंडित भजन सोपोरी से प्राप्त की। वर्तमान में आप सारंगी वादक पद्म भूषण उस्ताद साबरी खान और सरोद वादक पद्म विभूषण उस्ताद अमजद अली खान से वाद्य संगीत की बारीकियों का प्रशिक्षण ले रहे हैं। संगीत में MA करने वाले प्रभात ने गायन और वाद्य संगीत की विभिन्न शैलियों का ऐसा समन्वय विकसित किया है जिससे उनका संगीत मधुर और पारंपरिक दोनों बन गया है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के एक ग्रेट कलाकार प्रभात ने भारत के साथ साथ यूरोप में भी व्यापक रूप से प्रस्तुतियां दी हैं। आपने स्पेन, फ्रांस, चिली, केनिया और नॉर्वे जैसे देशों में कार्यक्रम किए। आपने फ्रांस में आयोजित इंडिया फेस्टिवल और स्पेन में आयोजित स्प्रिंग फेस्टिवल में भी भाग लिया। हाल ही में आपने ट्यूनिशिया में ICCR द्वारा आयोजित भारत स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रस्तुति दी। एक रचनात्मक कलाकार के रूप में प्रभात हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में नए आयामों की खोज में निरंतर कार्यरत हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग यू अ संतूर रिसाइटल बाय प्रभात मुखोपाध्याय। Born in family of rich musical tradition, Prabhat has already made himself a name in the world.

0: ये था प्रभात मुखोपाध्याय द्वारा संतूर पर बजाया गया राग रागेश्री। प्रभात मुखोपाध्याय अपने कार्यक्रम का समापन पहाड़ी धुन से कर रहे हैं।
1: That was राग रागेश्री performed by प्रभात मुखोपाध्याय। He concludes his recital with a पहाड़ी धुन।

0: अभी आप प्रभात मुखोपाध्याय का संतूर वादन सुन रहे थे। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे मुस्तफा हुसैन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: That was धुन played by प्रभात मुखोपाध्याय। He was accompanied on tabla by Mustafa Hussain. With that, we come to the end of this program. This program was earlier recorded in the studio of Akashwani Delhi. Also came to you from the Delhi station of Akashwani.
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हरमिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक बंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमिनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे दो कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हरमिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने वाराणसी से भारत की पहली हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय विमानन सेवा के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत प्रोत्साहन और संदेश के लिए आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साझा करते हुए श्री नायडू ने कहा कि इस पहल से भारत के विमानन केंद्रों को मजबूती मिलेगी और दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों को एकीकृत यात्रा के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य से निर्बाध रूप से जोड़ा जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में इस शुभारंभ को भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि इस पहल की शुरुआत वाराणसी को स्पोक एयरपोर्ट, दिल्ली को हब एयरपोर्ट और लंदन को अंतिम गंतव्य के रूप में हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसा क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागर कोटी ने बताया कि अब तक कुल 2 व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि 3 लोग अब भी लापता हैं। अभियान कल फिर शुरू किया जाएगा। निरंतर भूस्खलन और फिसलन के कारण पोतिन कीमिन मार्ग अब भी बंद है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एल मैच में अमेरिका के ईस्ट रदरफोर्ड में पनामा का सामना इंग्लैंड से होगा। एक अन्य मुकाबले में क्रोएशिया का सामना घाना से होगा। दोनों मैच 2:30 बजे शुरू होंगे। इससे पहले मिस्र ने ग्रुप जी के अंतिम मैच में ईरान के साथ 1-1 से ड्रॉ खेलकर पहली बार फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। ग्रुप जी के एक अन्य मैच में वैंकूवर में लिएंड्रो ट्रोसार्ड के 2 गोलों की मदद से बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: This is Akashvani, the news read by Amrit Bhushan. Prime Minister Narendra Modi arrived in Victoria this afternoon on a 3-day visit to Seychelles. He was received by President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, at the airport. Mr. Modi appreciated the warm welcome by the President and said that Seychelles is a valued maritime partner and a close friend in the Indian Ocean. Mr. Modi said that he is looking forward to a productive visit aimed at further strengthening India and Seychelles' long-standing ties and enhancing cooperation for the benefit of the people of both nations. Prime Minister Narendra Modi visited the botanical gardens and attended a tree planting ceremony. During the ceremony, Mr. Modi planted the Coco de Mer plant in the presence of Dr. Hermini. According to the Ministry of External Affairs, the tree planting is part of Ek Ped Maa Ke Naam initiative and reflects the shared India-Seychelles commitment towards sustainability and environmental stewardship. He also visited the giant tortoise enclosure at the botanical garden. In a social media post, Mr. Modi said that the Aldabra giant tortoise also has an association with the special friendship between India and Seychelles, and 2 of them were gifted to the Alipur Zoo in Kolkata in 2014. The Defence Ministry today said that certain posts circulating on social media platforms have sought to misrepresent the Defence Minister Rajnath Singh's address delivered on the floor of Parliament on 28th July last year. The Ministry said that these posts have selectively quoted an isolated portion of the speech to falsely imply that Mr. Singh claimed that no Indian soldier lost his life during Operation Sindoor. Explaining the context of the Defence Minister's remarks, the Ministry said that at the time of Mr. Singh's address, a particularly persistent and dominant narrative had emerged in certain sections of the media and on social media claiming that Indian pilots had been lost during Operation Sindoor. The Ministry said this narrative was entirely false, yet it was being amplified aggressively with the clear intent of diminishing the success of the operation and demoralizing public sentiment. The Ministry said that it was in direct reference to this